नमस्कार, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक्षमवत 1948 के आषाढ़ माह की 28वीं तिथि, तदनुसार आज दिनांक 19 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 8:55 हुए हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा मंगल ध्वनि के साथ ही आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी नागौर है। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 9 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत में गैर फिल्मी गजलें, और रात 8 बजे होगा राजस्थानी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंद। शाम 7 बजे किसान भाइयों के लिए होगा कार्यक्रम खेती बाड़ी, और शाम 6:20 पर माटी के स्वर में आप सुनेंगे हमारे कुछ लोकगीत और लोक भजन। शाम 5:30 बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा बालवाड़ी, और शाम 5 बजे युवा सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 6:05 पर और दिन में 10 बजे से 10:30 बजे और 10:30 बजे से 11 बजे तक। सुबह 9:20 पर वंदना कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ भक्ति गीत और 9:10 पर होगा रामचरित मानस गान। सुबह 9:40 पर आप सुनेंगे एक झलकी कमर्शियल ब्रेक। ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 9 बजने को हैं। अब आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र कल से, सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने लोगों से वित्तीय लेनदेन से संबंधित संदेश और फोन कॉल से सावधान रहने की अपील की। आरजीएचएस में अनियमितताओं पर कार्रवाई जारी। 58 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स को योजना से बाहर किया। और सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित किए। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करेगी। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि राजस्थान पुलिस प्रदेश में बढ़ती साइबर ठगी और संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस महानिदेशक ने कल जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि 1930 हेल्पलाइन के विस्तार और 24/7 संचालन के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही राज्य के सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने भी चलाए जा रहे हैं। श्री शर्मा ने लोगों से वित्तीय लेनदेन से संबंधित संदेश और फोन कॉल से सावधान रहने की अपील की।
1: अपने नागरिकों से भी अनुरोध है कि इस तरह की जो कॉल्स आती हैं कि आपको जल्दी ही 100% या 200% रिटर्न्स मिलेंगे, इस शेयर में आप इन्वेस्ट करें या इस ट्रेडिंग ऐप को आप डाउनलोड करें, इसी तरह से जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बीच बीच में इस तरह के मैसेज अगर आते हैं, और खास तौर से जहां भी पैसे से कोई आपके पास डिमांड आती है कि यदि आप इतना पैसा इसमें डालेंगे तो आपको हम ये चीज दे देंगे या इतना पैसा डालेंगे तो आपको ये जॉब मिल जाएगा, काम विदेश भेज देंगे, तो उससे आपको बचने की बहुत आवश्यकता है।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस हेडक्वार्टर में साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित 82वें संडे ऑन साइकिल अभियान में भाग लिया। इसमें देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के कर्मियों ने हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत में श्री मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों ने देश भर में 15,000 से अधिक स्थानों पर साइकिल चलाकर इस अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस पहल ने स्वास्थ्य, फिटनेस और पर्यावरण के प्रति लोगों को सजग रहने का संदेश दिया है। उन्होंने नागरिकों से साइकिल चलाने को अपनी जीवन शैली का नियमित हिस्सा बनाने का आग्रह किया। खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर अमरनाथ यात्रा आज से जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में खराब मौसम के अनुमान के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। वहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। कल नई दिल्ली में इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। ममूटी और कार्तिक आर्यन को ब्रह्मयुग्म और चंदू चैंपियन फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का संयुक्त राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लगातार कठोर कदम उठा रही है। इसी कड़ी में 58 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स को योजना की सूचीबद्ध लिस्ट से हटाया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि इनमें से 14 एलोपैथिक फार्मा स्टोर्स के औषधि लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, बाकी 44 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स के ड्रग लाइसेंस निरस्त करने के लिए अतिरिक्त औषधि नियंत्रक और संबंधित विभाग को पत्र लिखा गया है। साथ ही प्रचलित बाजार दरों से अत्यधिक अधिक मूल्य पर

0: बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई। उसके बाद दूसरी बोर्ड परीक्षा इस साल 15 मई से 21 मई तक हुई। सीबीएसई ने बताया कि इस साल की मुख्य और दूसरी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को मिलाकर कुल 96.78% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। एजेंसी ने कहा है कि ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एनटीए के अनुसार हाल ही के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट नकली पाई गई है, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 कल सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 12 जुलाई से शुरू हुई ये परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए आयोजित की गई थी। इसके लिए 27 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के सफल संचालन के लिए शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। परीक्षा में नकल और फर्जी परीक्षार्थियों की रोकथाम के लिए सतर्कता दल भी गठित किए गए थे। करौली आज अपना 29वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसे लेकर जिलेवासियों में उत्साह और उमंग का माहौल है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर जिले भर में विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
1: स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित विकास गोष्ठी में जिले की उपलब्धियों, चुनौतियों, पर्यटन, कृषि, उद्योग, रोजगार और रेल संपर्क जैसी भविष्य की संभावनाओं पर सार्थक चर्चा हुई। देर साय रणगवा तालाब आकर्षक रोशनी से जगमगा उठा, जहां दीपदान और सहनाई वादन ने सांस्कृतिक माहौल को यादगार बना दिया। वहीं स्वच्छ करौली, सुंदर करौली अभियान के तहत शहर में विशेष सफाई, सजावट और रोशनी की गई। आज साइकिल रैली, बृहद वृक्षारोपण, पेंटिंग प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित अनेक आयोजन होंगे। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक तीसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा वनडे में चोटिल हुए ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर मुकाबले से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से। सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने लोगों से वित्तीय लेनदेन से संबंधित संदेश और फोन कॉल से सावधान रहने की अपील की। आरजीएचएस में अनियमितताओं पर कार्रवाई जारी। 58 एलोपैथिक और 11 आयुर्वेदिक फार्मा स्टोर्स को योजना से बाहर किया। और सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। दिन के 9:10 हुए हैं। अब सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

पतित पावनी गंगा का सुहावना तट, अशोक वृक्ष के नीचे कुश और कोमल पत्तों की साथरी पर श्री राम तथा सीता रात्रि विश्राम कर रहे हैं। प्रभु को धरती पर शयन करते देख निषाद राज गुह का मन विषाद से भर जाता है। लक्ष्मण ने निषाद राज की मनोदशा भांप उन्हें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उपदेश दिया। कहा, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। भले

बुरे का योग, मिलन और वियोग, शत्रुता, मैत्री तथा उदासीनता भ्रमजाल हैं। जन्म और मरण, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल इस जगत के जंजाल हैं।

सतीश भाटिया के संगीत में अभी आप रामचरितमानस गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की ये पहली भक्ति रचना पुष्पा पगधरे के स्वर में।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना सुनिए प्रेमानंद सिंह की स्वर में।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

अभी आप ये भक्ति रचना सुमन कल्याणपुर के स्वर में सुन रहे थे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना अनुराधा पोडवाल के स्वर में।

0: अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 9:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं एक झलकी कमर्शियल ब्रेक। इसमें कलाकार हैं जगमोहन सक्सेना और प्रस्तुति और निर्देशिका है सरोज भटनागर।
1: लॉटरी लगी और ये देखो।
2: और लेकिन मैंने तो कोई लॉटरी लगाई नहीं थी।
1: ओ सर जी आप समझे नहीं, ओ मेरा कहने का मतलब था इस अखबार का ये एडवर्टाइजिंग कॉलम अपने लिए नोटों का संदेशा लेकर आया है।
2: ओ लाज खा, ओ की लिखा है?
1: ओ लो जी पढ़ो तुसी भी।
2: वांटेड राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बंदूक वाला शॉर्टली वांट टू स्टार्ट अ कॉमेडी सीरियल।
1: हां जी
2: एक्सपीरियंस्ड विल गेट प्रेफरेंस। ओ चली यार, ओ चल चलते इस प्रोड्यूसर दे काल। अपन तो कॉमेडी दे किंग है नी।
1: वाह जी चलो बॉस, ओ इससे पहले कि कोई और बाजी मारे अपन चलते हैं मिस्टर बंदूक वाला के पास।
2: आहो चलो जी। ओ इधर तो कोई कॉल बेल है ही नहीं।
1: ओ सर जी फिर तो खतरा ही है, वो कॉल बेल तो सिर्फ यमराज के घर पे नहीं होती जहाँ पे बिना कॉल बेल बजाय घुस जाना पड़ता है।
2: ना अपराध चुप कर, अभी हम अपने धंधे पानी की बात करने आए हैं। धंधे पानी के बीच में यमराज किधर से आ गया इडियट?
1: ओ सॉरी बॉस जी गलती हो गई।
2: और चल ठीक है ठीक है, अब घुस जा अंदर।
1: ओ मैं क्या, नमस्कार जी। ओ जी आपने सीरियल के लिए जो एडवर्टाइजमेंट दिया था उसके लिए मिलने आए हैं जी।
3: आइए प्लीज बैठिए।
1: ओ बैठो बॉस जी। ओ जी

0: हमारे पॉपुलर सीरियल मेकर बंटा सिंह जी।
1: बंटा सिंह जी?
0: ओ आप नहीं जानते इनको? ओ ये तो बड़े पॉपुलर आदमी है जी।
1: कुछ सीरियल वीरियल भी बनाते हैं?
0: ओ बहुत बड़े हैं जी सीरियल, उल्टा सीधा टेढ़ा बक्सा आड़ा तिरछा। और जी अभी अपना लेटेस्ट सीरियल बन रहा है टेंशन ही टेंशन।
1: आपका बायोडेटा सुनकर तो मुझे टेंशन होने लगा है।
0: ओ यही टेंशन ही तो हमारी सक्सेस का राज है मिस्टर बंदूकवाला।
1: सो कैसे?
0: ओ ये चीज दिमाग का काम है। ओ कभी कभी टेंशन भी बड़ी काम आती है।
1: कुछ रहस्य हमें भी तो बताओ जरा।
0: ओ वो जी बात ये थी, अपने बॉस ने तिकड़म सेट करके एक चैनल पर अपना सीरियल तो पास करवा लिया, और लेकिन ना तो इनके पास में कोई स्टोरी आइडिया था और ना ही कोई स्पॉन्सर। सो जी बड़ी प्रॉब्लम होगी। और लेकिन अपने बॉस भी तो फिर बॉस ही है ना। और बाजी एक दिन संडास कार में बैठे बैठे अपनी दाढ़ी कुचर रहे थे कि अचानक
1: और कोई जगह नहीं मिली ना?
0: ओहो सुनो तो सही सर। ओके अचानक इनको एक आइडिया आया। और बाजी वो बाकी सारे काम भूल गए और चटपट वहां से निकले, एक पेपर पर अपना आइडिया ब्रीफ किया और जी सीधे पहुंच गए स्पॉन्सर के पास। और जी स्पॉन्सर को आइडिया इतना पसंद आया कि आगे का सारा काम चुटकी में हो गया जी।
1: वैसे आइडिया क्या था?
0: आइडिया ओ काय का आइडिया जी, ओ आइडिया टेंशन का था जी, कि दर्शकों को टेंशन कैसे हो, और अगर टेंशन हो तो उसका इलाज हमारे स्पॉन्सर की दवाई से करो। और बाजी सुपर हिट हो गया जी बॉस का प्रोग्राम।
1: फिर तो बड़ी चांदी रही होगी आपके बॉस की।
0: चांदी ओ जी सोना था जी सोना। ओ सीरियल मेकिंग दे विच पैसा तो ले गया ही नहीं। अपने बंटा सिंह जी ने सारे फ्लॉप फिल्म मेकर्स की सारी फ्लॉप रीलें कलेक्ट कर ली, उनमें से बकवास शॉट कलेक्ट कर लिए, उस चुनिंदा फुटेज को एडिट करके अपना सीरियल बना लिया। और जवाब नहीं जी अपने बॉस का, ओ हींग लगी ना फिटकड़ी, बस बढ़ गया साडा टेंशन ही टेंशन।
1: पब्लिक रेस्पॉन्स तो बहुत ही बढ़िया रहा होगा।
0: ओ पूछो नहीं जी, वो सीरियल देख के लोगों को इतनी टेंशन हुई, ओ जी इतनी टेंशन हुई कि उन्होंने अपनी टेंशन रिलीज करने के लिए हमारे स्पॉन्सर की सारी दवाई खरीद ली। ओ जी हालत ये हुई कि पब्लिक डिमांड को पूरी करने के लिए हमारे स्पॉन्सर को मेडिसिन की एक और फैक्ट्री लगानी पड़ी। ओ इसको कहते हैं जी मैन विद द माइंड।
1: फिर तो आपके बॉस के सामने सीरियल बनाने वालों की लाइन लग गई होगी भाई।
0: ओ लाइन ओ जी पूछो मत, तब से लेकर अब तक सिर दर्द पेट दर्द हाथ दर्द कमर दर्द और टांग दर्द वालों की मेडिसिन बनाने वालों की लाइन लगी हुई है। इधर घर के बाहर लंबी लाइन है, उधर टेलीफोन पे घंटी बजती रहती है और बहुत बुरा हाल है जी।
1: तब तो आपके बॉस काफी व्यस्त होंगे।
0: और जी कहां दे व्यस्त, और जी बॉस तो तब से ही अंडरग्राउंड हो गए। अब आप ही बताओ मिस्टर बंदूक वाला, इतने सारे आइडियाज एक साथ कहां से लेके आए बंदा? वो एक पेट दर्द वालों के लिए, एक कमर दर्द की मेडिसिन वालों के लिए, एक टांग दर्द और एक हाथ दर्द वालों के लिए। अब जी टेंशन वाला आइडिया सक्सेस हो गया तो हमारे पास कोई आइडिया का खजाना तो है नहीं कि हम अपने सीरियल से एक साथ इतनी सारी बीमारियां पैदा कर सकें और मेडिसिन वाले मेडिसिन बेच सकें।
1: शुक्र है कुछ तो कल्याण हुआ बेचारे व्यूवर्स का।
0: आपने कुछ कहा जी मिस्टर गोली वाला?
1: जी मैं गोली वाला नहीं, मैं बंदूक वाला हूँ।
0: जी सॉरी सर सॉरी, हम अपनी गलती सुधार लेते हैं जी।
1: तो ठीक है मिस्टर सेक्रेटरी, अब ये तो तय है कि मुझे एक सीरियल बनाना है जो बहुत पॉपुलर हो, जिसमें एक्शन हो, रोमांस हो, थ्रिल हो, सस्पेंस हो और पॉपुलरिटी के सभी गुण हो।
0: ओ जी तो ये भी तय है कि उसके राइटर डायरेक्टर और व्यूअर अपने बंटा सिंह जी होंगे।
1: राइटर डायरेक्टर तक तो ठीक है मिस्टर, ये व्यूअर्स वाला मामला कुछ समझ में नहीं आया।
0: ओ जी एक बार अपने बॉस के साथ में ऐसा भी हो चुका, और इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, वो वन मैन शो था जी, और मजबूरन दर्शकों की भूमिका भी इनको ही करनी पड़ी थी।
1: ओ आई सी, तब तो मिस्टर बंटा सिंह बहुत महान हैं।
0: हाँ जी हाँ जी, तो फिर मैं फाइनल समझूं?
1: अभी आपने कहानी तो सुनाई नहीं, बिना कहानी सुने मैं कैसे फाइनल कर सकता हूँ?
0: जी लो जी कहानी भी सुन लो। ओ वो यूं होता है जी के
1: क्या बात है सेक्रेटरी साहब, सब कुछ आप ही सुनाएंगे या आपके बॉस भी कुछ?
0: हाँ जी वो कहानी तो आपको बॉस ही सुनाएंगे सर जी, अभी आपको जीना चाहते हैं।
2: वाखन्ना सेक्रेटरी, अब तू किसी काम का नहीं रहा, और मैंने तो सोचा था कि ये प्रोड्यूसर तेरी बकवास सुन के ही लंबा हो जाएगा और बस बाद में इसे हॉस्पिटल में भर्ती करा के हम इसकी सिंपैथी गेन कर लेंगे और अपना काम करवा लेंगे।
0: आई एम सॉरी सर, वो मेरे को क्या मालूम था इसका हाजमा इतना तेज है, ये मेरी सारी बकवास को ऐसे पचा जाएगा।
2: ओ ठीक है ये पहला मौका है इसलिए तुझे इस बार छोड़ता हूँ, आइंदा ऐसा कुछ हुआ नहीं तो तू तेरी तेरी तेरी सेक्रेटरीशिप चली जाएगी।
1: हाँ यस, तो बंटा सिंह जी सुनाइए कोई बढ़िया सी स्टोरी कि बस मजा आ जाए।
2: ओ जी तुझे फिक्र नहीं करो जी, ऐसी स्टोरी सुना।

0: जाऊंगा कि बस मजा आ जाऊंगा।
1: आपकी बात सुनकर तो मैं कहानी का आइडिया सुनने के लिए बेताब हो गया हूँ, बस सुना ही डालिए।
0: ठीक है जी, मैं कहानी सुनाता हूँ। वो जी कैमरा ओपन होता है।
1: हाँ।
0: एक लड़की अपनी मस्ती में चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है।
1: कहाँ जा रही है भाई, कहाँ जा रही है?
2: अजी और कहाँ जाएगी बेचारी, गुंडों के पास जा रही है।
1: गुंडों के पास? मगर क्यों भाई?
2: क्यों जी, हीरोइन को हीरो से मिलाना नहीं है क्या?
1: मगर गुंडे और हीरो से मुलाकात, मैं कुछ समझा नहीं बंटा सिंह जी।
2: और लगता है आप नारी है। अरे जब तक हीरोइन को गुंडे छेड़ेंगे नहीं, तब तक हीरो से बचाएगा कैसे? और जब हीरोइन को बचाएगा नहीं तो उनका आपस में प्यार कैसे होगा?
1: लेकिन स्टोरी के शुरू में दिशुं, दिशुं, दिशुं।
2: यही तो बात है, यही तो बात है। शुरुआत हमेशा डैशी की होनी चाहिए। जैसे ही हीरोइन को गुंडे छेड़ते हैं, वैसे ही पीछे से हीरो आता है। इधर हीरोइन पर गुंडे हमला करते हैं, उधर हीरो अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और उससे फायर कर देता है। इतने में एक कमर्शियल ब्रेक होता है।
1: कमर्शियल ब्रेक।
2: और इधर एड खत्म होता है, उधर हीरो हीरोइन को गुंडों से बचा के अपने घोड़े पे बिठा के निकल जाता है।
1: वाह वाह, शुरू में ही फायरिंग, काफी धमाकेदार शुरुआत है बंटा सिंह जी।
2: अब हम अपना सीरियल रोक कर एक क्विज रखेंगे, जिसमें व्यूअर से पूछेंगे कि हीरो ने अपनी पिस्टल से किसका मर्डर किया। जो इसका सही जवाब देगा उसे ₹1,00,000 का इनाम दिया जाएगा।
1: इनाम और क्विज?
2: हाँ, देखिए सर, अगर सीरियल को पॉपुलर बनाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। हाँ
1: बंटा सिंह जी, लेकिन इनाम का ₹1,00,000 आएगा कहाँ से?
2: अजी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ना हमारा हीरो मर्डर करता है, ना कोई व्यूअर सही जवाब भेजेगा, सो इनाम देने की जरूरत ही किधर से है?
1: वाकई जी वाकई, आपका जवाब नहीं।
2: ओ जी, अपना हीरो बड़ा समझदार है जी। ना तो वो कानून अपने हाथ में लेता है और ना ही प्रोड्यूसर का पैसा फालतू इनाम शिनाम में लगवाता है।
1: तो फिर आगे क्या होता है बंटा सिंह जी? आगे
2: हीरो हीरोइन को झोपड़ी में ले जाता है।
1: हाँ।
2: और हीरोइन को कहता है, ले सोनिए जाके नए कपड़े पाल ले, हूँ अगला सीन लौटा आएगा।
1: अरे क्या आपका हीरो पंजाबी में डायलॉग बोलता है?
2: अरे इसमें हारजी क्या है जी? अरे कम्युनल आर्मी के लिए तो सब करना ही पड़ता है।
1: चलिए कोई बात नहीं, आगे आगे आगे बोलिए। हाँ आगे बोलिए।
2: जैसे हीरोइन अपनी मैली ड्रेस चेंज करने के लिए उतार कर फेंकती है कि एक और कमर्शियल ब्रेक हो जाता है।
1: इतनी जल्दी कमर्शियल ब्रेक? कम से कम हीरोइन को कपड़े तो पहन लेने देते भाई।
2: अजी आप एडवर्टाइजमेंट देने वालों की डिमांड का भी तो ध्यान रखिएगा। हीरोइन के मैले कपड़े देख के व्यूअर को अपने मैले कपड़े याद आ जाएंगे और उन्हें वॉशिंग सोप की जरूरत पड़ेगी। इसी जगह का डिटर्जेंट ही किया गया एडवर्टाइजमेंट है।
1: लेकिन पहले हीरोइन को कपड़े तो पहन लेने देते भाई।
2: की फर्क बनता है जी, हीरोइन ने तो वैसे ही लीस्ट कपड़े ही पहनने हैं, क्योंकि बुरके में तो लव सॉन्ग हो ही नहीं सकता।
1: देखिए जी बंटा सिंह जी, मुझे फैमिली वालों के लिए सीरियल बनाना है, इसलिए आपको हीरोइन को तो कपड़े पहनाने ही पड़ेंगे। हाँ
2: और जब आप इतनी जिद कर रहे हैं जी तो चलिए पहना देंगे, लेकिन पहले एक कमर्शियल ब्रेक। हाँ जी
1: ठीक है जी, ठीक है ठीक है, आगे सुनाइए आगे सुनाइए।
2: हीरोइन ने एक ओवरकोट पहन रखा है, हीरो ने निकर बनियान पहन रखी है। एक स्विमिंग पूल में हीरोइन हीरो को धक्का देती है, पीछे से एक लव सॉन्ग चलता है।
1: लेकिन ये कॉस्ट्यूम और ये हीरो को पानी में धकेलना कुछ उल्टा सीधा लग रहा है, इसलिए सीक्वेंस को चेंज कर ले तो ज्यादा।
2: और देखिए साहब, ये तो दर्शकों की डिमांड है, सो ये सीन तो रखना ही पड़ेगा। वैसे ये जो आपका उल्टा सीधा लग रहा है ना, ये वास्तव में ओरिजिनल सीन का फैमिली वर्जन है।
1: फैमिली वर्जन?
2: हाँ।
1: मैं कुछ समझा नहीं बंटा सिंह।
2: और गल यूं है जी कि ओरिजिनल सीन में जो ड्रेस हीरो ने पहन रखी है, यानी निकर बनियान वो जो हीरोइन पहनती है, और जो ओवरकोट हीरोइन ने पहन रखा वो हीरो पहनता है। तब स्विमिंग पूल में हीरोइन गिरती है और हीरो उसको निकाल के लाता है। अब जो कि आपका सीरियल फैमिली की सीरियल है, इसलिए इस सीन को उल्टा कर दिया।
1: बंटा सिंह जी आपको तो हॉलीवुड में होना चाहिए।
2: जी जी हौसला अफजा जाएगा, शुक्रिया जी। जैसे हीरो पानी में गिरता है, हीरोइन हीरो को पानी में से निकाल के लाती है। इतने में कमर्शियल ब्रेक। फेंक दो अपने घर की सारी चीजें और ले आइए हमारे दुकान से नई चीजें।
1: ये क्या फिर कमर्शियल ब्रेक? अरे इतने कमर्शियल ब्रेक होंगे एक एपिसोड में?
2: तुझे समझ देनी होगी। अरे जितने ज्यादा कमर्शियल ब्रेक होंगे उतना ही पैसा मिलेगा, साडा सीरियल भी मेगा सीरियल हो।

0: ओफो बंटा सिंह जी, हमें सीरियल का नाम बदलकर कमर्शियल ब्रेक रख देना चाहिए, कमर्शियल ब्रेक।
1: ओ की गल कीती है जी पाजी, ओ दिल खुश कर दिता, मजा आ जाऊगा। मेगा सीरियल लाखों दे बजट दा, ओ जिस दे विच एक्शन थ्रिल और सस्पेंस भी हो जाऊगा।
0: यू शट अप, बंद करो अपनी बकवास, नॉनसेंस, गेट आउट फ्रॉम हियर, अदरवाइज आई विल शूट यू, आई विल शूट यू, गेट आउट फ्रॉम हियर, नो नो नो, गेट।

कमर्शियल ब्रेक। अभी आप सुन रहे थे जेल की। कलाकार थे जगमोहन सक्सेना और प्रस्तुति और निर्देशिका थी सरोज भटनागर। लीजिए अब सुनिए गुलाम अली की गाई ये गजल।

अभी आप गुलाम अली की गाई ये गैर फिल्मी गजल सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। कार्यक्रम की पहली पेशकश लता मंगेशकर का गाया इंतकाम फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा है राजेंद्र किशन ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सोशल मीडिया पर प्राप्त फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल से आरंभ किया गया है। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 9649004762 पर अपने पसंदीदा फिल्मी गीत की फरमाइश भेज सकते हैं। आप अपनी पसंद के गीत के बोल, फिल्म का नाम, गायक कलाकारों के नाम और अपना नाम पता लिखकर इस मोबाइल नंबर 9649004762 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रत्येक सोमवार शाम 5 बजे तक प्राप्त फरमाइशी गीतों को उसी रात्रि 8 बजे सुनवाया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।
1: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया देवता फिल्म का ये गीत।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। दिनांक 6 अक्टूबर 2025 से हमारे कार्यक्रमों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फांसी फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित का गाया, गुलशन बावरा ने इसे लिखा है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: चलते चलते, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और शैलेंद्र ने। गीत की रचना अमित खन्ना की है और धुन बनाई है बप्पी लहरी ने।

गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत में अभी आप ये सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए तराने नए फिल्म संगीत में। आप सुनिए कार्यक्रम की ये पहली प्रस्तुति।

0: आकाशवाणी नागौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए तराने नए फिल्म संगीत।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।
1: आकाशवाणी नागौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए तराने नए फिल्म संगीत के तहत। लीजिए अब सुनिए सुखविंदर सिंह और कैलाश खेर को कमीने फिल्म से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए तराने नए फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। दिन के 11 बजने को हैं। अब आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण विविध भारती मुंबई से सुनेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: दोस्तों नमस्ते। विविधा के एक और बेहतरीन और नायाब अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में मैं हूं अमरकांत
1: और मैं हूं मनीषा जैन।
0: आप सभी को नमस्कार। तो मनीषा जी, आज जैसे मैंने अभी कहा कि बेहतरीन और नायाब, ये बोलने की जरूरत रहती तो नहीं है, लेकिन अब रस्म तो अदा करनी पड़ती है।
1: और ये रस्म आपने बखूबी अदा की अमर जी, क्योंकि आज वाकई बहुत नायाब और कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग हाथ लगी है जिसका खुलासा मैं इस वक्त नहीं करूंगी, बाद में करती हूँ। और हमारे इस अंक की आज जो शोभा है वो है एक महान गायक और संगीतकार जिनके बारे में हम पहले बात करेंगे। उनका नाम मराठी संगीत से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है, बहुत सम्मान से, बहुत आदर से जिनका नाम लिया जाता है। हम आज उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले जी हाँ श्रोताओं, सुधीर फड़के।

0: सुधीर फड़के जी का नाम, जैसे आपने कहा कि मराठी संगीत के लिए बहुत इज्जत से लेते हैं, उन्होंने बहुत बहुत काम किया मराठी संगीत के लिए, लेकिन हिंदी में भी जो काम उन्होंने किया, चाहे वो कम ही किया हो काम, लेकिन उनकी हिंदी फिल्मों की रचनाएं, अगर एक ही रचना का मैं नाम ले लूं तो अब जैसे भाभी की चूड़ियां,
1: क्या बात है,
0: अब इस फिल्म का नाम ले ले और ज्योति कलश छलके इस गाने को अगर हम सिर्फ यूं ही बोल दें, मतलब पूरा गाना सुनने की जरूरत नहीं है
1: जी,
0: तो भी वो पूरा शरीर झनकृत हो जाता
1: है, बिल्कुल रोमांचित हो जाता है, और वो एक स्वर्णिम उपहार है जैसे सुधीर फड़के जी का हिंदी सिनेमा को दिया गया, पंडित नरेंद्र शर्मा की रचना और वैसा ही दिव्य स्वर लता जी का।
0: अब यहाँ एक और बात मैं करूंगा इससे पहले कि आप अपने पिटारे में से कोई नायाब सी चीज निकाल कर हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं, सुधीर फड़के साहब की ये कला का ही एक बड़ा जादू कहना चाहिए, चमत्कार कहना चाहिए, कि जहां एक तरफ सुधीर फड़के साहब ज्योति कलश छलके जैसी रचना बनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से बना देते हैं खुश है जमाना आज पहली तारीख है,
1: कमर जलालाबादी की वो रचना,
0: आप बताइए मुझे कितना कंट्रास्ट है।
1: हाँ?
0: आप कोई कह सकता है कि ये ज्योति कलश छलके जिसने गढ़ा है, जिसने हाँ? रचा है, और किशोर कुमार जैसे महान कलाकार,
1: क्या बात,
0: मतलब
1: है?
0: ये बताने का कारण सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि एक कलाकार की रेंज क्या है, देखिए आप वो कहां से कहां तक, जमीन से आसमां तक सब कुछ एक करने की हिम्मत रखता, मादा रखता,
1: बिल्कुल, और ऐसा ही विस्तृत फलक, ऐसा ही बड़ा कैनवास सुधीर फड़के जी का। आज हम याद करें सुधीर फड़के जी को, 25 जुलाई 1919 को इस महान कलाकार का जन्म हुआ और 29 जुलाई 2002 को हम सबसे ये विदा ले गए। उनके बारे में हम क्या कहें, उनकी रचनाओं के बारे में हम आपसे क्या कहें, बस इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इनका जो मूल नाम था ना श्रोताओं, वो था राम फड़के, और HMV कंपनी के लिए जब वो संगीत दे रहे थे, गीत बना रहे थे, तब उन्होंने अपना नाम सुधीर रख लिया था। जन्म हुआ था कोल्हापुर में, और इन्होंने संगीत की जो शिक्षा ली थी, जो प्राथमिक शिक्षा होती है, वो वामन राव पाध्ये साहब से कोल्हापुर में ही ली थी, और बाद में उन्होंने HMV से करियर की शुरुआत की 1941 में,

0: जो रचना है ये बहुत बड़े कवि मराठी साहित्य में
1: जी,
0: बड़े सम्मानित कवि हैं, इनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है और इनकी रचना को इन्होंने स्वरबद्ध किया और फड़के साहब और गदी माड़गुड़कर साहब के जो ये जुगलबंदी हुई
1: जी, जी, जी।
0: वो ऐसा एक सुरीला इतिहास है जो सदा सदा के लिए अमर हो गया है और जब तक संगीत रहेगा तब तक ये गीत रामायण जरूर याद की जाएगी।
1: और हम ये भी बताना चाहेंगे कि 1955 से लेकर 1956 लगभग एक साल तक आकाशवाणी से इस गीत रामायण का प्रसारण हुआ था और उसके बाद इसने, जैसा आपने कहा ना, कि इतिहास ही रचा है
0: जी।
1: और आज तक हम इसे याद करते हैं, इसे सुनते भी हैं। हमारे कई श्रोता इस वक्त इस गीत रामायण को याद करेंगे। मुझे लगता है हमारा दायित्व बनता है अमर जी कि गीत रामायण की एक झलक हम थोड़ी सी आज के कार्यक्रम में सुनवा देते हैं।
0: बिल्कुल।

0: मनीषा जी, ये गीत रामायण सुनने के बाद फिर एक ट्रांस में जैसे चले जाते हैं ना, उस तरह से कुछ फील हो रहा
1: जी हाँ
0: है। फिर वो पुराना दौर, वो पुराना समय, वो पुराने रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो याद आ जाती हैं जब भी कभी इस तरह की रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ एक बात और सुधीर फड़के जी के बारे में बता दें कि
1: जी
0: सुधीर फड़के जी ने न सिर्फ संगीत को रचा बल्कि देश के प्रति,
1: जी
0: आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है, उनके प्रति भी उनके लगाव को इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने वीर सावरकर पे
1: एक फिल्म
0: एक
1: बने
0: फिल्म बनाई।
1: जी
0: और इस फिल्म के पीछे एक और बात है कि ये फिल्म मनीषा जी चंदे से बनी है।
1: जी हाँ
0: इस फिल्म के निर्माण के लिए लोगों से चंदा लिया गया और इस तरह से ये फिल्म बनी। और ये फिल्म सुधीर फड़के जी ने समर्पित किए उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया देश के लिए, मातृभूमि के लिए। तो एक कलाकार भी किस तरह से अपना योगदान, अपना सरोकार जाहिर कर सकता है समाज के प्रति, देश के प्ति, ये बताया सुधीर फड़के जी ने।
1: जी हाँ, और इसी महान कला

0: कलाकार की रिकॉर्डिंग आज हमारे पास है, श्रोताओं उनकी आवाज है। और हालांकि ये रिकॉर्डिंग जो है ये अवधि इसकी कम है, लेकिन आपको आनंद आएगा अवश्य उनके आवाज को सुनकर, उनके द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम को सुनकर। आइए सुनते हैं अमर जी श्रोताओं के साथ सुधीर फड़के जी द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
1: सुनने वाले भाई बहनों को नमस्ते। आप तो जानते ही हैं कि मेरा कार्यक्षेत्र मुख्यतः संगीत है। इसी माध्यम के द्वारा लगभग 30 वर्ष से मैं आपका मनोरंजन कर रहा हूं। परंतु एक बात आपको मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि मैंने संगीत रचना करते समय केवल मनोरंजन ही करना नहीं चाहा। मनोरंजन के साथ साथ और भी एक बात सदा मेरे मन में रही है, एक आदर्श मेरे मन में रहा है। आप पूछेंगे वह क्या है? तो मित्रों, मेरा आदर्श है मेरा देश, मेरा हिंदुस्तान, उसकी सभ्यता और उस सभ्यता से जन्म ली हुई कलाएं। मैं अपने देश की अन्य कलाओं को तो नहीं अपना सका, किंतु संगीत की सेवा मैंने अवश्य की है। संगीत का केवल व्यापार करने से अधिक संगीत के माध्यम का उपयोग करके अपनी संस्कृति के अच्छे आदर्श आपके सामने रखने का प्रयत्न मैंने अवश्य किया है। इसमें मैं कहां तक सफल हुआ हूं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने प्रयत्न अवश्य किया है, जिसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। आवाज आपकी मनचाही गायिका लता जी की है। कविवर पंडित नरेंद्र शर्मा जी के इस गीत में जिस शुद्ध भारतीय संस्कृति का चित्र उभर कर सामने आता है, उसके लिए आवश्यक बात यह थी कि उसको किसी शुद्ध राग में ही संगीतबद्ध किया जाए। उचित अवसर की यह बात मैंने इसलिए कही कि फिल्मों में गीत बनाए जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, इसीलिए हम लोगों को सिचुएशन का गुलाम बनकर काम करना पड़ता है। लेकिन मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कथाकार, कवि और निर्देशक की कल्पना पूर्णतया साकार हो और उस सिचुएशन को पूर्णतया न्याय मिले, इसी प्रकार की स्वर रचना करने का प्रयत्न मैंने अपने जीवन भर किया है।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

दोस्तों, इस समय यह अवश्य कहूंगा कि फिल्मों में संगीत देने के लिए मेरी दृष्टि से शास्त्रीय संगीत की जानकारी आवश्यक है। कारण शास्त्रीय संगीत ही वह संगीत है जो स्वरों की असली पहचान कराता है, लय का ज्ञान देता है। जिस प्रकार बिना नींव के इमारत टिक नहीं सकती, उसी प्रकार बिना स्वर ज्ञान के सही संगीत निर्देशन नहीं हो सकता। इस विषय में मेरे गुरु स्वर्गीय गायनाचार्य पंडित वामनराव जी उपाध्याय का मैं बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने ही मुझे स्वरों का ज्ञान दिया। जो कुछ भी मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, यह सब उन्हीं की कृपा है। साथियों, बात ही बात में मुझे अपने गुरु याद आ गए। गुरु और शिष्य में कितना प्रेम होता है, इसका अनुमान वही लगा सकता है जो कभी किसी का शिष्य बना हो। इन्हीं शब्दों के साथ राग जय जयवंती पर आधारित मेरी एक पुरानी फिल्म मालती माधव का एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे मेरे पुराने मित्र पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने लिखा और गाया है लता जी ने।

मित्रों, इस गीत को सुनने के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों की मिठास बरसों कम नहीं होती और मन उन्हें बार बार सुनना चाहता है। साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जो संगीत हमारे देश के जनजीवन में समाया हुआ है वह लोक संगीत है। लोकगीत सीधे आम जनता की भावना से जन्म लेता है। यही कारण है कि समूचे भारत की पंचरंगी सभ्यता से बहुरंगी लोकगीतों ने जन्म लिया है। मैंने भी जहां अवसर पाया लोकगीत का रंग जमाया। बात लोकगीतों की चल रही है तो ये बात भी ध्यान में रखिए कि लोकगीत किसी विशेष अवसर या मौसम से संबंधित होते हैं और उसी समय गाए जाते हैं। जैसे नाव चलाते हुए मांझी गीत गाते हैं, झूला झूलती हुई लड़कियां सावन के गीत गाती हैं, और इन्हीं अवसरों में एक अवसर ऐसा भी होता है जब लड़का दूल्हा बनकर घोड़े पर सवार ससुर के घर बारात लेकर पहुंचता है। उस समय दूल्हा की बहनें या भाभियां गीत गाती हैं। आपने लड़की की विदाई का गीत फिल्मों में बहुत सुना होगा, परंतु मैं आपको दूल्हा की तरफ से गाए जाने वाले गीत को सुनवा रहा हूँ। गीतकार है पंडित नरेंद्र शर्मा और गा रही है आशा भोसले और उनके साथी।

0: नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में
1: के के
0: स्मृति शेष में नमन फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं। जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी, जाने माने फिल्मकार अभिनेता गायक और संगीतकार के भाग्यराज, और जाने माने फिल्म निर्देशक निर्माता लेखक और अभिनेता भारती राजा।
3: hey,

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानू भाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य भूमिकाओं में थे।

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थीं राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।

0: बांग्ला के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थी। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है, जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सईद जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
1: प्यादे तो ठीक है
2: जी,
1: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा।
2: तो सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, नींबू घोड़ा, मिर्ची रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म।

0: इस फिल्म में ओम पुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
1: बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और इसका साइड सगन बिचार दे।
2: क्या खड़ा हो गया यहाँ?
3: मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
0: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई, ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुई। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया, तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थीं। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक, दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थीं विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, ए के हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं, पिस्टन जी, राव साहब और हमीदा बाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में, गोविंद नेहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती राणे की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पेस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
4: तूने जरू की सूरत देखी है, उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष के अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने। बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, रानी तू सुख नहीं बात करे। उस औरत ने तेरे को इतना सेल्फिश बना दिया है, पन खुदाए सब देखता है, याद रख जे।
0: इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
5: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
0: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर,
5: इसे दिग्गज कहना भी कम होगा। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
0: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी

0: का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज नीलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज नेहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज नेहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज नेहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी, साल 1982। हथकड़ी कामयाब रही और पहलाज नेहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज नेहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की। 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखें,
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: पहलाज नेहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994।
2: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो।
0: पहलाज नेहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण, सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहां भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनीले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथिरंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही। अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को दो ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के अहंकार पर बनी एक परिपक्व फिल्म थी।

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

उनकी कुछ कामयाब फिल्में हैं चिन्ना बीडू और इधु नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थी। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथियन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।

अनिल कपूर की 1983 में आई फिल्म वो सात दिन असल में के भागीराज की कल्ट तमिल फिल्म अंधा सात नाटकल की हूबहू रीमेक थी।

निंदा की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथानई मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र नमन।

किए भाग्यराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रही। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा

और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा, आउटडोर में न अच्छी लाइटिंग होती है न आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को कास्ट किया था।

इस फिल्म में पटकथा के बेताज बादशाह के भागीराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारतीय राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांवों में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है, जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और पूनम ढिल्लो।

0: सन 1980 में भारती राजा ने अपनी फिल्म सिगप्पू रुज़ाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौटी।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

1984 में आई कानून क्या करेगा, सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र नमन।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हो गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मॉल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मॉल्दोवा व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा रहेगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्यानोस्का दाउकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी तथा उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित

0: करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। उधर जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी की यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
0: और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, नीरज के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: बनारसी ठग फिल्म का गीत आपने सुना। उषा मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, नीरज की रचना थी, इकबाल कुरैशी की तर्ज थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। श्रोताओं, सिने जगत के जाने माने गीतकार नीरज की आज पुण्यतिथि है और आज इन्हीं के लिखे नगमे हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में।

कल आज और कल इस फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार, आशा भोसले और मुकेश की आवाजें शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

जयदेव का स्वर्गदुखिया ये गीत आपने सुना, नीरज जी का लिखा, आशा भोसले और सखियों की आवाजें थी। रेशमा और शेरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत के पहले श्रोताओ नई उम्र की नई फसल, इस फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था। मुकेश की आवाज थी, नीरज के बोल थे, रोशन।

0: लिखे जो खत तुझे वो
1: शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर इस गाया मोहम्मद रफी ने। कन्यादान फिल्म का गीत आपने सुना, नीरज का लिखा।

0: गैम्बलर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नीरज के लिखे आज के सभी गीत थे और सचिन देव बर्मन की तर्ज थी इस गीत में। श्रोताओ, यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण, अभी आप विविध भारती मुंबई से सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर के आमिर चैनल से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई की मान्यता को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। हालांकि बाद में विपक्ष के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करवाए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे का शौर्य और सर्वोच्च बलिदान आज भी हर भारतीय को गौरवान्वित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे की देशभक्ति और वीरता की गाथा देश की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव सीजन 3 का आज से जयपुर में आयोजन हो रहा है। 2 दिन के इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी करेंगी। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश की पर्यटन मंत्री कुंडला दुर्गेश भी मौजूद रहेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश से वेडिंग, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी उद्योग से जुड़े 600 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों की पर्यटन संभावनाओं और वेडिंग डेस्टिनेशंस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाना है। मौसम विभाग के प्रदेश के 15 जिलों में आज आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पहले पूर्वी राजस्थान और उसके बाद राज्य के पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। कल से कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 32 मिलीमीटर बारिश दौसा जिले के बसवा में दर्ज की गई। इसके अलावा धौलपुर, अलवर, बूंदी और कोटा के कुछ इलाकों में भी हल्की बरसात हुई। हालांकि प्रदेश में इस मॉनसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से करीब 25% कम वर्षा हुई है। इससे गर्मी और उमस का असर बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर अमरनाथ यात्रा आज से पहलगाम और बालटाल से रोक दी गई है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है।

0: मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल मायामी स्टेडियम में खेले गए तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से मात देकर कांस्य पदक जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स यानी ALMM लिस्ट 2 की नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि इस नीति की समय सीमा में कोई सामान्य छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि नेट मीटरिंग और ओपन एक्सेस नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को इस साल 31 दिसंबर तक छूट दी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण विविध भारती मुंबई से सुनेंगे।
2: युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582401168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुनें।

बीते हुए लम्हों को उसी रूप में संजोए रखती हैं जैसे उन पलों को पुराने समय में हमने जिया। जब यादें कुछ कुछ धुंधलाने लगती हैं, तब तस्वीरें ही हमें यादों के उन्हीं गलियारों में पहुंचा देती हैं जहां यहां तस्वीरें केवल इन्होंने इनका ये जो मैसेज है वो कहीं इधर उधर हो गया है। श्रोताओं, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि फिर ये मिल जाए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये इबारत यादों के कैनवास पर मोहब्बत की एक ऐसी नज्म है जहां तारीफ से शुरू हुआ सफर सादगी और हकीकत के दीदार पर आकर मुकम्मल होता है। इसमें मोहब्बत की शिद्दत भी है और उर्दू हिंदी शायरी की वो सूंधी सी महक भी। जिस तरह कायनात की तुलना शहनशाह के ताज में जड़े नगीनों से की गई है, वो पढ़ते ही जहन में एक भव्य और चमकदार दृश्य पैदा करता है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं गीतों के बारे में कि एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताज महल और लीडर फिल्म के गीत को इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं कि तस्वीरों यादों और घटनाओं का जीवंत प्रमाण होती हैं। तस्वीरों को देखते ही हम एक सेकंड में यादों के गलियारों में पहुंच जाते हैं। तस्वीरें अतीत को जगाती हैं और अगाध भविष्य के लिए धरोहर की तरह हैं, जैसे वो खूबसूरत ताजमहल या फिर जीवन से भरी तेरी आंखें। दुनिया में ये सब खूबसूरत कायनात की तरह जीने का सबब भी तो हैं। कुछ तस्वीरों में प्रेम भरी नदी सतत बहती दिखाई देती है। इस संसार में कुछ भी ठहरता पर तस्वीरों में हम जिंदा रहते हैं, जैसे कि ताज और हमारे बुजुर्ग जिनसे हमारा गहरा नाता जुड़ा है। कल को हम भी इन्हीं तस्वीरों के द्वारा याद किए जाएंगे। तस्वीरें वक्त की ऐनक हैं। अगर तस्वीरें न होती तो हम ताज का तस्वीर कैसे कर पाते।

श्रोताओं, क्या आपने ताज का दीदार किया है? अगर किया है तो चांदनी रात में ये कैसा नजर आता है, आप चाहें तो बता सकते हैं। लीडर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार आपको बताने हैं, और वैजयंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी इबारत तस्वीर की बाहरी शोभा और यादों की भीतरी गहराई का सुंदर संतुलन बयां करती है। तस्वीरें सिर्फ गुजरे हुए वक्त का आईना होती हैं, खूबसूरत मगर खामोश। वे धड़कनों को थाम कर रखती हैं लेकिन उनमें जान नहीं फूंक सकती। असली जुदाई एहसास तो उस आवाज की खनक और बातों के उतार चढ़ाव में है जो रूह को छू लेती है। कैनवास पर उकेरी गई कायनात कितनी भी हसीन क्यों ना हो, वो उस एक पल के सामने फीकी है जब किसी अपने की बातें सीधे दिल के साहिल पर दस्तक देकर स्मृतियों को फिर से जीवंत कर देती हैं। सच ही तो है, तस्वीरों में रूप बसता है पर बातों में रूह। एक और श्रोता ने लिखा है, कायनात की खूबसूरती की तस्वीर किसी एक रूप में नहीं है, वो तो उगते सूरज की सुनहरी किरणों से लेकर डूबते सूरज के नारंगी आकाश तक में है। कभी रात के सन्नाटे में, तो कभी टिमटिमाते तारों में, कभी माँ के हाथ के खाने में, तो कभी किसी अनजान बच्चे की हंसी में। कायनात की तस्वीर इसलिए खूबसूरत है क्योंकि उसमें मोहब्बत है, और मोहब्बत की तस्वीर इसलिए खूबसूरत इसलिए है कि उसमें कायनात है। तो क्या ही बात है श्रोताओं, आप ये बताएं कि क्या आपको तस्वीरें बनाना पसंद है? प्रकृति की तस्वीर आपको बनाना अच्छा लगता है या फिर किसी इंसानी व्यक्तित्व की? एक और सवाल आपसे जोड़ लेते हैं कि कौन सा रंग तस्वीरों में भरना आपको सबसे प्यारा लगता है? वैसे जो पहला रंग गीत में भरा था वो प्यार का रंग था, जो पहला गीत हमने आपको सुनवाया, और अब इस गीत को आपको पहचानना है। जो चित्रकार हैं उनका नाम बताना है, और जो चित्रकार हैं वो किन की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

ऐसी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर तस्वीरें आपने भी अपने एल्बम में सजा रखी होंगी श्रोताओं। आजकल तो मोबाइल का जमाना है कि जब चाहें तब तस्वीरें निकाल सकते हैं, तो एल्बम की बात करें और मोबाइल की तस्वीरों की बात करें तो किन्हें संजोना आपको अच्छा लगता है और किन तस्वीरों को आपने ज्यादा समय तक संजो कर रखे हुआ है, तो ये बात आप हमसे साझा कर सकते हैं। आप सुन रहे थे ये गीत सफर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में और राजेश खन्ना जो शर्मिला टैगोर की तस्वीर बनाना चाहते हैं, ऐसा हमारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारी श्रोता लिखती हैं, ये समस्त सृष्टि की चित्र प्रतिमाएं सम्राट के मुकुट में जड़े रत्न मणियों जैसी लगती हैं, जिसे देखने को आंखें आतुर रहती हैं, जैसे कि किसी की बोलती आंखें रेशमी लहराती जुल्फें प्यार की ख्वाहिशों को जगाकर रूहानी मोहब्बत बन जाती हैं, यही प्यार के मोती स्मृतियों के पर्दे पर बिखरने लगते हैं, तब लगता है वास्तविक अनुभूति की अनोखी बात। और एक और श्रोता लिखते हैं, लियोनार्डो द विंसी के द्वारा कैनवास पर बनाई गई तस्वीर में इस कायनात के सारे रंग मौजूद हैं, रहस्य रोमांच मुस्कान शालीनता सुंदरता सब कुछ ही तो समाहित है, आप जिस एंगल से इस तस्वीर को देखोगे इसकी सम्मोहित करती आंखें उसी ओर से आपको दिखाई देंगी, ऐसा लगता है कि हम तस्वीर नहीं देख रहे बल्कि तस्वीर हमें देख रही है, तस्वीर बना बीते हुए दिनों की यादों का पिटारा होती है, आज भी जब मैं पुरानी तस्वीरों को देखता हूं तो सारी यादें मस्तिष्क पटल पर चलचित्र की भांति घूम जाती हैं और बीते दिन याद आ जाते हैं। कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखे हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, और एक और श्रोता ने लिखा है शब्दों के बारे में कि तस्वीर शहंशाह जीवन आंखें जुल्फ झूमती मोहब्बत और बात, ये शब्द शायद हो सकते हैं। अब आपको ये तस्वीर किनकी बन रही है पहचानना है और ये अदाकार कौन है।

भारत भूषण पर फिल्माया गया संगीत सम्राट तानसेन फिल्म का यह गीत था शैलेंद्र का लिखा, एसएन त्रिपाठी की तर्ज थी, मुकेश की आवाज थी। एक श्रोता लिखते हैं, आज इबारत यादों के कैनवास पर तस्वीरों की बातें कर रही हैं, इसलिए गीत इन्हीं पर आधारित होंगे और कुछ गीत इन्होंने बताए हैं, बेशक यही गीत हैं और तस्वीरों की बातें हम कर रहे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ गीतों के बारे में और उसके बाद तुमने रख तो ली तस्वीर हमारी, पर ऐसे तो हो जिस तरह मौसम बदलता है तुमको भी देखूं रंग बदलते हुए। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीर आंखें जीवन जुल्फ प्यार हवा मोहब्बत तस्वीर मोती साहिल ये वर्ड्स हो सकते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है, आज के शब्द जीवन आंखें ठंडी हवा जुल्फ मोहब्बत और तमाम इन्होंने शब्द लिखे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, गद्यांश में आज तस्वीरों की बातें हुई हैं जो प्यार के एहसासों और यादों की महफिल सजाए हुए हैं। एक और श्रोता लिखती है, तस्वीरों में ऐसा क्या है जिसे देखते ही मन उड़ने लगता है, आज तस्वीरों के माध्यम से सुंदर गीत सुनेंगे। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज इबारत तस्वीरों में समाई हुई है, ये तस्वीरें सिर्फ कैमरा द्वारा या कागज के कैनवास पर खींची रंग भरी लकीरें नहीं, बीते हुए लम्हों की यादें हैं जिसे देख मन उन पुराने गलियारों की ओर चल पड़ता है, जिसे देख दिल बोल उठता है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। हाँ एक बात है, जो बात तुझमें मुझमें या हम में है वो तस्वीर में नहीं हो सकती, लेकिन इन्हें देखकर दिल बोल उठता है। हमने देखी है तस्वीरों में उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छूकर इन्हें रिश्तों का इल्जाम न दो। और कुछ बातें इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमारे पुराने यादों की गठरी खुलने वाली है, सच में हमें काफी समय हो गया है हमारी अलमारी में रखे एल्बम को देखा नहीं हमने, आज तो रविवार है छुट्टी का दिन है, जरूर हम एल्बम में सजाए फोटो का दीदार करेंगे और सुरीला सफर में बने रहेंगे। जी हाँ, तो बने रहिए सुरीला सफर कार्यक्रम में और बताइए कि एल्बम में कौन कौन सी तस्वीरें आपने सजा रखी हैं, और हाँ क्या आपके एल्बम में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी हैं।

एक श्रोता लिखते हैं कि एक तस्वीर सच में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या चेहरे का अक्स नहीं होती, अक्स होना चाहिए था श्रोताओं यहाँ पर, बल्कि ये बीते हुए समय का एक ठहरा हुआ दर्पण है। ये हमें उन अनमोल पलों और एहसासों, भावनाओं और यादों के समंदर में वापस ले जाती है, जहाँ रंगों की जीवंतता और प्यार की महक आज भी ताजा महसूस होती है। ये बीती हुई यादों को संजीवने का सबसे खूबसूरत और भावात्मक जरिया है। वास्तव में तस्वीरें हमारे जीवन की वो खिड़कियां हैं जिसे हम जब चाहें अपने बीते हुए कल को झांक सकते हैं और अपनों के साथ बिताए प्यार को फिर से महसूस कर सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज हमारे शहर में बारिश की आशा है। जी हाँ, तो बारिश हो जाए तो क्या ही बात है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, सागर भी तरसते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, और तमाम सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता ने जीवन से भरी तेरी आंखें, झूमती चली हवा, तस्वीर तेरे दिल में, ये सारे गानों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं ये कायनात के राज समझना सचमुच बहुत मुश्किल है, सुंदर सी ये रचना किसी मूर्तिकार की मूर्ति की तरह नजर आती है। कुछ गीत लिख रहा हूँ, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है एक शहनशाह ने बनवाकर, और कुछ एक गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं किसी की खूबसूरती की बातें होने वाली हैं, उसकी प्यारी प्यारी बातें और उसकी आंखों की भी बातें तो हम जरूर सुनेंगे। और इन्होंने और कुछ भी बातें लिखी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि वक्त के हाथों में सबकी तकदीर है, आईना झूठा है, सच्ची तस्वीरें हैं, तस्वीर तेरे दिल में, और तमाम गीतों को इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तस्वीर के बारे में लिखना, तस्वीर बनाता हूँ नहीं बनती, और एक ख्वाब सा देखा है ताबीर नहीं बनती, और गीतों को मिलाकर इन्होंने कुछ पैरडी की तरह बनाया हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं तस्वीर और हकीकत का रिश्ता बड़ा अजीब है, तस्वीर वक्त के समंदर से चुराया हुआ एक ठहरा हुआ लम्हा है, जहाँ न कभी उम्र बढ़ती है और न मुस्कुराहट फीकी पड़ती है, जबकि हकीकत लगातार बहती हुई नदी है जो हमें आज के सच से रूबरू कराती है। तस्वीर अतीत की एक सुरक्षित तिजोरी है जिसे विपरीत हकीकत गतिशील है, जहाँ वक्त का गुजरना, चेहरों, चेहरे की झुर्रियां और अनुभवों का जुड़ना शामिल है। तस्वीरें यादों का आईना होने के नाते बेहद जरूरी है, लेकिन जब कोई हकीकत में हमारे सामने बैठकर बात करता है तो उसकी आवाज की खनक और सांसों की गर्माहट जो जीवंत एहसास देती है, उसे दुनिया का बड़े से बड़ा फोटोग्राफर भी कभी कभी कैमरे में कैद नहीं कर सकता, ऐसा इनका लिखना है। कश्मीर की तस्वीर के बारे में हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों के बारे में पूछा था। क्या आपको सनसेट की तस्वीरें निकालना पसंद है?

श्रोताओ, ये गीत आप सुन रहे थे बिन बादल बरसात फिल्म से, जो आशा पारेख और विश्वजीत पर फिल्माया गया। और इसके पहले हमने बेमिसाल फिल्म का गीत आपको सुनवाया था। विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन और राखी पर फिल्माया गया ये गीत, हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रेम रस में डूबी इबारत तस्वीर के सहारे झूमती हिचको लिखाती समुद्र में गोती लगा रही है, प्रेम रस से सराबोर गीत आज बजने वाले हैं, तो आपको इसके लिए तो कार्यक्रम सुनना होगा। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीर में मुस्कुराती वो लड़की जैसे खामोश कहानी हो, उसकी आंखें कुछ कहती हैं, उसकी मुस्कान कुछ छुपाती है और देखने वाला अपनी यादों का अर्थ उसमें ढूंढ लेता है। एक और श्रोता ने इस टेक्स्ट को अंग्रेजी में लिखा है, वैसे आप हिंदी में लिखें तो बहुत अच्छा होगा। श्रोताओं, इनका टेक्स्ट हम पढ़ देते हैं क्योंकि इनके कई बार टेक्स्ट आ चुके हैं और सारे अंग्रेजी में ही रहते हैं, तो हम इनसे यही गुजारिश करेंगे कि आप हिंदी में टेक्स्ट लिखें तो बहुत ही क्या ही बात है। फिर लिखते हैं कि द टेक्स्ट इज अबाउट अ ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड एंड दैट इज आइज। विदाउट दैट गिफ्ट ह्यूमन लाइफ इज यूजलेस। ब्यूटिफुल आइज आर अ पार्ट एंड अ पार्टिकल ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एंड पोइम्स are as well as prose have described the beauty of eyes. All the best. इन्होंने एक दूसरे श्रोता हमारे लिखते हैं, कायनात की सबसे सुंदर खूबसूरत तस्वीरें अक्सर दिल में बसती हैं, कुछ आंखें कुछ जुल्फें और कुछ बातें उम्र भर याद रह जाती हैं। वक्त बीत जाता है मगर उनकी यादें दिल के साहिल पर लहरों की तरह लौटती रहती हैं। मोहब्बत की मोती आज भी यादों के कैनवास पर चमकते हैं, तस्वीरें बहुत कुछ संभाल लेती हैं लेकिन एहसासों की गर्माहट कहां सहेज पाती हैं, इसलिए दिल आज भी धीरे से कह उठता है वो बात तस्वीर में कहां। जो आगे भी इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं, आप फिलहाल ये गीत सुनिए श्रोताओं और बताइए कि ये जो चिट्ठी है यानी जो खत है उसमें किसकी तस्वीर नजर आती है और ये अभिनेत्री कौन है।

जागीरदार जो एक्टर हैं उनकी तस्वीर नजर आती है इस गीत में श्रोता, जो अभिनेत्री अजरा के हाथ में है। बाबर फिल्म का ये गीत आपने सुना, साहिल लुधियानवी का लिखा, रोशन का संगीत था। ये हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत प्यार मोहब्बत वादे बोलती आंखें लहराती जुल्फें कस्में वादे प्यार वफा जैसे खूबसूरत अल्फाजों से सजे एहसासों को प्रदर्शित करती है। समय का चक्र इन घावों पर मलहम लगाकर भर देता है, पर फिर भी दिल के किसी न किसी कोने में वो तस्वीर उभर आती है जो अतीत के जीवन को साफ दर्पण में जो अतीत को साफ साफ दर्पण में दिखती है। अतीत की यादें कभी मिटती नहीं हैं, वो धुंधली जरूर हो जाती हैं। जी हाँ, इन्हीं तस्वीरों की यादें आप साझा कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों की बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि तस्वीरें इसलिए खूबसूरत नहीं होती कि उनमें कोई चेहरा है, बल्कि इसलिए होती हैं कि उनमें एक सच्चा एहसास बसा होता है। जब सादगी और मुस्कान साथ हों तो तस्वीर सिर्फ देखी नहीं जाती, दिल में उतर जाती है। तो आपको भी ऐसी ही तस्वीरों के बारे में बताना है। और श्रोताओं, आजकल तो लोग यानी कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं ऐसी जगहों की तरफ घूमने चल दिए होंगे जहां बारिशों में बड़ी सुंदर तस्वीरें उतारी जा सकती हैं। तो क्या आप भी ऐसे सफर पर हैं, या कभी आपने बारिशों की तस्वीरें किसी खास जगह पर उतारी हो तो आप हमसे जरूर कह सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तस्वीर की बात कहूं तो जब मैं एनसीसी कैंप भोपाल गया था तो मुझे राइफल SLR चलाने के लिए दी गई थी। सचमुच ही वो मुझे बहुत आज भी याद है। उस राइफल की तस्वीर आज भी मेरे एल्बम में रखी हुई है जिसमें दाहिने हाथ में मैं खड़ा हूं, बाएं हाथ में मेरे मैनेजर सर हैं। सचमुच ही तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सुरीला सफर।

अभिनेत्री मधुबाला की जो तस्वीर है वो बहुत सारे शीशों में नजर आती है। श्रोताओ, इन शीशों की कुछ खासियत है, इनके बारे में क्या आप जानते हैं तो हमें जरूर लिखें। मुगले आजम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में शकील बदायूनी का लिखा ये गीत था। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रकृति के रंग कभी बनावटी नहीं होते, इसलिए वे हमेशा दिल को अच्छे लगते हैं। शायद सच्ची खूबसूरती भी वही है जो बिल्कुल सहज हो। हर फूल एक रंग है, हर पत्ता एक मुस्कान और हर सुबह प्रकृति की बनाई हुई एक नई तस्वीर। बस उसे महसूस करने का मन होना चाहिए। एक और श्रोता लिखती हैं, रात में जब चांद की रोशनी सफेद संगमरमर से बने ताजमहल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा ताजमहल चांदी की हल्की परत से ढक गया हो। यमुना नदी के शांत जल में ताजमहल का प्रतिबिंब इस सौंदर्य को और भी मोहक बना देता है। आपको फिल्म पहचाननी है और कलाकार।

0: है के सपनों की महफिल में तस्वीर तेरी दिल में।
1: श्रोताओ, एक सवाल आपसे पूछते हैं कि क्या तस्वीरें बनाना आपको पसंद है? क्या आप तस्वीर बनाते हैं?

माला सिन्हा और देवानंद पर फिल्म आया गया ये किताब सुन रहे थे। फिल्म माया से मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा सलील चौधरी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखती हैं, सुंदर चेहरा और सुंदर आंखें केवल ईश्वर के द्वारा ही बनाई जा सकती हैं, असलियत में चित्रों में नहीं। एक और श्रोता लिखती हैं, चांदनी रात में खिली किसी मुस्कान सी वो हसीन तस्वीर जैसे किसी खूबसूरत नज्म का अधूरा शेर हो। इसे निहारते हुए ऐसा लगता है मानो थम गया हो वक्त। वो अल्लाह अदाएं जो तस्वीर में भी एक मदहोश कर देने वाली दास्तान कहती हैं। और इसके आगे भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं, कायनात की तस्वीर ईश्वर ने न जाने कौन से कलम से कौन से रंगों से उकेरी है, कौन से कागज कैंची से पत्ते काटे, अलग अलग शेप पर साइज सेम, और कौन से महीन ब्रश से ऐसे रंग भर दिए, रोम रोम साफ दिखता है, कितना भी कोशिश करो वैसा फिर कोई नहीं बना सकता।

बारह तेरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में। अखबार बारह बंकवी के बोल थे, शौकत दहलवी के तर्स आपने सुनी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैंने बहुत सी पेंटिंग जिसमें सीनरी फूलों की अल्पना मॉडर्न पेंटिंग वगैरह बनाई है, शादी ब्याह के बाद अब कुछ खो गई हैं, कुछ खराब हो गई हैं। तो पेंटिंग जो है, मेरे चाचा को तरह तरह की पेंटिंग बहुत पसंद थी, उन्होंने मेरी पेंटिंग्स की बहुत कदर की और सामान जैसे ब्रश, कलर, बोर्ड बहुत खरीद कर दिए। अब वो नहीं हैं और उनके घर से पेंटिंग कहाँ गई पता नहीं। मेरी एक मॉडर्न पेंटिंग मेरे पिताजी के एक मित्र ले गए थे। जी हाँ, अगर कोई कला आप में है तो उसके लिए लोग आगे आएं और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो दें तो क्या ही अच्छी बात है। जैसे इन्होंने ब्रश और पेंट्स की बात कही। एक और श्रोता ने लिखा है कि 1970 में बहन की शादी की ब्लैक एंड व्हाइट एल्बम जब देखते हैं तो आश्चर्य होता है। उस समय के छोटे छोटे बच्चे आज 56-60 साल के हो गए हैं। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आज हमारे शहर का मौसम खूबसूरत है, मौसम ठंडा है, रिमझिम रिमझिम फुहार हो रही है। मैंने इस मौसम की तस्वीर वीडियो बनाकर रखा हुआ है। पिछले गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओं, जो गीत आपने सुना, और इस गीत में आप बताइए कि अभिनेत्री कौन है।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सनराइज सनसेट की फोटो खींचना बहुत पसंद है और बादलों की काली घटाओं की रात में चांद की तारामंडल की सबकी फोटो

शहर का तस्वीर है इस तस्वीर में, ताजमहल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और इस तस्वीर में जो मुकम्मल बन नहीं पाती, ये है बीना रॉय की तस्वीर और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, रोशन की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जी हाँ, परिवार के संबंधियों, यात्रा, प्रकृति सभी की हैं तस्वीरें, और नाना नानी, दादा दादी जी, माँ पापा की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी हैं। तो तस्वीरों की यादों को ताजा करता कार्यक्रम सुरीला सफर अब यहीं संपन्न होता है। आप रहिए विविध भारती के संग। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। रहिए विविध भारती के संग, क्योंकि आगे भी है हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है किताब पर। कहा जाता है कि समय बदल गया है, लोगों की आदतें बदल गई हैं और अब किताबों के लिए किसी के पास समय नहीं है। लेकिन हम थोड़ा ठहर कर देखें तो पाएंगे कि किताबें आज भी पढ़ी जा रही हैं, वो आज भी किसी मेज पर खुली हुई मिल जाती हैं, किसी के बैग में रखी होती हैं या किसी पुस्तकालय की अलमारियों में पाठकों की प्रतीक्षा कर रही होती हैं, और किसी शांत कोने में बैठा पाठक अब भी उनके पन्नों में खो जाता है। जिंदगी में कोई किताब हमेशा के लिए बंद नहीं होती, बशर्ते वो अच्छी तरह पढ़ी गई हो या पढ़ी जा रही हो। कुछ ऐसी किताबें हमेशा जीवन की यात्रा में शामिल रहती हैं जो ईमानदारी से पढ़ी गई हो। ना तो किताबें हमारा साथ छोड़ेंगी और ना ही हम उन्हें त्याग पाएंगे, क्योंकि जो पन्ने हमने पढ़े वो बहुत बहुमूल्य थे। किताबें केवल कागज और शब्दों का संग्रह नहीं होती, वो समय की धड़कन को अपने भीतर संजोए रखती हैं। उनमें बीते युगों की स्मृतियां, वर्तमान की संवेदनाएं और भविष्य के सपने बसे होते हैं।

जब कोई व्यक्ति एक पुस्तक पढ़ता है तो वो केवल अक्षरों को नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि विचारों, भावनाओं और अनुभवों की एक पूरी दुनिया से परिचित हो रहा होता है। आज भले ही मोबाइल और इंटरनेट ने जीवन में अपनी जगह बना ली हो, लेकिन किताबों का महत्व बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। तकनीक ने तो किताबों को और अधिक सुलभ बना दिया है। ई-बुक्स और ऑडियो बुक्स के रूप में पुस्तकें हर दिन नए पाठकों तक पहुंच रही हैं। माध्यम बदल सकता है, लेकिन ज्ञान और साहित्य की प्यास वही की वही रहती है। किताबें मनुष्य को सोचने की शक्ति देती हैं, वो कल्पना को विस्तार देती हैं, संवेदनाओं को गहराई प्रदान करती हैं और जीवन को समझने का दृष्टिकोण देती हैं।

कोई बच्चा पहली कहानी पढ़कर मुस्कुराता है, कोई युवा किसी प्रेरणादायक पुस्तक से नया संकल्प लेता है, या कोई बुजुर्ग कविता के पन्नों में अपनी स्मृतियों को खोजता है, तब ये सिद्ध हो जाता है कि किताबें आज भी जीवंत हैं, वो पढ़ी जा रही हैं, समझी जा रही हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश फैला रही हैं। सच तो ये है कि सभ्यता के विकास की यात्रा में किताबें हमेशा इंसान की सबसे विश्वसनीय साथी रही हैं। समय चाहे कितना भी बदल जाए, शब्दों की ये दुनिया अपनी महक कभी नहीं खोएगी। किताबें पढ़ी जा रही हैं, क्योंकि मानव मन आज भी ज्ञान, संवेदना और आत्मिक समृद्धि की तलाश में है, और इस तलाश का सबसे सुंदर पड़ाव आज भी एक अच्छी किताब ही है। किताबें मौन होकर भी बहुत कुछ कहती हैं। जो उन्हें पढ़ लेता है, वो जीवन को थोड़ा और गहराई से समझने लगता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
1: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि यह बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने

0: कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01991295681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविने ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने 2 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 3रा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर 3रा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में NCPI को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की

0: हानत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया, भरत व्यास की रचना थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर, तो सुनिए।

0: सेहत नामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: इक्कीस जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

बदन

ಮಗನ್ ಓರಪ್ಪ ಖೈರ್ ಓರಪ್ಪ ಖೈರ್ ಓರಪ್ಪ ಖೈರ್ ಖೈರ್ ಖೈರ್.

0: आप सुन रहे थे लाड साहब फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। श्रोताओ, सदाबहार नगमे कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश आपने सुनी। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: ओ तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 और 30 सेकंड हुए हैं और वक्त हो चला है आपके मनचाहे गीतों का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का इस प्रोग्राम में। जब विविध भारती है आपके संग, तो सुरीली गीतों की बहार तो लाजमी है श्रोताओ, और ऐसे में हो आपके पसंदीदा गीत तो क्या कहने। तो देखिए आज के मनचाहे गीत प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा, कहीं आपकी पसंद का कोई गीत तो शामिल नहीं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

जी ने किरा फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज से। इस गीत की फरमाइश की सिमगा से, छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले की ये फरमाइश थी। और इसी गीत को सुनना चाह जारूर वारूर महाराष्ट्र से बाबा साहब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे, कार्तिक युवराज। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार ने।

पत्थर के सनम फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश भेजी बारगी नगर जबलपुर से रविंद्र, सुभाष, दिगंबर, राजेश, शिवम, शुभांग और सृष्टि गढ़े ने। कुंडलेश्वर खंडवा से इस गीत को सुनना चाहते थे योगेश गुजराती, महिमा हर्षिता, भूमिका मुस्कान, रेखा गुजराती और अभय गुजराती। इसी गीत की फरमाइश की श्री गंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जॉनी, धनराज बंसीवाल, गुंजन और प्रियंका और केशव भी यहीं से। केवर कॉलोनी बाड़वा मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली की फरमाइश थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओ कार्यक्रम मन चाहेगी।

फिल्म आंधी का दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता की फरमाइश थी। कोटा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तुपानी डांगी, मिस टीना डांगी, लक्ष्य बाबू की ये फरमाइश थी। और लक्ष्मीपुरा देवास से नवीन वर्मा, विराट वर्मा, मीनू वर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा। नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से इस गीत की फरमाइश करते हैं। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया की ये फरमाइश थी।

ठाकुर जनरल सिंह, फिल्म में आशा भोसले को आपने सुना, असद भोपाली के बोलों को सुरों में ढाला गणेश ने, और फरमाइश की आप सभी ने सिमगा छत्तीसगढ़ से सविता प्रदीप जैन और इनके बहुत सारे साथी, और केदारनाथ सोसाइटी से, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है, रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीताबा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करण राज और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते थे। तेलंगाना राजन्ना सिरिसिल्ला जिला विलासागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्वी, माहिती चंद्रया, मल्लवा, नरेश, लावण्या, महसिविन, रेवंत, श्रीनु, सुजाता, ग्रीष्मा, दीपक, रमेश, कनक, लक्ष्मी, श्रीजा, साई कुमार और सुषमा।

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म लोफर से मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गीत को सुनना चाहा फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन ने। और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, जिला लुधियाना मोहल्लापुर दाखा मंडी से राजेश अरुणा, दीपक गौतम, बिट्टू बिट्टी, अरिहंत, सुरभि और नगीना की फरमाइश आई। गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी इस गीत को सुनना चाहती थी।

0: गीत आपने सुना फिल्म अनपढ़ से लता मंगेशकर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खान के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। इस गीत की फरमाइश की स्वामी देव बोधित सौ भवानी।
1: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का लिखा नाटक यात्रा का अंत।
1: आप कब तक खड़े रहेंगे बाबू? यहाँ बैठ जाइए ना।
2: बैठ कर क्या करूंगा भाई, यूं ही ठीक हूँ।
1: कब से तो आप खड़े हैं, थक गए होंगे। मैं यहाँ जगह बनाई देता हूँ, बैठ जाइए।
2: मेरे लिए क्यों चिंता करते हो भाई, मैं ठीक हूँ।
1: आप कुछ चिंतित मालूम होते हैं।
2: चिंतित? चिंतित क्यों होऊंगा?
1: नहीं, आपको देखने से लगता है कि आप कुछ दुखी हैं।
2: मेरे सुख दुख से किसी को क्या मतलब।
1: आप यहाँ बैठ तो जाइए, दुनिया में आदमी है तो एक दूसरे की चिंता तो करनी चाहिए।
2: हाँ भाई, जरूर करनी चाहिए। तुम मेरी चिंता न करोगे तो कौन करेगा बेटे, कौन करेगा?
1: मैं लाचार हूँ पिताजी।
2: ये मेरी इज्जत का सवाल है राजेश बेटे, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
1: नरेश लाचार है तो मैं भी लाचार हूँ। सुन रहे हैं क्या?
2: हाँ? नहीं भाई, सोचूंगा क्या, मेरे पास सोचने को है क्या?
1: घर परिवार में तो सब ठीक है ना?
2: हाँ, सब ठीक ही है।

0: धरती पर मैं खड़ा था ना, वो धरती मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई है। मैं कैसे खड़ा रहूं यहां जहां धरती तरक गई हो, दीवारें तरक गई हो, जिंदगी तरक गई हो, वहां राजेश की मां मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा।
1: लेकिन आप जा कहां रहे हैं
2: पिताजी?
0: मुझे गलत नाम से न पुकारो।
2: आप आराम से बैठिए ना।
0: मैं बहुत ठीक हूँ भाई, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी।
3: इसमें मेहरबानी की क्या बात है? आदमी एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो दूसरा करेगा कौन?
0: ठीक कह रहे हो तुम भाई।
2: आप जा कहाँ रहे हैं?
0: क्यों
3: नहीं पूछना चाहिए क्या?
0: नहीं भाई, पूछने में क्या हर्ज है।
3: मैंने यही जानने के लिए पूछ दिया कि कहाँ तक आपका साथ रहेगा, कहाँ जा रहे हैं आप?
0: यही तो नहीं मालूम है मुझे।
3: क्या कह रहे हैं आप?
0: सच ही तो कह रहा हूँ भाई, जानता तो बतलाने में हर्ज ही क्या था। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ, चला जा रहा।

0: अब क्या होगा राजेश?
1: यही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ।
0: सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा बेटे।
1: मैं अपनी ओर से कुछ उठा नहीं रख रहा हूँ माँ। मैं पिताजी की खोज में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रेडियो से सूचना प्रसारित करा दी है, अखबारों में सूचना निकलवा दी है, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा दी है और संबंधियों को भी लिख दिया है।
0: लेकिन ये सब करने से क्या होगा?
1: दूसरा और मैं क्या करूँ? तुम जो कहो मैं सब करने को तैयार हूँ।
0: मेरी समझ में कुछ आता है कि कहूँ? तुमने पहले कुछ नहीं सोचा।
1: मैं क्या जानता था कि ऐसा हो जाएगा? मैंने नहीं सोचा था कि पिताजी इस तरह एकाएक घर से चले जाएंगे।
0: सोचा तो मैंने भी नहीं था बेटे, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि वैसी स्थिति में वे कर क्या सकते थे। उन्होंने किस विश्वास के बल पर कृष्णा की शादी देखी थी, लेकिन उनका वो विश्वास ही टूट गया तो वे क्या करते?
1: मैं क्या कहूँ माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
0: तुम क्या कहोगे राजेश? अब तुम क्या कहोगे? तुम्हारे पिताजी ने किस उम्मीद और अरमान से बेटों को पढ़ाया लिखाया, क्योंकि बुलाया? अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कमाया सब बेटों की पढ़ाई लिखाई पर लगा दिया। ये कभी नहीं सोचा कि अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए।
1: मैं सब कुछ जानता हूँ माँ, सब कुछ जानता हूँ। यह सब कहने की जरूरत नहीं है।
0: इसी बात का दुख है बेटे कि तुम सब कुछ जानते हो, समझते हो, और तब भी तुम्हारे पिताजी को घर छोड़कर जाना पड़ा।
1: मुझे भी इसी बात का दुख है माँ। मैंने उन्हें रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके तो नहीं रुके।
0: लेकिन तुमने उन्हें अकेले छोड़ कैसे दिया?
1: मैं क्या करता माँ, मेरी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी। मैंने कितना कहा लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मैंने समझा अभी आवेश में है, कुछ देर में इधर उधर से घूमकर खुद ही वापस चले आएंगे।
0: कई दिन तो हो गए, कहीं उनका पता नहीं है।
1: यही तो मालूम नहीं होता कि कहाँ चले गए। ये नरेश के यहाँ तो नहीं गए होंगे?
0: नरेश करम तो देख आए थे, उनके यहाँ कैसे जा सकते हैं?
1: और कोई ऐसा रिश्तेदार और परिचित तो दिखाई नहीं पड़ता जहाँ वे जा सके।
0: जिसने अपने बेटे का घर छोड़ दिया है वो रिश्तेदार और परिचित कहाँ जाएगा?
1: फिर कहाँ गए होंगे?
0: इसी से तो मुझे चिंता हो रही है, कहीं वे कुछ ऐसा न कर बैठे। मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी?
1: तुम चिंता न करो माँ, पिताजी का पता जरूर लगेगा, वे जरूर लौट कर आएंगे।
0: तुम उन्हें नहीं जानते बेटे, वे बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, आन के सामने भी और कोई बात नहीं सोचते। जिद और आन के चलते ही उन्होंने इतना कष्ट सहकर तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने तुम लोगों के विश्वास पर कृष्णा की शादी तय की थी। शादी न होने पर समाज में उनकी कितनी बेइज्जती होती, क्या वे कहीं मुंह दिखाने लायक रहती?
1: गलती तो जरूर हुई है माँ।
0: अब कहने से क्या होता है राजेश? तुम्हारे पिताजी चले गए, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई।
1: ऐसा न कहो माँ।
0: कहने न कहने से क्या, सच तो सच ही रहेगा ना। वे थे तो मेरे लिए सब कुछ था, वे चले गए, मेरा सब कुछ चला गया। मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी?
1: ऐसा ना कहो माँ, हम तो हैं।
0: कैसे विश्वास करूं मैं, जिसने पिता की त्याग तपस्या के मूल्य नहीं समझा वो मेरी चिंता करेगा?
1: माँ ये क्या कह रही हो तुम?
0: सच ही तो कह रही हूँ बेटे, जो अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, वही तो कह रही हूँ।
1: मुझे गलत न समझो माँ, मैंने इस परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की थी, नहीं तो ऐसा क्या मैं कभी होने देता? पिताजी जो कहते जैसा कहते वही करता मैं।
0: अब ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी लौट आए, सकुशल लौट आए।
1: अपनी ओर से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ माँ।
0: कोशिश तो करनी ही है बेटे, मेरे मन में बार बार यही आ रहा है कि मैं भी उनके साथ क्यों नहीं चली गई। मुझे क्या हो गया था उस समय कि मैं खड़ी ठिठ रही और वे मेरी आंखों के सामने से चली गए।
1: ये सब मत सोचो माँ, मत सोचो। जो होना होता है वही होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता।
0: जानती हूँ मैं, लेकिन इससे मेरे मन को संतोष नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। मैं कह देती हूँ राजेश, अगर वे लौट कर नहीं आए तो मैं ही इस घर में नहीं रहूंगी।
1: ये क्या कहती हो माँ?
0: मैं सच कहती हूँ बेटे, अगर तुम्हारे पिताजी लौट कर नहीं आए तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी।
1: माँ ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो माँ।
0: तुम्हें बताओ दूसरा मैं क्या कहूँ?
1: हमारी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है माँ, उन्हें खोजने में मैं कुछ नहीं उठाने रखूंगा। मैं उमेश को इस काम के लिए शहर भेज रहा हूँ और मैं खुद भी घूम फिर कर उनका पता लगाऊंगा।
0: आशा तो तुमसे यही है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मन में तरह तरह की आशंकाएं आती रहती है।
1: मन को धीरज बंधाओ माँ, धीरज बंधाओ, मुझ पर विश्वास रखो। क्या है कृष्णा?
0: तुम यहाँ कब से खड़ी हो बेटी?
2: अभी आई हूँ माँ।
0: क्या बात है बेटी?
2: माँ खाना तैयार हो गया है।
0: मुझे तो भूख नहीं है।
2: क्यों माँ, सवेरे भी तुमने नहीं खाया था?
0: भूख होगी तो खा लूंगी।
1: पर इस तरह खाना पीना छोड़ दोगी तो कैसे होगा माँ?
2: तुमने भी तो सवेरे नहीं खाया था भैया।
0: तुम भी खाना पीना ना छोड़ो राजेश।
1: मैंने नाश्ता किया था माँ, भूख नहीं मालूम हुई।
2: एक बात कहो माँ।
0: कहो ना, क्या बात है बेटे?
2: माँ मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन लेकिन मेरा मन अब बिल्कुल भर आया है माँ।
0: क्या बात है बेटी, कहो भी तो।
2: मैं तुम्हारी बातें अभी सुन रही थी माँ। तुम कहती हो कि पिताजी वापस नहीं आए तो तुम भी यह घर छोड़कर चली जाओगी, क्यों माँ?
0: यहाँ रहकर मैं क्या करूंगी बेटी?
2: लेकिन मेरा क्या होगा माँ, मेरा क्या होगा माँ? मैं क्या करूंगी, मैं कैसे रहूंगी माँ?
1: ये सब क्या कह रही हो तुम? बेकार की बातें नहीं सोची जाती कृष्णा।
2: ये बेकार की बातें नहीं है भैया, जिंदगी की असलियत है। मेरे मन में शुरू से ही बेचैनी रही है और पिताजी के जाने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई है भैया। बार बार मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में सिर्फ मैं ही हूँ।
0: ये सब नहीं कहते बेटी, ये सब नहीं कहते।
2: क्या करूँ माँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मुझसे अब रहा नहीं जाता माँ, अपने ही कारण इस घर को बर्बाद और परेशान होते देख मैं सचमुच बहुत बेचैन हूँ माँ। सब कुछ मेरी शादी के कारण ही तो हुआ है, इसी के लिए तो पिताजी इतने परेशान रहे, इसी के लिए तो घर के अपने लोगों में संघर्ष और तनाव बढ़ा, और इसी के कारण तो पिताजी को घर से चला जाना पड़ा। सबकी परेशानी की जड़ तो मैं ही हूं माँ, काश कि मैं नहीं रहती माँ।
0: ये सब क्या कहती है बेटी? ये सब मत कहा, मत कहा। जिंदगी है तो ये सब देखना और भोगना ही पड़ता है।
2: लेकिन तुम भी चली जाओगी माँ तो मैं कैसे रहूंगी माँ?
0: मैं अभी जा कहा रही हूँ? तुम्हें छोड़कर मैं जा सकती हूँ भला? बिना तुम्हारा इंतजाम हुए मेरे मन को कहीं शांति मिलेगी? लेकिन मैं क्या कहूँ, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद से मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत दुखी हूँ।
1: हम सब दुखी हैं माँ, लेकिन सिर्फ दुखी होने से तो काम नहीं चलने वाला है ना। ऐसी परिस्थिति में हम लोग जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे, जी जान लगाकर करेंगे। यह और कुछ सोचने का समय नहीं है, अभी तो उन्हें कहीं से खोजकर घर ले आना है।
0: हे भगवान, कहाँ होंगे वो, कैसी होंगी, उनकी रक्षा करना भगवान।
1: ये एकाएक क्या हो गया भैया? तुम सब कुछ जानते हो नरेश, मैं तो उस दिन रेडियो से सुनकर एकाएक सम रह गया। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, कभी आपका तार मिला।
3: हाँ, मैंने सोचा शायद तुम्हारे यहाँ गए हो।
1: नहीं, मेरे यहाँ नहीं गए, मैंने तार का जवाब दे दिया था।
3: हाँ मिल गया,
1: लेकिन लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? क्या कहकर गए थे? कैसे गए यहां से?
3: तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ, और तुम मुझसे पूछते हो ये हुआ कैसे?
1: मेरे कारण हुआ? मेरे कारण वे घर छोड़कर चले गए?
3: दूसरा क्या?
1: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं भैया।
3: तुम सब समझते हो नरेश।
1: मैं कुछ नहीं समझता भैया।
3: तुम इतने सरल होते तो आज ऐसी बात ही नहीं होती।
1: मुझ पर कोई बड़ा इल्जाम मालूम होता है।
3: नहीं नरेश, इल्जाम लगाने वाला मैं कौन होता हूं? मुझे तो सिर्फ दुख है इस बात का कि जिस पिताजी ने हम लोगों के लिए इतना किया, उन्हें हम लोगों के कारण घर छोड़ना पड़ा।
1: कुछ बात भी तो बतलाइए भैया।
3: कृष्णा की शादी के सिलसिले में पिताजी तुम्हारे पास गए थे?
1: गए तो थे।
3: तुमसे कुछ बातें हुई थी?
1: हुई थी।
3: तुमने क्या कहा था?
1: मैंने कहा था कि मैंने मकान में काम लगा दिया है, पैसों की कमी हो गई है, इसलिए मैंने अपनी लाचारी जाहिर की।
3: उसी लाचारी ने तो यह अनिष्ट कराया है नरेश।
1: आपके यहाँ क्या बातें हुई?
3: मैंने उनसे कहा था कि 40,000 रुपए बहुत होते हैं, अकेले मैं उतने रुपए नहीं दे सकूंगा, आधा नरेश दे दे तो आधा मैं दे दूंगा।
1: उन्होंने क्या कहा?
3: उन्होंने जो शादी तय की थी उसे तोड़ने को वो तैयार नहीं थे, और उसमें 40,000 से कम लगते नहीं। मैंने उनसे बार बार कहा कि मैं 20,000 रुपए देने को अभी भी तैयार हूं, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं था। और तुमने तो कुछ भी देने से साफ ही इनकार कर दिया।
1: मैं क्या कर सकता था भैया, मेरे रुपये मकान में लग गए हैं और मकान अभी अधूरा है।
3: अरे मकान कुछ दिन और अधूरा रह जाने से तुम्हारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तुम चाहते तो पिताजी को आसानी से 15-20 हजार तो दे ही सकते थे। पिताजी की इच्छा पूरी हो जाती, कृष्णा की शादी भी हो जाती, और आज जो कठिन परिस्थिति हमारे सामने आई है इसका सामना तो नहीं करना पड़ता।
1: आप कहते तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी लाचारी की बात क्या कहूँ?
3: कोई भी कह सकता है कि तुम्हारी लाचारी एक बहाना है। उनका सहज विश्वासी मन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे लगा कि वे एकाएक टूट गए।
1: मैं उनकी स्थिति समझता हूँ भैया, लेकिन मैं इसमें कर क्या सकता था?
3: सब तो तुम ही कर सकते थे नरेश। तुमने रुपए दे दिए होते तो पिताजी को इस तरह घर तो नहीं छोड़ना पड़ता।
1: जब ऐसी बात थी तो आपने ही पूरे रुपये क्यों नहीं दे दिए? आपके पास रुपये नहीं थे क्या?
3: मुझे पहले शादी की बात का पता नहीं था, और मैंने कुछ रुपए खास काम में लगा दिए थे।
1: जानता हूं मैं वो खास काम, जमीन बाहर में भी खरीदी जा सकती थी।
3: मुझे शादी का पता रहता तो मैं कभी अपने रुपए जमीन में नहीं लगाता।
1: ये सब कहने की बातें हैं भैया।
3: तुम जो कहो नरेश, मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। अभी मैं बहस में पड़ने की स्थिति में हूं भी नहीं। अभी मेरे सामने दूसरी समस्या है।
1: समस्या? क्या समस्या है?
3: पिताजी के चले जाने से तुम्हें दुख नहीं होता क्या?
1: होता क्यों नहीं भैया, लेकिन अब करना क्या है?
3: पहले तो पिताजी की खोज करनी है, उन्हें वापस ले आना है। माँ कहती है कि पिताजी नहीं आए तो वो भी कहीं चली जाएगी। कृष्णा कहती है कि माँ यहाँ नहीं रहेगी तो वो भी नहीं रहेगी।
1: समस्या तो कठिन है ही।
3: खोज के लिए जो कुछ करना चाहिए वह सब मैं कर रही हूँ। ईश्वर करे वे वापस आ जाएं। कहीं कुछ हुआ तो बड़ी बदनामी होगी।
1: बदनामी तो होगी ही, लोग तरह तरह की बातें करेंगे।
3: ये तो है ही, अपना कर्तव्य भी तो है।
1: आप जो कुछ उचित समझे करें, मैं आपके साथ हूं।
3: पिताजी आए या ना आए, असली समस्या तो अपनी जगह पर है, और उसे हम ही लोगों को सुलझाना है।
1: आप कृष्णा की शादी की बात कर रहे हैं?
3: हाँ, मैं उसी के बारे में कह रहा हूं। अब तो वो हम ही लोगों की जिम्मेवारी है ना। अब हम लोग उसे किसी दूसरे पर तो नहीं फेंक सकते। जैसे भी हो हम ही लोगों को निभाना है।
1: हाँ, उसे भी देखा जाएगा भैया।
3: तुम्हारा पूरा सहयोग चाहिए।
1: मुझसे जो हो सकेगा जरूर करूंगा। पहले पिताजी के बारे में कुछ पता तो लगे।
0: क्यों बेटी, कुछ पता लगा?
3: नहीं माँ, कुछ भी नहीं मालूम हुआ।
0: कितने दिन तो हो गए।
3: हाँ माँ, इसीलिए अब मुझे भी चिंता होने लगी है। मैंने अपनी ओर से कुछ भी उठा नहीं रखा है। जहां जहां सूचनाएं ले सकता था सब जगह मैंने दे दी है। उमेश को भी मैंने इधर उधर घूमकर पता लगाने के लिए भेजा, खुद भी बाहर गया, पर कहीं कोई पता नहीं मिला।
0: ये सब तो मैं देख रही हूँ।
3: अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता।
0: मेरी भी आशा अब शेष हो गई है, अब क्या होगा?
3: जो ईश्वर की इच्छा होगी। ईश्वर की ही इच्छा है तो किया जा सकता है।
0: क्या सोच रहे हो तुम?
1: अब मैं क्या सोचूं मां?
0: मैं कहीं जा तो नहीं सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं भी अब बहुत दिनों तक जीऊंगी नहीं।
1: ऐसा ना कहो मां।
0: अब मैं क्या करूंगी बेटे? अब जिंदगी में मेरे लिए रह क्या गया है? अब मुझे चिंता है तो सिर्फ कृष्णा की।
1: उसके लिए चिंता ना करो मां, उसके लिए हम लोग हैं।
0: किसी तरह उसकी शादी हो जाती तो मैं निश्चिंत हो पाती, मरती भी तो शांति से मरती।
1: यह सब मत कहो मां, कृष्णा की शादी होगी और अच्छी जगह अच्छी तरह होगी।
0: लेकिन उनकी इच्छा तो पूरी नहीं होगी बेटे। जो इच्छा उनके मन में थी, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ दिया, वो तो पूरी नहीं होगी।
1: होगी क्यों नहीं मां? कृष्णा की पूरी जिम्मेवारी हम लोगों पर है, हम लोग उसे सुखी देखना चाहते हैं।
0: मैं तो चाहूंगी

0: जितना शादी तुम्हारे पिताजी ने तय की थी वही हो।
1: तुम जो कहोगी वही होगा माँ।
0: इतना आसान है बेटे?
1: है कि नहीं?
0: इतने रुपए लगेंगे?
1: हम लोग खर्च करने को तैयार है माँ।
0: फिर तो वही समस्या आएगी कि आधा नरेश दे आधा तुम दोगे।
1: मैंने नरेश से बातें की है।
0: क्या कहता है वो?
1: कहता है जितना उससे हो सकेगा जरूर देगा।
0: और उससे कुछ ना हो सका तब?
1: नहीं माँ, इस बार वह ऐसा नहीं करेगा।
0: मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं होता। नरेश क्या कहता है क्या करेगा नहीं कहा जा सकता। पिछली बार उसने ठीक मौके पर इनकार कर दिया था।
1: पर इस बार ऐसा नहीं होगा माँ, वह कुछ नहीं देगा तभी शादी होगी।
0: कौन करेगा इतना खर्च?
1: क्यों, मैं करूँगा।
0: सचमुच?
1: एक बार मुझसे एक गलती हो गई है माँ, मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता।
0: तुमने अच्छी तरह सोच लिया है?
1: हाँ सोच ही लिया है।
0: और बहू से पूछा है तुमने?
1: पूछना क्या है माँ, मैं जो कहूँगा उसमें उसे एतराज नहीं होना चाहिए।
0: चाहिए तो नहीं लेकिन उसकी राय जरूरी है बेटे, वो भी तो इस घर में है।
1: ठीक है, कहती हो तो पूछ लूंगा।
0: अपने पिताजी के बारे में भी पता लगाते रहना।
1: हाँ माँ, मैं निश्चिंत नहीं बैठा हूँ। तुम क्या सोच रही हो कमला?
0: सोचना क्या है?
1: पिताजी का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन उनकी इच्छा किसी तरह पूरी होनी चाहिए।
0: कैसी इच्छा?
1: कृष्णा की शादी की।
0: हाँ शादी तो करनी ही है।
1: माँ कहती है कि जो शादी पिताजी ने तय की थी वही होनी चाहिए।
0: उसमें तो बहुत रुपये लगेंगे।
1: हाँ रुपए तो लगेंगे ही।
0: आएंगे कहाँ से?
1: उपाय करना पड़ेगा।
0: क्या उपाय करेंगे आप?
1: अरे उपाय क्या, शहर के लोग करने आएंगे, हम ही लोगों को तो करना है ना।
0: वही तो पूछ रही हूँ मैं।
1: उपाय सीधा है, हम लोगों को ही सारे रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
0: क्या सब रुपए आप खर्च करेंगे?
1: तो दूसरा कौन करेगा?
0: और नरेश?
1: फिर तुमने वही पुराना सवाल उठाया।
0: सवाल तो उठाना ही पड़ता है, जब दोनों भाई कमाने वाले हैं, समर्थ है तो बहन की जिम्मेदारी दोनों पर है।
1: और उनमें से कोई एक अपनी जिम्मेदारी ना समझे तब?
0: समझेगा क्यों नहीं, उसे समझाना पड़ेगा।
1: और जब वो समझने से इनकार कर दे
0: तब परिस्थिति के अनुसार काम करना पड़ेगा। नरेश आधा देता है तो ठीक है, हमें आधा देने में कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर वो बिल्कुल हाथ खींच लेता है तब तो हमें सोचना पड़ेगा।
1: और क्या सोचना पड़ेगा?
0: हमें ही जब शादी तय करनी है तब हम अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे, कहीं ऐसी जगह करेंगे जहाँ कम पैसे लगे।
1: ओफो, यह संभव नहीं है कमला, पैसे कहीं कम नहीं लगेंगे। पिताजी ने कुछ सोच समझ कर ही शादी तय की थी, वे कृष्णा की शादी अच्छे लड़के से करना चाहते थे। हम उनकी इच्छा नहीं पूरी कर सके तो वे घर छोड़कर चले गए। अब हमें कम से कम माँ की इच्छा का तो ख्याल करना है।
0: ख्याल करने का ये मतलब तो नहीं है कि हम अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल न करें। अपने तीन बच्चियाँ हैं, अपना मुन्ना है, इनके भविष्य को भी तो देखना है।
2: भैया भैया भैया, क्या हो गया भैया?
1: क्या हुआ? क्या नरेश?
2: चक्का दिखे तो भैया, कृष्णा ने आत्महत्या कर ली है भैया।

0: जाने का सोचा भी ना था कि ऐसा होगा। तुमने चिट्ठी देखी है नरेश, कृष्णा ने लिखा है।
1: मेरी प्यारी माँ, जब तुम मेरा निर्जीव शरीर हवा में झूलता देखोगी, तब तब तुम्हारी जो हालत होगी उसे सोचकर मैं कांप उठती हूँ माँ। लेकिन मेरे लिए अब रास्ता ही क्या है? रोज रोज हर मिनट हर घड़ी मरने से तो एक ही बार मर जाना ज्यादा अच्छा है। मैं तुमसे बार बार कहती रही हूँ माँ कि मैं इन परिस्थितियों से ऊब गई हूँ माँ, अब मुझसे सहा नहीं जाता। सिर्फ मेरे कारण पूरा घर परेशान है। मेरे कारण पिताजी घर से चले गए, मेरे ही कारण तुम हमेशा चिंतित रहती हो, मेरे ही कारण माँ मेरे भाइयों में इतना तनाव है। मैं नहीं रहूंगी तो चारों ओर शांति हो जाएगी। माँ मैं जानती हूँ मौत किसी समस्या का इलाज नहीं है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं सूझता माँ। देखो मैं दहेज के लिए रुपए नहीं कमा सकती, मैं दहेज मांगने वालों से ये नहीं कह सकती कि रुपए मत मांगो। मैं अपने भाइयों पर दबाव नहीं डाल सकती माँ कि वे मेरे लिए त्याग करें। मेरे मन में ये बात बार बार आती है माँ कि मैं लड़की क्यों हुई माँ, क्यों लड़की हुई? लड़का हुई रहती तो पूरे परिवार के लिए समस्या तो नहीं बनती। मेरी माँ तुम्हें दुख तो जरूर होगा माँ, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ? अब मुझसे ये जिंदगी सही नहीं जाती माँ।

0: आप ही से तो पिछली बार भेंट हुई थी।
1: हाँ भाई, इसी ट्रेन में।
0: ठीक तो है?
1: ठीक ही हूँ।
0: कहाँ जा रहे हैं?
1: मैंने कहा था ना, मुझे खुद ही नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। कई जगह उतरा लेकिन कहीं रुक नहीं सका। भाई मैं नहीं जानता मेरी यात्रा का कहाँ अंत होगा।
0: आपके अंदर जरूर कोई बेचैनी है।
1: ये अखबार आज का है?
0: हाँ, आज ही का है। लीजिए, देखिए।
1: ये पत्र राजेश ने छपाया है क्या?
0: राजेश कौन?
1: कोई नहीं, किसी राजेश ने ये पत्र छपाया है, वही देख रहा हूँ।
2: पूज्य पिताजी, पता नहीं आप कहाँ हैं। अगर आप यह पत्र देखें तो जहाँ भी हो लौट आइए। हमें माफ कर दीजिए, पूरा घर दुख में डूबा हुआ है। कृष्णा नहीं रही, माम मरना सुने है।
1: नहीं रही, माम मरना सुने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
0: क्या बात है भाई साहब?
1: मैं कहता हूँ ऐसा नहीं हो सकता। कृष्णा नहीं रही, क्या मतलब है इसका? कहाँ नहीं रही दुनिया में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
0: ये आपके घर की चिट्ठी है। लौट जाइए भाई साहब, लौट जाइए भाई साहब।
1: लौट कर क्या करूंगा, क्या करूंगा लौट कर?
0: आपकी पत्नी बीमार है।
1: हाँ, मेरी पत्नी बीमार है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ गई? मर गई, कैसे मर गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता? मैं घर छोड़कर भाग सकता हूँ तो क्या वो दुनिया नहीं छोड़ सकती? हाँ, क्या उसने आत्महत्या कर ली? नहीं, उसने आत्महत्या नहीं की है, मैंने उसकी हत्या की है।
3: तो ये था नाटक यात्रा का अंत। इसके लेखक डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, निर्देशन किया M.S. बेक ने। आकाशवाणी के रांची केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ

0: साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती,
2: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी फिल्म की कथा जब पर्दे से बाहर दर्शकों के दिलों को स्पर्श करती है तो वो फिल्म अपने किरदारों, गीतों और कथानक के जरिए बन जाती है सदाबहार। इसी तरह अपनी फिल्मों से दर्शकों की सोच को नई दिशा देने वाली निर्देशिका और पटकथा लेखिका हैं सई परांजपे, जिन्होंने पुरुषों के आधिपत्य वाले इस क्षेत्र में न सिर्फ कदम रखा बल्कि अपनी उपस्थिति भी खूब दर्ज कराई। सई परांजपे हिंदी सिनेमा की उन अग्रणी महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने फिल्म निर्देशन और पटकथा लेखन की बागडोर संभालकर इस क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया। आम जीवन की कहानी को भावपूर्ण तरीके से फिल्मी पर्दे पर उतारने वाली सई परांजपे समानांतर सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है। वो अपनी यादों का पिटारा खोलने वाली हैं हम सभी के सामने। उनकी फिल्मों के पीछे की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत का पहला भाग।
1: सई जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है फिर से आकाशवाणी के स्टूडियो में आके?
2: बताऊं कैसे
1: लग रहा है? है
2: हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मैके पहुंच गई।
1: क्या बात है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी यादें उमड़ के आ रही हैं। और रेडियो ये मेरा पहला कार्य था
1: जी।
2: और मेरा पहला प्यार कहिए, ऐसे लगता है कि दोबारा मैं वो सब अनुभव झेल रही हूँ।
1: मैं देख रहा था कि जब आपने हमारा लाइव स्टूडियो देखा तो आपकी आंखों में एक चमक थी और एक नमी थी। काफी पुराने दिन आपको याद आ गए।
2: जी, सही बात है
1: जी। अब रेडियो वाला मामला है, इसकी तो बात करेंगे। हाँ। लेकिन मैंने सुना है कि 8 बरस की उम्र में आपकी पहली किताब आ गई थी। मतलब लिखना जो है वो बिल्कुल संस्कारों में आपको मिला है।
2: जी बिल्कुल, मेरी माँ एक बहुत अच्छी लेखिका थी। और क्या हुआ कि छोटेपन में माँ हमेशा मुझे कहानी, एक सोते वक्त एक कहानी, रोज हमारा दस्तूर था कि एक कहानी वो सुनाए और फिर मैं सो जाती थी। एक दिन माँ ने कहा कि आज मैं बोर हो गई हूँ तो आज मैं नहीं सुनाऊंगी, आज तुम कोई कहानी सुना, मुझे सुनाओगी? तो मैंने कहा हाँ हाँ सुना सकती हूँ। और मैंने कुछ एक अपनी तरफ से कहानी सुनाई और इतना मुझे अभी भी याद है कि उसमें एक कोई साधु बाबा थे जिनकी नीली दाढ़ी थी और ऐसा क्या कुछ था। लेकिन कहानी सुनकर माँ ने कहा कि बुरी नहीं थी, वाह ये कहानी किसने तुम्हें सुनाई? मैंने तो नहीं सुनाई ये कहानी। तो मैंने कहा कुछ बड़प्पन से, नहीं नहीं ये कहानी वैसे मैंने रचाई खुद। माँ ने कहा क्या क्या कह रही हो, तुमने रचाई? बकवास कह रही है। मैंने कहा नहीं नहीं सचमुच मैंने ही रचाई। कहते और कोई कहानी? मैंने कहा बतेरी है, बहुत सारी कहानियां मैंने सोची है। तो और एक कहानी बताई। लेकिन उस दिन से यूनुस मैं इतना खुद को कोसती थी कि क्यों मैंने ये सब बताया, क्योंकि उस दिन से क्या हुआ, रोज मुझे 3 पन्ने लिखने पड़ने लगे। हाँ, तब तक खेलने नहीं जाना, 3 पन्ने लिखो तुम, कहानियां बड़ी कहानीकार बन गई तुम, तो लिखो 3 पन्ने, कुछ ना कुछ लिखो और फिर खेलने जाओ।
1: तो मजा था कि सजा थी?
2: ये सजा लगती थी बिल्कुल मुझे। हाँ, मजा जरा भी नहीं लगता था। पहले तो मजा लगा कि कहानी अपनी बहुत इतनी सराही गई, लेकिन बाद में खैर। तो ये जो भी मैंने कुछ लिखा उन दिनों बचपन में, तो मेरी माँ ने वो इकट्ठा करके उसकी किताब छपवाई, मराठी किताब थी, उसका नाम था मुलांसा मेवा, मतलब बच्चों के लिए खिशमिश कहो,
1: सुंदर नाम।
2: लेकिन मुझे लगता है यूनुस इसमें कोई मेरी इतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं, बड़ी बात, क्योंकि ऐसे कितने होनहार बच्चे होंगे मुझे हमेशा लगता है अपने समाज में, जिनको मेरी माँ जैसी माँ नहीं मिली।
1: जी जी। हाँ,
2: मेरी माँ एक जबरदस्त माँ होने के कारण वो सब ये कर पाई कि मुझे सराहना, मुझे इनकरेज करना और मुझसे लिखवाना और फिर वो छपवाना। तो ऐसे बहुत बच्चे होंगे, ये मुझे अंदर से ही अंदर महसूस होता है।

0: लेकिन चलो मेरी ये किस्मत थी कि मेरा एक सीवी में बढ़िया लगता है ना कि 8 साल की उम्र में किताब छपी।
1: लेकिन
0: तो
1: एक जो आपने जिक्र किया अपनी माँ का, शकुंतला परांजपे
0: जी
1: राज्यसभा की सदस्य रहीं,
0: हाँ
1: परिवार नियोजन, महिला
0: जी जी
1: शिक्षा को लेकर जो
0: हाँ
1: काम उन्होंने किया है, फिर एक और बात है कि आपके नाना जी फर्स्ट सीनियर रैंगलर ऑफ इंडिया,
0: करेक्ट
1: ये भी जो इन दोनों की जो छत्र छाया
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: दो महान हस्तियां,
0: जी
1: जाहिर है कि एक बहुत उर्वर जमीन आपको
0: इसमें
1: बचपन
0: कोई
1: में मिली।
0: शक नहीं। और बिल्कुल मैं कहती हूँ जहे नसीब के ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। और अफसोस कि मेरे नाना का गणित का जरा भी हिस्सा मेरी तरफ नहीं आया, जरा भी नहीं। मतलब शुरू में बहुत चाहते थे, सोचते थे कि अपनी पोती भी नाम कमाएगी गणित विषय में, लेकिन मेरा तो क्या कहें, कोई रिश्ता रहा ही नहीं गणित के साथ। लेकिन नाना ने, हम दोनों सुबह सुबह घूमने निकलते थे, नाना को बहुत शौक था। वो 100 साल तकरीबन होके फिर चल बसे, उनकी तबीयत भी बहुत माशाल्लाह अच्छी थी। तो सुबह हम निकलते, मैं उनके साथ, और वो रोज मुझे एक कहानी सुनाते थे। कोई वो कहानियां सुनाने का जमाना था मेरे बचपन में, मैंने तो बहुत कहानियां सुनी। तो वो ग्रिम्स या एंडरसन, ये जो तब के मशहूर लेखक थे बच्चों का, बाल वाङ्मय लिखने वाले, तो उनमें से वो जाने से पहले वो पढ़ते थे कहानी कि आज शाही को क्या सुनाया जाए। उसका तो यकीनन वो एक थोड़ा सा होमवर्क करते थे और फिर मुझे कहानी सुनाते थे। और ऐसे करके उन्होंने मुझ पे वो एक क्या कहें, प्यार जतलाया, जिंदा किया मेरे अंदर। मैं बहुत अच्छा नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं
1: जी
0: क्या कहना
1: बिल्कुल।
0: चाहती। तो ये उनकी बदौलत मैं इस क्षेत्र की तरफ मुड़ी। और माँ ने, माँ तो लेखिका भी थी और माँ खुद गणितज्ञ थी। उसने भी कैम्ब्रिज में, जब लड़कियां मैट्रिक होने से पहले ही अपने ससुराल पहुंच जाती थी, उस जमाने में माँ ने ना तो मैट्रिक सिर्फ किया, लेकिन वो कैम्ब्रिज जाकर गणित की एक बहुत अच्छी उन्होंने डिग्री हासिल की। और फिर सोचा, वो थी तो अपना ही करने वाली थी, वो बड़ी धड़ल्ली औरत थी। तो उन्होंने सोचा कि अभी इतनी दूर आए हैं लंदन, अब वापस ऐसे जाना तो थोड़ा यूरोप तो देखा जाए करके
1: बिल्कुल।
0: वो स्विट्जरलैंड पहुंची। फिर उन्होंने वहां फ्रेंच सीखा बहुत अच्छी तरह। फिर एक बहुत बहुत हैंडसम रशियन पेंटर चित्रकार से मुलाकात हुई और प्यार मोहब्बत हुआ, दोनों ने शादी की। 2 साल ये शादी टिकी और फिर अपने बच्ची को, यानी कि मुझे लेकर माँ अपने देश वापस लौटी।
1: और
0: और
1: पुणे आ गई।
0: हाँ, पुणे आ गई और नाना के पास, मतलब अपने पिता के पास, मेरे नाना अप्पा हम कहते थे। और तब से मैं उनकी छत्र छाया में पली बड़ी,
1: बिल्कुल, रघुनाथ
0: पुरुषोत्तम परांजपे।
1: परांजपे जी, एक बहुत बड़ी हस्ती, एक राजदूत, एक शिक्षाविद,
0: या
1: फर्ग्यूसन
0: या
1: कॉलेज के
0: जी
1: प्रिंसिपल, फिर
0: जी
1: पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस
0: जी
1: चांसलर,
0: जी लखनऊ
1: तो
0: यूनिवर्सिटी के भी, और
1: जी
0: इसलिए लखनऊ में मेरी पैदाइश लखनऊ की है।
1: क्या बात है।
0: हाँ हाँ
1: तो वो जो आपके बोलने की नज़ाकत है वो लखनऊ से आती है।
0: ओ दिया चलो, ये मैं बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ, बहुत ही
1: जी,
0: बड़ा।
1: नाना जी के बारे में और माता जी के बारे में और भी बातें बताइए। वो तो अभिनेत्री भी थी।
0: अभिनेत्री मत कहो, क्योंकि उन्होंने शौक के तौर पे एक बार वी शांताराम की फिल्म में एक रोल किया, दुनिया न माने, या मराठी में कुंकू।
1: जी
0: हाँ, उसमें अच्छा रोल था चित्रा का, जो कि शांता आप्टे हीरोइन थी फिल्म की, उनकी वो सौतेली माँ। लेकिन हम उम्र, मतलब हीरोइन के उम्र की ही थी, उसके बाप से उसकी शादी होती है, लेकिन कोई खास रोल बना नहीं, अच्छा नहीं किया। मैंने कहा भी माँ को कि ये क्या, तू कहती इसीलिए तो एक ही की फिल्म मैंने दोबारा उस तरफ नहीं गई। लेकिन यूनुस, एक बताना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने एक नाटक भी किया, लिखा भी, लेखिका तो थी, नाटक लिखा, पांघर लेली कातड़ी, मतलब पहना हुआ खाल। हाँ, तो उसमें एक किरदार है कोइंड, हाँ,
1: मछुआरी।
0: मछुआरी का, हाँ, तुलसा नाम की, हाँ, बहुत ही अजीबो गरीब वो रोल था। वो सोचा कि वो रोल तो मैं खुद करूंगी, माँ ने सोचा। लेकिन अब मछुआरी का रोल करना डिकंजम खाना पूना में बैठ के, वो तो आसान नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, हफ्ते में एक बार वो बम्बई जाने लगी है इस रिहर्सल के लिए। रोज रोज, मतलब हफ्ते में एक बार सीधा डेक्कन क्वीन पकड़ के बम्बई पहुंचना, बम्बई से सीधा माहिम कोळीवाडा है, मतलब मछुआरे का जो माहिम का बहुत बड़ा बस्ता है वो। और साथ में मैं तब 4-5 साल की होंगी, और दिन भर फिर वहां पहुंच के माँ फटाफट जाके वो कोळी टाइप का

0: जी, तो हमने स्टैंसलर्स की पढ़ा, और स्टैंसलर्स की का कहना है, आप तो जानते होंगे कि रोल तुम खुद जियो,
1: जी
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: तो वो तो पाठ मैंने छठी उम्र में माँ से सीखा था,
1: सही
0: हाँ, कि
1: सही
0: रोल कैसे जीते हैं, वो मछुआरा बन के माँ ने मुझे दिखा दिया। तो ये सब ऐसी बातें थी, और वाकई में बहुत ही हटके, बहुत ही अलग ढंग के मेरी परवरिश रही, बहुत अजीबो गरीब ढंग से कह सकते हैं, और मेरी पिटाई भी बहुत होती थी।
1: हाँ,
0: क्यों,
1: ये
0: हाँ
1: कमाल की बात है कि आप
0: हाँ
1: बड़ी
0: नहीं
1: शरारती थी,
0: नहीं
1: रंगदार
0: शरारती
1: थी।
0: नहीं थी इतनी, मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत हद से ज्यादा तो नहीं थी
1: बस
0: शरारती, लेकिन
1: जरूरत
0: मेरी
1: भर थी।
0: माँ हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, और कोई वजह हो, कभी ना भी हो, ज्यादातर ना भी होती थी, फिर भी मेरी दिन में पिटाई एक बार तो होनी ही थी। और हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, जब कोई बच्चा शरारत करे, कोई बच्चा सुने नहीं माँ बाप की, और कुछ उल्टा सीधा काम करे, तो उसको उसके माँ बाप कहते थे, तुम सही की तरह पिटाई करने का, हाँ।
1: अरे
0: और
1: बाप रे,
0: मुझे इतना अपमान लगता था, आई वुड फील सो ह्यूमिलिएटेड। तो ये बहुत था, इस बात पे मुझे अभी भी कभी याद आती है तो गुस्सा आता है माँ पर, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दूसरी तरफ इतना बेतहाशा प्यार और लाड, कि जब मैं छोटी थी ना, तब लड़कियों की एक रीत थी कि अपनी गुड़िया की शादी करवाना,
1: वाह वाह,
0: हाँ,
1: बड़ा प्यारा
0: तो
1: था ये।
0: हाँ, बहुत स्वीट। तो हर लड़की की एक ना एक तो गुड़िया होती थी, और प्यारी गुड़िया, तो फिर गुड़िया की शादी होती थी, और बाकी सब लड़कियां फिर शादी में बुलाई जाती हो जाती थी। मेरी भी गुड़िया थी, लेकिन माँ कहती थी, नहीं ये सब बकवास है, गुड़िया की शादी वादी कुछ नहीं। तो मैं कहती थी, नहीं लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे भी तो बुलाना चाहिए, मैं भी बुलाना चाहती हूँ तुम्हारे। नहीं नहीं कोई शादी वादी नहीं, चुप करवाती थी मुझे। लेकिन एक दिन फिर मैं बहुत ही, मैंने जिद की और बहुत ही हट गई, मैंने कहा नहीं, मैं शादी तो ये होके ही रहेगी। तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो फिर मुहूर्त देखते हैं, और बाकायदा मुहूर्त देखा। और
1: वाह
0: फिर तुलसी बाग करके पूना में एक बहुत फेमस मार्केट है, तो वहां से हमने एक जोड़ा खरीदा, गुड्डा गुड्डी कपड़े के थे, हाँ, दोनों, और गुड़िया के बाल थे अच्छे से काले काले, और छोटा सा जूड़ा था, और साड़ी पहनी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, हरी रंग की साड़ी थी। तो उनकी शादी हमारे घर हुई, बाकायदा हम एक महीना भर पहले उसकी तैयारी में थे, मतलब तुलसी बाग से ये छोटे छोटे मणि, उसको क्या बोलते हैं, पर्ल्स लाते थे, उनकी मालाएं बनाना, उनके कान के गहने बनाना, ये बनाना, वो बनाना, क्या क्या क्या क्या चलता था। और फिर शादी के दिन एक तकरीबन 100 बच्चों को बुलाया गया मेहमान के तौर पे, और 100-150 बच्चे बिन बुलाए भी आ गए इधर उधर से।
1: गजब।
0: और माँ ने एक सफेद घोड़ी बुक की,
1: अरे वाह।
0: सफेद घोड़ी, एक्चुअल घोड़ी, फिर एक बैंड बुलाया, स्काउट बैंड, साफे वाले, हाँ, गुलाबी साफे वाले, सब यंग 16-17 साल के जवान लड़के थे, अपने अपने वाद्य लेके आए, उनका बैंड और ये घोड़ी, और घोड़ी पर फिर मेरी गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, और फिर हमारी बारात। हम घर से अपने निकले, हम परांजपे रोड पे थे, मेरे नाना से सड़क का नाम दिया था, तो वो उससे फिर अपटे रोड से होते हुए, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड से होते हुए, फिर वापस ऐसे पूरा हम डेक्कन जिमखाना तकरीबन घूम के पूरी हमारी बारात आई।
1: वाह
0: और
1: वाह,
0: कितने महीनों तक ये चर्चा रही जारी पूना में, कि सही के गुड़िया की शादी,
1: गजब गजब। ये तो
0: हाँ
1: इतनी भव्यता के साथ
0: हाँ
1: शादी की गई,
0: जी। और
1: मुझे
0: मेरी
1: ना।
0: अपनी शादी में मां नहीं आई
1: हाँ, ये भी एक विडंबना
0: हाँ,
1: की बात है।
0: लेकिन
1: ये
0: हाँ
1: वाला जिक्र आगे की तरफ
0: ओके
1: करेंगे, ये सूत्र पकड़ेंगे आगे। लेकिन गुड्डे गुड़िया की शादी की बात चल रही है, और गुड़िया जैसा नाजुक जज्बात यहां पर आया है, तो मुझे लगता है कि यहां एक गाना सुन लेते हैं।
0: अरे क्यों
1: एक
0: नहीं,
1: फिल्म में जो बात आती है, गुड़िया कब तक रूठी रहोगी,
0: हाँ
1: मुझे
0: हाँ
1: लगता है उसी जज्बात को वो
0: वाह
1: आगे
0: वाह
1: बढ़ा रहा
0: क्या
1: है।
0: बात,
1: तो वो गाना
0: सुनाइए
1: सुनते हुए
0: सुनाइए
1: आगे बढ़ाते
0: जी।
1: हैं बात।

0: बचपन में आप बहुत पढ़ती थी और चार्ल्स
1: जी
0: डिकेंस और सब
1: जी
0: बड़े
1: या
0: साहित्यकारों को
1: या
0: पढ़ रखा
1: या
0: था।
1: थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टन,
0: हाँ
1: स्कॉट, और
0: बिल्कुल।
1: ये सब हुई बड़ों की किताबें, ये भी मैंने पढ़ी। नाना के साथ पढ़ती थी, और मतलब मैं जोर से पढ़ती थी।
0: वुदरिंग हाइट्स वगैरह।
1: वुदरिंग हाइट्स, यस एब्सोल्युटली, और ये क्या ब्रॉन्टे सिस्टर्स, हाँ, तो ये सब पढ़ती थी। और इसके अलावा बच्चों की किताबें भी बहुत पढ़ी मैंने, जैसे मराठी में तो खजाना है,
0: जी
1: हाँ, भारा भागवत, और दुनिया भर के साने गुरुजी, और इतनी सारी किताबें, हाँ, और लक्ष्मीबाई टिळक की भी, जो कि बच्चों की नहीं है वो किताब, लेकिन वो भी बहुत, उनका आत्मचरित्र बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया था, वो पढ़ा। तो ये मैं बहुत पढ़ती थी, और साथ साथ लिखती भी थी अपनी तरफ से, जो कुछ बचकाना कहो। और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, मेरे नाना भारत के पहले हाई कमिश्नर हुए ऑस्ट्रेलिया में, तो 4 साल हम ऑस्ट्रेलिया रहे, तो वहां फिर खजाना ही खजाना था बच्चों की किताबों का। वहां जाके फटाफट मैंने अंग्रेजी सीख ली, और फिर ढेर सारी किताबें, अब मतलब कितना मैंने पढ़ा उसकी कोई गिनती नहीं। और पढ़ने के अलावा वहां बच्चों के लिए कार्यक्रम भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे होते हैं, फिल्म होती है, रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं, और जादू के प्रोग्राम्स होते हैं, और क्या क्या क्या नहीं होता। तो वो सब मैं, इतना मुझे लगता है मैं बहुत समृद्ध हुई।
0: बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज के जमाने के बचपन से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बचपन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें पिटाई भी है, इसमें किताबें हैं, इसमें जज्बात है, इसमें नाटकों की, एक तरह से नाटकों के संस्कार पढ़ रहे
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो ये तमाम चीजें हैं।
1: हाँ
0: लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं और वो है अच्युत रानाडे साहब।
1: आहा, बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या बात। वो अच्युत मामा, उनको मैं अच्युत मामा कहती थी,
0: जी
1: बहुत ही उम्दा हस्ती थे, हाँ, और वो खुद फिल्म डायरेक्टर थे, लिखते भी बहुत बढ़िया थे, हालांकि मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन से भी लेखक ज्यादा अच्छे थे। और उनकी फिल्म गुड़िया, जो इप्सन का डॉल्स हाउस, आपने सुना होगा नाटक, तो डॉल्स हाउस पे बनी फिल्म उनकी गुड़िया नाम की, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी को पहली बार स्क्रीन पे लाया। तो अच्युत मामा और बलराज साहनी बहुत दोस्त थे, तो बलराज ने उनके फिल्म में काम किया, और अच्युत मामा ने बहुत मराठी और हिंदी फिल्में, हिंदी फिल्म उनकी याद है मुझे, फूल और कांटे एक फिल्म थी, फिर एक

0: दान नाम की फिल्म थी, और फिर मराठी में जागा भाड़े नहीं देने आए वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत ही फिल्में उनकी थी। तो वो और मैं, हम पूना में घूमते बहुत थे,
1: जी
0: पूना वालों को घूमना बहुत पसंद है, एक उनके हिस्सा ही है
1: जीवन
0: तो
1: शैली का।
0: जीवन शैली का बिल्कुल। तो ये हम जाते थे फर्ग्यूसन टेकड़ी, टेकड़ी मतलब टीला, फर्ग्यूसन टेकड़ी नाम का टीला था, उस पे चढ़ते थे, वहां एक मंदिर था, वो मंदिर तक पहुंचते थे। और जाते जाते अच्युत मामा कहानियां सुनाते, लेकिन कहानियां ऐसी वैसी नहीं, फिल्मों की कहानियां।
1: हाँ, ये बड़ा मजेदार
0: हाँ,
1: है।
0: और वो फिल्में कौन सी, तो उन्होंने जो देखे, उन्होंने बहुत सारा देखा हुआ था, उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या द गुड अर्थ या वदरिंग हाइट्स वगैरह वगैरह, गैस लाइट, ऐसी इतनी फिल्मों की कहानियां मुझे सुनाई, और मराठी कहानियों की फिल्मों की भी, जैसे शेजारी, बानूस, राम शास्त्री, ये मराठी फिल्मों की भी कहानियां उसमें आती थी। और वो फिल्म कहानी इस तरह सुनाते थे यूनुस कि हम जा रहे हैं और ऊपर से देखते हैं तो एक छोटा सा गांव नीचे दिखता है, फिर एकदम एक हम सड़क पे जाते हैं, एक बैलगाड़ी जा रही है, हम बैलगाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं, और बैल के सींगों के बीच में से हमको एक दूर झोपड़ा दिखता है। मतलब ये पूरा सिनेमैटिकली बताते थे
1: वाह
0: कहानी, और
1: वाह,
0: वो जैसे कहानी सुलझती थी तो वो चित्र आंखों के सामने उभर जाता। और ये करके मैंने, मुझे तब मालूम नहीं था कि मैं सीख रही हूँ फिल्म टेक्निक, सीख रही हूँ अनजाने में, लेकिन ये क्या था, फिल्म टेक्निक ही तो था।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल।
0: तो ये उन्होंने सिखाया। और एक मजे की बात आपको बता दूँ, बड़ा मुझे यहाँ मोह हो रहा है, रहा नहीं जाता, कि उन्होंने मुझे राम जोशी की कहानी सुनाई।
1: जी
0: राम
1: जी
0: जोशी हमारे एक बहुत बड़े शाहिर थे,
1: शायर हुए।
0: गाने
1: जी
0: वाले। हाँ,
1: जी
0: तो उनको पीने की आदत थी, और पीने से जैसे अनेक कलाकारों को तब के और अब के ये हमने देखा है पतन, तो वो भी शराब के बिल्कुल उसमें आ गए थे। तो एक दिन वो कहते हैं कि आज उनकी बुरी तरह, वो दूसरी जो हंसा वाडकर की भूमिका थी, वो उनको नीचा दिखाती है, एक कंपटीशन सा होता है। तो वो कहते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस आज से शराब छोड़ दी है। और ये कहते तो है बड़े जोरों से, लेकिन कहते हैं फिर शाम को वो बड़े त्रस्त, बड़े परेशान, शराब नहीं पीनी तो बहुत परेशान। और अच्युत मामा ने कहा, फिर हम देख रहे हैं कि वो तलम धोती पहने हुए, सफेद ऐसी, और सिर्फ हम उनके पैर देख रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और कैमरा उसके साथ साथ हम जा रहे हैं, और कैमरा के साथ हम, और उनके धोती के सुरई की नोक अटकती है। हाँ, सुराई की नोक ही कहते हैं ना, तो
1: जी
0: सुराई की नोक अटकती है, और वो सुराई साथ साथ उनके वो जा
1: खींची
0: रही
1: चली
0: है,
1: आती
0: और
1: है।
0: ये हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा, अच्युत मामा इसका मतलब कि उनकी शराब छूटी नहीं है ना? तो
1: हाँ
0: उसने कहा, बहुत शाबाश, वेरी गुड, तुम बिल्कुल समझ गई हो, और ये करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो नहीं छूटती उनकी शराब वगैरह वगैरह। तो आगे जाकर मैंने ये फिल्म देखी और ये दृश्य देखा, और सच बात कहूं, थोड़ा घमंडीपन लगेगा,
1: जी
0: लेकिन सच बात कहूं तो मुझे लगा जो मैंने सोचा था वो ज्यादा बेहतर था।
1: वाह,
0: ये दरअसल पर्दे पे जो आया है इतना मजा नहीं आया, और मुझे लगता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगी, ये उस लम्हे तय हुआ,
1: वाह,
0: ऐसा मुझे लगता है, पता
1: गजब गजब
0: नहीं।
1: गजब। तो ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है कि अच्युत मामा हैं, वो एक तरह से सिनेमा के संस्कार देते
0: जी
1: हैं, वो
0: देखो, वो
1: फिल्म
0: साथ साथ होता रहा
1: कह
0: है
1: के
0: ना।
1: सुनाते हैं,
0: हाँ
1: दूसरी तरफ नाटक चल रहा है,
0: हाँ
1: माँ जो है वो नाटक की प्रोसेस का हिस्सा
0: जी
1: बनाती
0: जी
1: है।
0: जी
1: लेकिन दो बातें जो हैं वो
0: हाँ
1: मुझे बड़ी जरूरी लग रही हैं
0: हाँ
1: पूछनी। एक तो ये कि मैथमेटिशियंस की फैमिली
0: हाँ
1: ये कहा जा सकता है क्योंकि माँ
0: जी
1: भी
0: हाँ
1: मैथमेटिक्स पढ़ी थी,
0: हाँ
1: वहां से निकलकर आने वाली एक लड़की मैथ्स नहीं चुनती है, क्यों? और फिर ये रास्ता रेडियो की तरफ कैसे चलता है, या रेडियो का रास्ता सही की तरफ कैसे आता है?
0: वो इत्तेफाक की बात है।
1: जी
0: हाँ, अब मैथ्स में नहीं चुनी क्योंकि वो तो जाहिर है नहीं आता नहीं था, और कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं की कि तुम्हारे नाना मैथमेटिशियन है तो तुमको ही करना, नहीं, वो जान गए कि इसके बस का नहीं है, इसको नहीं आता, तो मान गए बेचारे, क्या करते। लेकिन मेरी तब बीए की परीक्षा, बीए का इम्तिहान बहुत नजदीक आया था। हाँ, और आखिरी महीने जैसा होता है, मैं पढ़ाई मैंने शुरू की, साल भर मस्ती की, ये वो किया, और फिर जग गई आखिरी महीने में, तो फिर पढ़ाई शुरू। और इतने में एक दिन घर पे एक चपरासी आया, सरकारी बिल्कुल यूनिफॉर्म में, और एक ब्राउन रंग का लिफाफा लेके आया। सही परांठ पे कौन? मैंने कहा, जी मैं हूँ, ये आपको आया है, पुणे रेडियो से आया था वो, आकाशवाणी पुणे से। और पढ़ा तो क्या था, ऑडिशंस थे दूसरे दिन, मराठी अनाउंसर के ऑडिशंस, और मुझे बुलाया था। अब क्यों कैसे ये आज तक मैं नहीं समझी। ये एक कमाल का इत्तेफाक मेरे जिंदगी का है कि ये किसने मुझे क्यों भेजा। ना मेरा कोई नाम था तब, कुछ नहीं और मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि मुझे कोई भेजे पूछे। तो माँ ने कहा कि कब है, कितने बजे है ये ऑडिशन। मैंने कहा ऐसे कुछ 5 बजे। कहते मतलब शाम को है, तो शाम को थोड़ी ना तुम पढ़ाई करती हो, वैसे भी पढ़ाई कब करती हो क्या पता लेकिन शाम को तो नहीं ही करती हूँ, तो हो आओ देख तो लो क्या है, जाओ। तो फिर मैं साइकिल, तब साइकिल चलाती थी, अपनी साइकिल चला के डेकंजम खाना से, तब वो ससून के पास होता था, सेंट्रल बिल्डिंग्स में हमारा रेडियो स्टेशन था, वहां पहुंची और ड्यूटी ऑफिसर मिले। उन्होंने कहा अच्छा आप ऑडिशन के लिए आइए आइए, एक कागज पकड़ाया मुझे, कहते ये आप पहले मन में पढ़ो 2-3 बार और फिर ये आपको पढ़ना है वहां। तो उसमें एक मुझे वाक्य अच्छी तरह याद है कि मराठी अनाउंसमेंट, ढगांच्या गड़गड़ाटा सह विजांचा कड़कड़ाट होईल।
1: हाँ,
0: अब मुझे माँ का एक और ये बताया नहीं मैंने कि कितना और क्या क्या बताऊं, लेकिन संस्कृत पढ़ना और स्तोत्र और श्लोक, वैसे हमारा खानदान था नास्तिक, मेरे नाना नास्तिक थे, भगवान पूजा वूजा नहीं मानते थे, हालांकि उनके पिताजी गांव के पुजारी थे
1: जी।
0: लेकिन लंदन जाके उन्होंने जॉन मिल्स पढ़ा वगैरह वगैरह, उनमें परिवर्तन आया, ही बिकेम रैशनलिस्ट। और माँ भी मेरी रैशनलिस्ट थी, तो घर में देव पूजा वगैरह वगैरह नहीं होता था, लेकिन स्तोत्र सीखना और पढ़ना लाजमी था क्योंकि शुद्ध भाषा, और वो इतना खजाना है संस्कृत में। तो माँ ने कहा ये तो बहुत जरूरी है, और श्लोक आज भी मुझे 100-1 संस्कृत श्लोक जरूर आते होंगे, और स्तोत्र भी अभी गणपति स्तोत्र, सूर्य स्तोत्र, राम रक्षा, ये सब मैं अभी भी, रावण स्तोत्र, जटा कटाह संभ्रम ब्रह्म,
1: पूरा याद है, शिव तांडव स्तोत्र
0: पूरा तो नहीं लेकिन याद है। तो ये जो मुझे आता था वो मैं ये ढगान से गड़गड़ाट और बिजान से कड़कड़ाट से क्या डरूं, है ना। तो वो मैंने घड़ाघड़ बोल दिया, सब चौंक गए कि अरे ये लड़की बहुत तेज निकली। और फिर जैसे मैं वो रेड लाइट ग्रीन लाइट उसका ड्रामा हो गया और फिर खत्म हो गया, लाइट बंद हो गया, तो मैंने दरवाजा, वो तो आपको क्या बताना कि दरवाजे कितने वे भारी होते हैं, वो ही करके मैंने खोला दरवाजा, दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर खड़ा, कहता है कल से आ जाइए। मैंने कहा जी नहीं माफ कीजिए, मैं कल से तो नहीं आ सकती, मेरा इम्तिहान है, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे इम्तिहान देना है, मैं नहीं कल से आ सकती। ओहो तो आप ऑडिशन के, तो मैंने कहा ऐसे आई देखने क्या होता है वगैरह, ओहो मायूस हुए सब लोग, तो नहीं, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर मैं चल पड़ी और जैसे मैं सेंट्रल बिल्डिंग्स के मेन गेट तक, फाटक तक पहुंची, एक चपरासी फिर मेरे पीछे दौड़ते आया, आपको बुलाया है। मैंने कहा नहीं अब क्या है, कहते नहीं नहीं बुलाया, आइए आइए। फिर गई, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये पढ़ेंगी आप अनाउंसमेंट्स, वो सिर्फ 5 मिनट की होती है और शाम को होती है। मैंने कहा कोशिश करते हैं, लाइए। तो फिर और एक पन्ना पढ़ा, वो भी मैंने पढ़ा, तो और भी आसान था, अंग्रेजी सिंपल था। फिर दरवाजा खोला, फिर दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर, कल से आ जाइए। और फिर कल से मैं जाने लगी
1: जी।
0: और तब वो मुझे तनख्वाह, अभी इससे पहले जब हम लोग बातें कर रहे थे तब बताया जैसे, तो मेरी तनख्वाह उन दिनों महीने की 50 रुपए।
1: वाह वाह।
0: और
1: वा,
0: मैं बड़ी खुश कि वाह वाह, ये तो आकाशवाणी को अपन ने कैसा ठगाया, इतना इतनी मजे की बात, इतना मजे का चांस, इतना अब सब जगह नाम हुआ कि अनाउंसर सही अनाउंसमेंट करती है, और ऊपर से ये पॉकेट मनी 50 रुपए। बहुत खुश हुई, और सचमुच मुझे लगता था कि आकाशवाणी को हमने बेवकूफ बनाया और ये नहीं कि मैं बेवकूफ बनी थी।
1: कुछ अनाउंसमेंट्स याद हैं शुरुआती तौर पर जो किए होंगे आपने?
0: नहीं नहीं, ऐसा कहते दिस इज ऑल इंडिया रेडियो पुणा एंड हियर आर द डेज अनाउंसमेंट्स गिविंग यू द वेदर फोरकास्ट एंड वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ।
1: अच्छा,
0: दिन का जो भी छोटा मोटा, तो 5 मिनट की अनाउंसमेंट थी, 5 या 10 मिनट की ऐसी, दैट्स इट। और हाँ, और फिर एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद उन्होंने कहा अब तो मराठी अनाउंसमेंट दे सकती हो। मैंने कहा हाँ अब तो दे सकती हो। तो तनख्वाह मेरी 50 से 150 बढ़ गई,
1: 3 गुना बढ़ गई,
0: 3 गुना। फिर भी 150 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। एनीवे, तो उसी में भी मैं खुश थी, तो वो मराठी अनाउंसमेंट करने लगी, लेकिन उसमें कुछ मजा नहीं आया कि किसी का लिखा हुआ पढ़ते जाओ, तो 1-2 दिन अच्छा लगा, लेकिन बाद में लगा कि इसमें कोई दम नहीं है। तो फिर बालोद्यान में करने लगी बच्चों का कार्यक्रम, उसमें कॉम्पेयर बनी दीदी नाम से। तो वो तो बात बनी फिर, दैट वॉज ग्रेट फन, आई एंजॉय दैट।
1: तब आप बड़ी लोकप्रिय हो गई और इतनी

0: प्रिय हो गई कि एक बार ट्रंक कॉल बुक किया।
1: नहीं ट्रंक कॉल नहीं, वह
0: हाँ
1: बताती हूँ किस्सा। ताई ताई कहते थे मराठी, ताई मतलब दीदी।
0: जी
1: तो तीन जने हम कंपेयरिंग करते थे, एक नाना जो बुजुर्ग थे जो प्रोड्यूसर थे गोपीनाथ तळवलकर, और मैं उनकी असिस्टेंट, मैं दीदी, और एक नेमिनाथ उपाध्याय करके एक देहाती कैरेक्टर था। तो हम तीनों की मिलजुल के बातें होती थी, हंसी मजाक एक दूसरे की खिंचाई, बच्चों के साथ बातें वगैरह वगैरह कार्यक्रम, बहुत ही बच्चों को ये पसंद आता था। और नाना ताई हरवा बहुत प्यारे थे हर फैमिली में। तो एक दिन मुझे किसी का नंबर चाहिए था, टेलीफोन नंबर, उन दिनों मोबाइल वोबाइल तो कुछ नहीं था। तो मैंने फोन किया 199 को और मैंने कहा हेलो, मुझे गदी माडगुळकर के घर का फोन दे सकती हैं?
0: वाह वाह वाह
1: तो लम्हे सन्नाटा, फिर मैंने कहा शायद सुना नहीं, मैंने कहा हेलो। तो उसने कहा ताई, ताई बोल रही है, टेलीफोन ऑपरेटर ने उधर से। मैं चौंक के, मैंने कहा वाह वाह वाह, मेरा ऊ हो गया। मैंने कहा हाँ, रेडियो की ताई, बालोद्यान की ताई बोलते ना,
0: वाह
1: मैं
0: वाह
1: सर,
0: वाह
1: हाँ हाँ जी हाँ मैं बोल रही हूँ, अरे ताई। एंड देन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक वो रुके ना, वो
0: करीली
1: बेचारी
0: गति
1: इतना बोल रही थी कि कितना वो प्रोग्राम सुनती है, कितना उसको अच्छा लगता है, कितनी वो ताई से प्यार करती है ना, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं भी कुछ हाँ हूँ करती रही, और फिर बाद में मैंने कहा अच्छा नंबर दे रही है ना आप, तो उसने नंबर भी दिया। फिर मैंने फोन रखा और सीधे मैं ऊपर आसमान में पहुंची खुशी, क्योंकि दैट वॉज द फर्स्ट टाइम
0: जी
1: माई टेस्ट ऑफ रिकग्निशन, जिसको कहते हैं ना कि कोई आपको पहचाने
0: आवाज से
1: आवाज से,
0: वाह
1: और ये पहला अनुभव था। और मैं इतनी दंग रह गई कि क्या। और उसके बाद खुशकिस्मती से ऐसे बहुत मौके आए कि लोगों ने सराहा या कहा फला फिल्म पसंद है, फला नाटक ये पढ़ा वो वगैरह वगैरह, लेकिन वो बात फिर कभी नहीं। जो आनंद वो पहले उसमें था ना कि
0: जी
1: ताई ताई बोलते हैं, यू नो,
0: वाह।
1: वो दोबारा नहीं, कभी नहीं,
0: लेकिन
1: दोबारा
0: जिनका
1: नहीं।
0: नंबर आप ढूंढ रही थी
1: हाँ
0: गदी
1: हाँ
0: माडगुलकर, उन्होंने एक फिल्म लिखी थी
1: हाँ
0: और उस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे।
1: अच्छा कौन
0: दो
1: सा?
0: आंखें 12 हाथ उन्होंने
1: अरे
0: लिखी थी, जो
1: ओके,
0: ओपन जेल कंसेप्ट पर जो
1: कमाल है,
0: फिल्म थी
1: इत्तेफाक की बात
0: वो
1: है।
0: तो गदी माँ ने ही लिखी थी, है
1: सुनिए
0: ना। तो
1: सुनाइए,
0: मुझे लगा कि चूंकि उनका जिक्र आया है तो इस गाने की यहां जगह
1: वेरी
0: बनाते
1: गुड,
0: हैं। ऐ मालिक तेरे बंदे हम।
1: क्या बात।

0: रेडियो से आपका ताल्लुक जुड़ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया, और ये कहना चाहिए कि पहली प्रसिद्धि आपको मिली, प्रशंसा मिली, बालोद्यान में आपने नाटक लिखने शुरू किए और नाटक करने शुरू किए, ये जो है आपकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो नाटक बड़े लोकप्रिय हुए थे, सात आठ नाटक थे शायद,
1: 10-12।
0: बापरे जी।
1: तो ये ऐसा हुआ कि बालोद्यान के लिए प्रोग्राम करने लगी, फिर सोचा कि एक आध नाटक लिखती हूँ। तो एक नाटक मैंने लिखा, पक्षांत से कवि सम्मेलन, मतलब पंछियों का कवि सम्मेलन, मुशायरा। उसमें छोटे में कहानी ऐसी थी कि कौवा है और कौवे को सब लोग बहुत हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं, बेचारा काला है, एक आंख भी उसकी टेढ़ी है, और सब लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये गरुड़ महाराज जो सबसे वहां बुजुर्ग हैं, वो ये मुशायरा अनाउंस करते हैं कि भैया इस फला दिन को मुशायरा होगा और सब पंछी उसमें हिस्सा लेंगे। तो सब लोग खुशी खुशी पहुंच जाते हैं और फिर एक से बढ़कर एक बेवकूफी की कविताएं सुनाते हैं। जैसे मोर क्या कहते हैं, जन मजला मनती बोर एक पहा किती तेरी थोर वगैरह, उसके आगे वो जाता ही नहीं है। फिर कोकिला तो कहती है, वो कहती है मैं गाने वाली हूँ तो मैं कोकिला आ आ कर, वो तानबाजी के अलावा कुछ नहीं, वो ताने ही लेती रहती है पूरा, वो कविता वगैरह कुछ नहीं वगैरह कर करके। पोपट वो तो ये करता है तोतेबाजी, तो वो उसने कुछ कहीं से रटा हुआ वो वही सुनाता है। और उल्लू जो है वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो ऐसा कुछ सुनाता है जिस किसी के पल्ले नहीं पड़ता, उसके खुद भी नहीं समझ में आता कि क्या उसने वगैरह वगैरह। और कौवा बहुत ही बढ़िया कविता है, लिखता है और हर एक के ऊपर लिखता है, मोर के ऊपर, तोते के ऊपर, कोयल के ऊपर वगैरह वगैरह, और खुद के ऊपर भी। हाँ, एनीवे तो फिर वो बाजी जीत जाता है, बाजी मार जाता है। गरुड़ कहता है तुम लोग सब हंसे थे उस पर, लेकिन कैसे तुम, पता चला कि एक से बढ़कर एक बेवकूफ हो जो तुम्हारी कविता सुन के समझ में आया, लेकिन ये कौवे ने देखो कैसे किया वगैरह वगैरह। तो एनीवे ये पक्षांत से कवि सम्मेलन रेडियो से हुआ, और क्योंकि वो टोटली साउंड बेस्ड था,
0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोयल दिखा गई हो, तो उनका काव्य इंपॉर्टेंट था। तो उसके बाद में मुझे एक पोस्ट कार्ड आया, फैन मेल, किसका, पुल देशपांडे।
0: अरे वाह वाह वाह,
1: कि सही तुझी श्रुति का ऐकली, तुम्हारी श्रुति का सुन ली और बहुत मजे की लगी, क्या बात, शाबाश आशीष लीतरा, ऐसे ही लिखते रहो। तो मतलब माँ ने फिर से छापी वो छोटी सी पतली सी पुस्तिका, और उसके बाद फिर मुझे ताव आया कि अरे ये नाटक, ये भी बहुत मजे की बात है ये। और फिर मैंने एक से बढ़कर एक रेडियो के लिए, बालोद्यान के लिए नाटक लिखे, शेपटी चाशा, पत्ते नगरी। पत्ते नगरी पहले था पक्षांत से कवि सम्मेलन के बाद, और उसकी कहानी भी ऐसी मजे की थी कि तब मैं सेंट्रल बिल्डिंग से, मतलब ससून के स्टॉप से डेकन जिमखाना जाती थी बस से, तीन नंबर बस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मुझे लगता है तीन नंबर की बस होती थी, तो बस पकड़ के मैं जाती थी। और ये एक मजे की बात तब से आज तक भी ये चलती है कि जब मैं किसी वाहन में हूं, हाँ, तो मेरा दिमाग भी चलने लगता है।
0: वाह।
1: हाँ, और तब मैं बस में बैठी और पता नहीं ये पत्ते नगरी का एकदम मुझे एक जैसे साक्षात्कार हुआ कि ताश की दुनिया है, उसमें ईंट और पान चार जो है ना, अंग्रेजी नाम बताती हूँ, हार्ट्स एंड डायमंड्स एक तरफ क्योंकि दोनों लाल है, और स्पेड्स और क्लब्स एक तरफ क्योंकि दोनों काले हैं, और उनकी बाबा आदम के जमाने से उनकी लड़ाइयां शुरू है जिनका कोई अंत ही नहीं है क्योंकि तुल्य बल है दोनों तरफ, इधर तेरा उधर तेरा, ये बिल्कुल ये उसका फासला होने वाला नहीं है, ये लड़ाइयां चलती रहेंगी चलती रहेंगी, ऐसा ये कुछ कथानक था। और उसमें एक शांति दूत होता है जो चाहता है कि अरे भाई दोस्ती करो ना, ये क्या है, कब तक झगड़ते रहोगे। वो शांति दूत मतलब जोकर, जो 53rd कार्ड होता है जोकर, यू नो दैट, इन ताश के उसमें। तो वो ऐसे एक एक एक एक मुझे सूझता गया कि अरे जोकर, हाँ हाँ ये शांति दूत बनेगा फला दिन का, ये वो। और मैं बस के टिकट पे छोटे छोटे चीटी जैसे अक्षरों में लिखती गई छोटे छोटे मुद्दे, एंड आई रिमेम्बर दैट आई फॉरगॉट टू गेट ऑफ एट माई स्टॉप, वेंट राइट अप टू स्वारगेट विच वॉज द फाइनल स्टॉप, और वहां देखा अरे ओह मैं कहाँ पहुंच गई। फिर ये किताब भी छपी और आज तक यूनुस ये पत्ते नगरीत के खेल होते हैं इधर उधर भारत में, भारत के बाहर भी। और मुझे चिट्ठियां आती है कि हमको इसका शो करना है पत्ते नगरीत का। और भी लिखे ड्रामे जैसे शेपटी सा शाप, सड़ो की पड़ो, झाली का गम्मत, जादू सा शंख, भटकाचे भविष्य, बहुत से ये लिखे। उनमें से कईयों को नेशनल अवार्ड मिले, बेस्ट बुक ऑफ द ईयर एक दो को, और एक दो को स्टेट अवार्ड मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एनकरेजमेंट। तो मैं लिखती गई, मौस प्रकाशन में छापी ये किताबें और अभी भी ये छप रही है, अभी भी ये किताबें इधर उधर खेली जाती है महाराष्ट्र में। और परमिशन लेने के लिए तो बहुत पूछते हैं लोग, और बिना परमिशन के भी बहुत बहुत खेल होते रहते हैं, कर भी लेते हैं।
0: ताश से मुझे याद आया, चश्मे बद्दूर में भी ताश से जुड़ा एक सीन होता है जहाँ ये फैसला करते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा।
1: ये तो मुझे याद नहीं आ रहा।
0: वो एक लड़की दिखी,
1: हाँ, वो नीचे
0: और
1: दिखती
0: वो
1: है नेहा,
0: पत्ते
1: हाँ,
0: से फैसला करते हैं कि
1: अच्छा,
0: जिसके पास रानी आएगी
1: अच्छा,
0: वो
1: अच्छा,
0: जाएगा।
1: ओ, ये सचमुच मैं भूल गई थी। हाँ हाँ ठीक है, ये तो करते हैं। और वो दो मुस्टंडे बेचारे पहुंच जाते हैं उसके घर,
0: बिल्कुल
1: और उनकी
0: बारी बारी
1: बहुत,
0: से वो फारूक शेख रह जाते हैं। चश्मे बदूर का जिक्र, चूंकि ताश की बात चली तो मैंने ताश से ताश जोड़ दिया, और मुझे लगा यहाँ चश्मे बदूर का गाना लेके आते हैं। हालांकि हम रहेंगे इसी दौर में जिस दौर की
1: कौन
0: कहानी
1: सा
0: चल
1: गाना
0: रही है,
1: सुनाओगे?
0: आपकी पसंद।
1: चश्मे बद्दूर का क्यों नहीं, वो काली घोड़ी द्वार
0: बिल्कुल
1: खड़ी।
0: सुनते,
1: हा?
0: काली घोड़ी द्वार
1: हा,
0: खड़ी,
1: हा।
0: वाह सुनते।

0: बात ये चल रही है कि आपके रेडियो में पदार्पण के बाद जिंदगी बड़ी बदलती है और आप रेडियो के ड्रामा लिखती हैं, लोकप्रियता हासिल करती हैं और वहां से एनएसडी की तरफ रास्ता खुलता है, अखबार में एक विज्ञापन छपता है। ये घटना बताइए, यहां से आगे चला जाए।
1: हाँ, ये बालोद्यान के बाद क्या हुआ, रेडियो वीक होता था, जो आपको मालूम ही है अभी भी रेडियो वीक चलता है। तो रेडियो वीक में ना तो सिर्फ श्राव्य रहता है मामला, लेकिन दृश्य भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो नाटक आज तक सुन रहे थे लोग, अब वो मंच पे भी खेले जाते हैं। तो ये बालोद्यान के नाटक भी, हर बार मैंने नया नाटक लिखा और वो रेडियो वीक के लिए लिखा और वो मंच पे रेडियो के परिसर में ही, आकाशवाणी भवन के परिसर में ही छोटा सा स्टेज बिठाया जाता था। हाँ, और उसमें ये खेल होता था। तो महीना भर उसकी प्रैक्टिस होती, बच्चे हम चुन लेते, 8-10 बच्चे उसमें रोल करते। और फिर क्या होता, एक शो होता था रेडियो वीक का। हाँ, एक शो हुआ, फिर हो गया, बात खत्म। तो बच्चे कहते थे, अब अगला शो कब है? तो मैं, अगला शो तो नहीं बेटे, हो गया हो गया, इतनी मेहनत की, एक तो महीना भर तालीम की, हो गया। हाँ, हो गया बेटे। तो फिर माँ बाप भी आके थोड़ा सा नाराज होके झगड़ते भी थे, इतना उन्होंने। फिर हमने सोचा कि ये बात तो सच है, एक इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही शो करना लाजमी नहीं है। तो फिर हमने एक चिल्ड्रंस थिएटर शुरू किया पुणे में। हाँ, जहाँ हमने और शोज किए और बच्चों को सिखाया और बच्चे आते रहे और ये बालोद्यान से भी जुड़ा, लेकिन उसके अलावा भी इसके शोज काफी होते रहे और वो पॉपुलर भी हुए। और तब ये हमारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, तब मेरी शादी भी हो गई अरुण दुगड़ेकर के साथ, वो भी इसी माहौल में था।
0: वो तो पूरा एक अलग किस्सा है।
1: हाँ, लेकिन वो तब की बात है ना, इसलिए। तो हमने ये चिल्ड्रंस थिएटर चलाया, लेकिन हमने फिर ये देखा, इश्तहार आया था पेपर में
0: जी,
1: कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक संस्था है जो भारत भर के विद्यार्थियों को नाटक सिखाने के इच्छा से आमंत्रण देती है उनको
0: जी, तो वो अखबार में विज्ञापन देखा।
1: हाँ, तो वो देखा मैंने। तो अब तय किया था कि अब यही अपना आगे का भविष्य यही है, नाटक रेडियो लिखना। तो अरुण ने भी कहा मुझे कि तुम अप्लाई तो करो। मैंने कहा हाँ, लेकिन ये चिल्ड्रन थिएटर का क्या, उसे तो देख लेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है, उसे गंवाना नहीं, बाद में पछताओगी, तो तुम ये अप्लाई तो करो और क्या पता शायद तुम्हें चुनेंगे भी नहीं, हो सकता है। तो
0: अच्छा, ऐसे ही कह दिया।
1: तो मैं गई, खैर मुझे चुन लिया। और फिर मुझे याद है वो पहली ऑडिशन में उन्होंने कहा कि हम ज्यादातर लड़कियों को नहीं लेना चाहते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए

0: कि वो लड़कियां आती तो हैं बड़ी चाव से और फिर एक दो महीने में शादी करके चली जाती है। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ। वो कहते कैसे कैसे थे? मैंने कहा क्योंकि मेरी शादी तो हो गई है। फिर अच्छा कब? मैंने कहा पिछले महीने। से एक महीने में शादी आपको आप पति ने जाने दिया? मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ये किया जाने के लिए। कहते एक महीने में वो इतना तंग आ चुके आपसे, वगैरह वगैरह बातें होंगी।
1: जी
0: एनीवे तो आई ज्वाइंड NSD एंड दैट्स हाउ आई ज्वाइंड। फॉर द फर्स्ट ईयर इट वॉज नॉट अ वेरी एक्साइटिंग ईयर क्योंकि कुछ खास हुआ ही नहीं उधर। और मुझे फिर लगता रहा कि अरे खामखा हमने छोड़ दिया चिल्ड्रंस थिएटर और यहाँ पहुंच गई, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगले साल जो एक तूफान आ गया पधारा NSD में, एंड वो था इब्राहिम अलकाजी।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: वो आ गए और फिर सारा माहौल बदल गया, पूरा ढांचा ही बदल गया। और इतना फिर हमने काम किया, इतना सीखा, मतलब साथ जिंदगी में पूरा पड़ेगा इतना हमने सीखा अलकाजी साहब से। इट वॉज फैंटेस्टिक, ही वॉज अ फैंटेस्टिक टीचर। अब बोलते इतना अच्छा थे कि क्या बताऊं मैं। इट वॉज रियली वंडरफुल।
1: बहुत सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि एक तूफान आया जिसका नाम
0: हाँ
1: इब्राहिम
0: हाँ
1: अलकाजी
0: बिल्कुल।
1: था। उन्होंने, मेरा ख्याल है, सबसे पहले शायद आधे अधूरे का मंचन किया था,
0: नहीं, आषाढ़ का एक दिन।
1: आषाढ़ का एक दिन का मंचन किया था। जी, बाद में फिर वो दूसरे नाटक हुए।
0: जी,
1: आपको उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला और कोई दिलचस्प याद?
0: मौका क्या, वो तो था ही, काम करना तो था ही। तो आषाढ़ के एक दिन में मैंने प्रियंगू मंजरी का रोल किया।
1: पत्नी जो होती है।
0: हाँ, कालिदास की पत्नी।
1: जी
0: रानी है वो। और मुझे कोई अभिनय में जरा भी रुचि नहीं थी। एक तो मैं बहुत सीमित अभिनेत्री हूँ, बहुत ही, मैं खुद जानती हूँ अपनी सीमाएं। और वो मुझे मज़ा भी नहीं था। और मैं मोटी भी, अभी भी मोटी हूँ, लेकिन तब मैं कुछ ज़्यादा ही मोटी थी। हाँ, तो अलकाजी साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि सही, तुम्हें अगर तुमने अपना वजन नहीं घटाया तो तुम्हें अच्छे रोल नहीं मिलने वाले, ये तुम बिल्कुल समझ लो। तो मैंने मन में कहा मुझे कहाँ चाहिए अच्छे रोल, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे मुझे नाटक करना है, निर्देशन करना है। आई वॉन्ट टू डायरेक्ट, आई वॉन्ट टू राइट। तो फिर मैंने लेकिन सिर हिलाया, हाँ, करा उनके आगे, अब थोड़ी उनसे बहस करती। तो वो था, उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ, हाँ यस ऑफकोर्स, मैंने एंटिगनी में इज्मिनी का रोल किया।
1: वाओ।
0: हाँ, मतलब एंटिगनी थी सुधा शर्मा, क्या वो बहुत ही लायक एक्ट्रेस थी।
1: यानी जो आगे चल के सुधा शिवपुरी बन
0: जी
1: जाए थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे क्लास में थी, सुधा भी और शिवपुरी भी, दोनों मेरे क्लास
1: ओ
0: में थे।
1: जी।
0: और तब भी दोनों का रोमांस था, खैर वो बात और है। तो लेकिन उनकी शादी हुई, दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार थे, खास करके सुधा तो कमाल की अभिनेत्री थी, शी वॉज रियली फर्स्ट क्लास। और मुझे याद है उसने आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका का जो रोल किया, वो नाटक के शुरू होते ही वो भागती हुई बारिश में भीगी हुई आती है और अंबिका पड़वी को क्या बोलते हैं घर के बाहर जो होता है ना बरामदा सा,
1: जी
0: उसमें वो अनाज बिन रही है और बैठी है अंबिका, तो उसकी गोद में ये अपने आप को ऐसे लुढ़क जाती है उसकी गोद में और कहती है आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ।
1: वाह।
0: और ओह, रोंगटे खड़े हो गए। क्या उसका वो अभी भी मेरे कान में गूंजता है। अब
1: वाह।
0: इतना बढ़िया उसने किया। और कालिदास बने थे शिवपुरी, और शिवपुरी को तब एक बुरी आदत थी, वो ऐसे गर्दन हिलाता था, उसका वाक्य होने पर उसकी गर्दन हिलती थी। फिर वो अलकाजी साहब ने निकाल दिया 3 महीने के अंदर, फिर दोबारा नहीं शिवपुरी की गर्दन हिली। हमें बड़ा अचरज हुआ क्योंकि हमने कहा ये तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है, कि इतना वो धस गया था उनके अंदर वो। एनीवे, तो ये एक साल में बहुत सीखा अलकाजी साहब से। और उन्होंने क्या क्या नाटक किए बनाए, कि अंधा युग उन्होंने ताल कटोरा गार्डन्स के वो फोर्ट में किए, मतलब
1: जी
0: टूटे फूटे वो खंडहरों के बैकड्रॉप पे, मतलब देख के इसे रोंगटे खड़े हो जाते थे। इतना बढ़िया उन्होंने, मतलब पूरा यही बदल दिया दिल्ली का नाटक के बारे में सोच थी, राजधानी की भी पूरी बदल दी अलकाजी साहब ने। और बहुत ही कमाल का कार्य रहा, कमाल की उनकी देन रही थिएटर के प्रति।
1: जी तो मुझे लगता है कि यहां एक गाना सुन लेते हैं, तो इस गाने की यहां जगह
0: वेरी
1: बनाते
0: गुड।
1: हैं।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण सुन रहे थे। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं, समय है कार्यक्रम युववाणी का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए, चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं, इसलिए कुछ अपनी सुनिए और कुछ हमारी सुनते रहिए। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, मैं डिंपल सिखवा स्वागत करती हूँ आप सभी का ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवा दलों की धड़कन युववाणी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर बैंक सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और अमीर लोगों के लिए ही काम करे तो आम किसान, छोटा दुकानदार, छात्र या फिर मध्यम वर्गीय परिवार अपने सपनों को कैसे पूरा करेगा। इसी सोच को बदलने के लिए 19 जुलाई यानी आज ही के दिन 1969 में भारत सरकार ने 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और बाद में 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसी के उपलक्ष्य में आज मनाया जा रहा है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। अब सवाल है ये कि राष्ट्रीयकरण होता क्या है। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि किसी निजी संस्था का स्वामित्व सरकार अपने हाथ में ले ले ताकि उसका लाभ पूरे देश और आम जनता तक पहुंच सके। बैंक राष्ट्रीयकरण का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि बैंक सेवाएं केवल शहरों तक सीमित न रहे बल्कि गांव-गांव तक पहुंचे, किसानों को खेती के लिए ऋण मिले, छोटे व्यापारियों को अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिले, गरीब और मध्यम वर्ग भी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सके। दोस्तों बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद देश में हजारों नई बैंक शाखाएं खुली, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक पहुंचे, लोगों ने बचत करना शुरू किया, महिलाओं के बैंक खाते खुले, शिक्षा, रोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिला। इस फैसले ने भारत के आर्थिक विकास को नई गति दी, लेकिन समय के साथ बैंकिंग व्यवस्था में कई बदलाव भी आए। आज डिजिटल बैंकिंग का दौर है, अब मोबाइल फोन से पैसे भेजना, ऑनलाइन भुगतान करना, UPI का उपयोग करना और घर बैठे बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेना बहुत आसान हो गया है। फिर भी बैंक राष्ट्रीयकरण का महत्व आज भी बना हुआ है क्योंकि इसका मूल उद्देश्य हर नागरिक और बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना है। दोस्तों बैंक केवल पैसे रखने की जगह नहीं है बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। जब लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वही पैसा किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और उद्योगों को ऋण के रूप में मिलता है। इससे रोजगार बढ़ता है, नए व्यवसाय शुरू होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो आज के दिन हमें ये भी संकल्प लेना चाहिए कि हम बैंकिंग सेवाओं का सही उपयोग करें, डिजिटल लेन देन को सुरक्षित तरीके से अपनाएं और समय पर ऋण चुकाएं और बचत की आदत भी विकसित करें। तो दोस्तों आज बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस पर हम यही संदेश है कि बैंक केवल इमारतें नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों को साकार करने का माध्यम है। तो हम सब मिलकर एक आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। तो दोस्तों युवाणी का सफर यूं ही जारी है, लीजिए आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है और हम अब बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की। दोस्तों, आज की ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है कि हर किसी के पास काम के लिए समय है, मोबाइल के लिए समय है, सोशल मीडिया के लिए भी समय है, लेकिन जब बात अपने स्वास्थ्य की आती है तो हम अक्सर कहते हैं अरे यार टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, मन शांत नहीं रहेगा, तो क्या हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? शायद नहीं। इसीलिए आज बात करेंगे कि कैसे केवल 15 से 20 मिनट भी हम अपनी दिनचर्या से निकालकर हम अपने जीवन को अधिक स्वस्थ और जवान और खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, योग केवल शरीर को मोड़ने या कठिन आसन करने का नाम नहीं है। योग का अर्थ होता है शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। वहीं प्राणायाम हमारे श्वास को नियंत्रित करने की एक ऐसी कला है जो तनाव कम करती है, मन को शांत करती है और शरीर में नई ऊर्जा भर देती है। आज के समय में छात्र हो, नौकरी पेशा लोग हो, या फिर गृहिणियाँ हो, या फिर वरिष्ठ नागरिक, हर कोई किसी न किसी प्रकार के तनाव से गुजर रहा है। देर तक मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग, घंटों बैठकर काम करना, अनियमित खानपान और कम नींद, ये सभी हमारी सेहत पर असर डालते हैं। ऐसे में योग और प्राणायाम किसी दवा से कम नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम तो सुबह जल्दी निकल जाते हैं, समय हमारे पास कहाँ है, तो इसका उत्तर बहुत आसान है। सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट सूर्य नमस्कार, 5 मिनट अनुलोम विलोम और 5 मिनट ध्यान कीजिए। बस इतना सा अभ्यास आपके पूरे दिन को सकारात्मक बना सकता है। और जो लोग ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, वे हर घंटे 2 मिनट खड़े होकर शरीर को स्ट्रेच करें, गहरी सांस लें और आंखों को कुछ देर आराम दें। छोटे छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम देते हैं। और साथ ही अगर हम प्राणायाम की बात करें तो अनुलोम विलोम फेफड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है, भ्रामरी मानसिक तनाव कम करने में सहायक है और कपालभाति शरीर को सक्रिय रखने में लाभदायक माना जाता है। हालांकि यदि किसी को गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो तो आपको विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही अभ्यास करना चाहिए। फ्रेंड्स, योग की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? इसमें किसी महंगे उपकरण या बड़े मैदान की जरूरत नहीं होती है। घर का

अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं, या फिर अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो याद रखिए कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और सफल विचार जन्म लेते हैं। तो आप सभी एक छोटा सा संकल्प जरूर लें कि रोज़ आप कम से कम 20 मिनट अपने स्वास्थ्य के नाम ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न होगा, तभी तो हर लक्ष्य आसान होगा। अब लीजिए आपको फिर से ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये बेहतरीन नगमा।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हम सभी के जिंदगी से जुड़ा है। यस फ्रेंड्स, जरा कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ किसी खूबसूरत सफर पर निकले हैं। सड़कें खुली है, मौसम सुहावना है और गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाना, मोबाइल पर बात करना या फिर तेज गति से वाहन चलाना कुछ ही पलों में इस खूबसूरत सफर को एक दर्दनाक हादसे में बदल सकती है। और यही कारण है कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का विषय नहीं है बल्कि जीवन की सुरक्षा का विषय है। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर हर दिन लाखों वाहन चलते हैं। हाईवे पर वाहन सामान्य सड़कों की तुलना में अधिक गति से चलते हैं, इसलिए यहाँ चालक की जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ जाती है। सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई नियमों को सख्ती से लागू किया है और इन नियमों का उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं है बल्कि उनकी और दूसरों की जान की रक्षा करना है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है सीट बेल्ट और हेलमेट का अनिवार्य उपयोग। कार में आगे बैठने वाले ही नहीं बल्कि पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। और वहीं दो पहिया वाहन चलाते समय चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा नियम है निर्धारित गति सीमा का पालन। हाईवे पर गति सीमा सड़क की स्थिति और वाहन के प्रकार के अनुसार तय की जाती है। अधिक गति से वाहन चलाने पर न केवल दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है बल्कि वाहन पर नियंत्रण भी कठिन हो जाता है, इसलिए हमेशा सड़क पर लगे गति सीमा संकेतों का भी पालन जरूर करें। दोस्तों, आजकल मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का उपयोग बेहद खतरनाक हो सकता है। एक पल का ध्यान भटकना भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। यदि कोई आपकी ज़रूरी कॉल करनी हो तो वाहन को सुरक्षित स्थान पर रोककर ही बात करें। और हाँ, एक और गंभीर अपराध है शराब या नशीले पदार्थों के सेवन के बाद वाहन चलाना। ऐसा करना न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालना भी है, इसलिए यदि आपने नशा किया है तो वाहन बिल्कुल नहीं चलाएं। दोस्तों, इसके बारे में चर्चा हम जारी रखेंगे, फिलहाल रुक जाते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
2: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
3: ओह लवली, वेल डन।
2: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
3: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
3: आप कौन?
5: RBI कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
1: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत।

है और हम बात कर रहे थे हाईवे ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा के कड़े सरकारी नियमों की। फ्रेंड्स, हाईवे पर वाहन चलाते समय लेन अनुशासन का पालन करना भी बेहद ज़रूरी है। बिना संकेत दिए अचानक लेन बदलना, ओवरटेक करते समय लापरवाही बरतना या गलत दिशा में वाहन चलाना दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बन सकता है। इसलिए हमेशा इंडिकेटर का उपयोग करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो बीच बीच में थोड़ा विश्राम ज़रूरी है। लगातार कई घंटों तक वाहन चलाने से आपकी थकान बढ़ती है और चालक की एकाग्रता भी कम हो जाती है। इसीलिए थकान की स्थिति में वाहन चलाना भी उतना ही जोखिम भरा हो सकता है जितना तेज़ गति से वाहन चलाना। और हाँ, बरसात, कोहरा या फिर रात के समय हाईवे पर आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हेडलाइट्स का सही उपयोग करें और गति नियंत्रित रखें और आगे चल रहे वाहन से आपको पर्याप्त दूरी बनाए रखें। बात करते हैं सरकारी नियमों की। सड़क सुरक्षा से जुड़े कानूनों के तहत तेज़ रफ्तार, शराब पीकर वाहन चलाना, बिना लाइसेंस ड्राइविंग, रेड लाइट जंप करना, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट वाहन चलाना और मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग जैसी गलतियों पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। दोस्तों, इन नियमों का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि लोगों में जिम्मेदार ड्राइविंग की आदत विकसित करना है। इसलिए सड़क पर केवल आपके नहीं बल्कि आपके साथ चल रहे हर व्यक्ति की सुरक्षा भी आपके व्यवहार पर निर्भर करती है और ट्रैफिक संकेतों का इसलिए आपको सम्मान करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, नियमों का पालन करें और दूसरों को भी सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित करें। याद रखिए कि सड़क पर जल्दबाजी नहीं बल्कि समझदारी ज़रूरी है। सुरक्षित सफ़र ही सबसे सफल सफ़र है। तो इसी के साथ अब आपको फिर से ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये गीत।

तो दोस्तों अब घड़ी की टिक टिक करती हुई सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हम फिर मिलेंगे कुछ नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, योग और ध्यान लगाते रहिए। अब अपने दोस्त डिंपल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

युववाणी, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 5:30 में है कार्यक्रम बालवाड़ी का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम बालवाड़ी।

नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम बालवाड़ी में। आज एक बार फिर से आपके साथ है आपकी रेडियो दीदी और आज के इस कार्यक्रम की सूत्रधार मैं संगीता सिखवाल। मेरे सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ बच्चों के इस खास कार्यक्रम बालवाड़ी में। बच्चों, कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आपके लिए आपकी दीदी कुछ खास लेकर आई है। जी हाँ, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। तो दूध से महंगा दही, दही से महंगा

मक्खन और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ ये हुआ कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता उसका ही मूल्य बढ़ता है। जो व्यक्ति अपना व्यवहार नहीं बदलता, चाहे कितना ही संकट आए, उसी की वैल्यू इस समाज में हम सभी के बीच में बढ़ती है। तो देखा आपने, ये एक बहुत ही सुंदर सी बात थी मेरे प्यारे बच्चों के लिए। बच्चों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की चर्चा से, जो हमने लिया है मंगल पांडे की जयंती। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक मंगल पांडे की जयंती हर साल आज ही के दिन यानी कि 19 जुलाई को मनाई जाती है। इनका जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। इन्हें 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत माना जाता है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आज़ादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देता है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया था। बच्चों, अंग्रेजी हुकूमत में मंगल पांडे द्वारा गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया गया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई। मंगल पांडे ने मारो फिरंगी का प्रसिद्ध नारा दिया था और ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर इतिहास की पहली क्रांति की शुरुआत की थी। दोस्तों, पांडे की जयंती देश भर में उनकी वीरता और साहस को याद करने और देश को ऐसे नौजवान बहादुर वीर पर अभिमान को दर्शाता है। जब बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया तो इस बलिदान की खबर जंगल में आग की तरह पूरे देश में फैल गई। उनके इस साहसिक कदम ने भारतीय सैनिकों के मन से अंग्रेजों का डर हमेशा के लिए निकाल दिया। इसका परिणाम ये रहा कि इस घटना के ठीक एक महीने बाद यानी कि 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने एक विशाल क्रांति का बिगुल फूंक दिया, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। तो हम आज के दिन इस महान नायक को शत शत नमन करते हैं। तो ये थे हमारे कार्यक्रम की शुरुआती चर्चा। अब आपको लिए चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं फिल्म अंदाज से मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर और सुषमा श्रेष्ठ की आवाज़ में ये गीत।

एक बार फिर से मेरे सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का स्वागत अभिनंदन आपके मनपसंद कार्यक्रम बालवाड़ी में। बच्चों, आज के स्पेशल सेगमेंट ज्ञानवर्धन में आपकी दीदी लेकर आई है कंप्यूटर का आविष्कार। जी हाँ बच्चों, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेविल्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1822 में किया था। उन्होंने पहले डिफरेंशियल इंजन बनाया था और बाद में सन 1837 में एनालिटिकल इंजन का डिज़ाइन तैयार किया था। इसलिए आधुनिक कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में चार्ल्स बेविल्स को ही जाना जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर के विकास के इतिहास को अलग अलग चरणों में हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे कि अगर नंबर एक पढ़ लें तो प्रारंभिक गणना यंत्र, जी हाँ एबेकस, इसे दुनिया का पहला गणना यंत्र माना जाता है, जिसका आविष्कार चीन में हुआ था। इसके बाद पास्कलाइन आया, जिसे 1642 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लैच पास्कल ने जोड़ने घटाने वाली मशीन के रूप में तैयार किया था। अगर दूसरे नंबर पे माने तो एनालिटिकल इंजन, जो कि 1837 में आया था, चार्ल्स बेविल्स द्वारा बनाया गया एनालिटिकल इंजन पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। ये मॉडर्न कंप्यूटर्स की तरह ही डेटा स्टोर करने और प्रोसेस करने में सक्षम था। अगर तीसरे नंबर पे बात करें तो पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर, जो कि जिसका नाम था ENIAC, जी हाँ, दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका नाम था। इसे 1946 में अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन डेब्यू मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया था। अगर चौथे नंबर पे बात करें इसके गणना क्रम में, इसके विकास के क्रम में, तो भारत में कंप्यूटर का इतिहास, जी हाँ, भारत में पहला कंप्यूटर 1956 में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 का निर्माण 1991 में सी डेक द्वारा पुणे में किया गया था। तो बच्चों, इस तरह हमने कंप्यूटर का विकास क्रम जाना और वर्तमान में कंप्यूटर का हमारे जीवन में कितना महत्व है हम सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो ये था हमारे

0: चर्चा का विषय आज ज्ञानवर्धन में। अब आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं संगीत की सुरीली दुनिया में और एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनवाते हैं जो हमने चुना है फिल्म मैं ऐसा ही हूँ, जिसे गाया है सोनू निगम, श्रेया घोषाल और बेबी अपर्णा ने।
1: अच्छा गुनगुन, मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बताओ।

Welcome you again in your favorite program, Balwari. Dear kid friends, I just want to tell you one thing more. Life is a one-way road where you can only see back, but you can't go back. So don't miss anything. Enjoy every moment of life because special moments never come again. बच्चों, जीवन के हर क्षण का आनंद लें. अगर हम किसी चीज़ का इंतज़ार करें कि वो समय आएगा या हम तब इन्जॉय करेंगे, तो वो समय कभी नहीं आता. चलिए, आज का जो हमारा स्पेशल सेगमेंट है बाल कहानी, और आज आपकी दीदी एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई है, जिसका अगर टाइटल कहूँ तो ये हो सकता है कर्म और भाग्य का सच. बच्चों, आज हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें कर्म और भाग्य के अटल सत्य को समझाती है. एक बार की बात है, मृत्यु के देवता यमराज एक जंगल से गुजर रहे थे. रास्ते में उन्होंने एक पेड़ पर बैठे छोटे से तोते को देखा, फिर कुछ विचार कर अचानक मुस्कुराने लगे और वहां से निकल गए. तोते ने जैसे ही यमदेव को मुस्कुराते हुए देखा तो पूरी तरह से डर गया. उसे इस मुस्कुराहट से आभास हुआ कि अब उसकी यानी तोते की मृत्यु निश्चित और नजदीक है. घबरा कर तोता दौड़ते हुए अपने परम मित्र भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ यानी बाज के पास मदद के लिए गया और सारी बात बताकर उन्होंने उनसे विनती की कि हे गरुड़देव, मुझे किसी तरह आप बचा लीजिए. यमराज जिस तरह मुझे देखकर हंसे थे ना, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि मेरे प्राण अब जल्द ही जाने वाले हैं. गरुड़देव भी थोड़े घबरा गए. गरुड़ ने अपने प्रिय मित्र तोते को दिलासा दी और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर बहुत ऊंची उड़ान भरकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए वो उड़ चले. गरुड़देव ने बहुत दूर सात समंदर पार एक अंधेरी गुफा में तोते को ले जाकर छोड़ा, जहां यमराज का पहुंचना लगभग नामुमकिन था. दोनों को तसल्ली थी, इधर गरुड़देव को और दूसरी तरफ तोते को. गरुड़देव खुश थे, लेकिन अब यमराज से भी तो बात करनी पड़ेगी. तो फिर वहां से तोते को छोड़कर गरुड़देव सीधा स्वयं यमराज से बात करने गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ मेरे मित्र के साथ, आपने ऐसी हंसी क्यों हंसी, और क्या उसकी मृत्यु नज़दीक है? अगर ऐसा कुछ है तो उसकी मृत्यु आप टाल दीजिए. ऐसी ही कुछ बात करने शायद गरुड़देव यमराज के पास गए. गरुड़देव ने जाते ही यमराज देव से पूछा कि उस तोते जो मेरा मित्र है उसको देखकर आप क्यों मुस्कुराए थे? तो यमराज ने जवाब दिया कि हे गरुड़देव, मैं उस नन्हे से तोते को देखकर इसलिए नहीं हंसा कि मैं उसे मारने वाला था, बल्कि मेरी मुस्कान का कारण ये था कि ठीक कुछ समय पहले मैंने उसको अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि सात समंदर पार अंधेरी गुफा में इस तोते को एक बिल्ली खाएगी और इसकी मृत्यु होगी. परंतु मैं मन ही मन ये सोचने लगा कि इतना सामान्य तोता जो ज़्यादा ऊंची उड़ान भी नहीं भर सकता, इतनी दूर इतने कम समय में वहाँ कैसे पहुँचेगा? और यहाँ पर गरुड़देव को मन ही मन सारी बात समझ में आ गई. तभी तोते की आत्मा को वहाँ लाया गया. हालांकि गरुड़देव बहुत दुखी हुए अपने परम मित्र तोते की मौत पर समझ भी गए कि विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता. तो इस कहानी से बच्चों हमें ये सीख मिलती है कि भाग्य और कर्म का विधान कोई नहीं टाल सकता. विधि का जो विधान तय है वो होकर ही रहता है. कभी कभी हम माध्यम गरुड़ की तरह भी बन जाते हैं

मृत्यु अटल है, इसलिए मौत से भागने की बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी अपनी दीदी को बताइएगा जरूर। चलिए, आज का जो हमारे आज के इस कार्यक्रम का अंतिम सेगमेंट है प्रमुख व्यक्तित्व, जिसमें आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी अनिरुद्ध थापा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध थापा भारतीय फुटबॉल टीम के सबसे प्रतिभाशाली और क्रिएटिव मिडफील्डर्स में से एक है। 15 जनवरी 1998 को देहरादून उत्तराखंड में जन्मे थापा मैदान के बीच में अपनी शानदार पासिंग, विजन और सटीक टैकलिंग के लिए जाने जाते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। दोस्तों, अब हम थापा के क्लब और अंतर्राष्ट्रीय करियर के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर इनके पोजीशन की बात करें तो ये सेंट्रल मिडफील्डर के प्लेयर हैं। साथ ही आपको बता दें कि इनका जर्सी नंबर 6 यानी मोहन बागान सुपर जायंट तथा जर्सी नंबर 15 चेन्नई और एफसी और नेशनल टीम है। थापा का क्लब करियर पे चर्चा करते हैं। जी हाँ, अनिरुद्ध थापा का क्लब करियर बेहद शानदार रहा, जिसमें उनकी सफलता का बड़ा हिस्सा चेन्नई एफसी के साथ बीता है। चलिए, थापा के बारे में और डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खेल और खिलाड़ी के बारे में मेरे बच्चे अक्सर बहुत कुछ जानने के इच्छुक होते हैं। बच्चों, अनिरुद्ध ने 2008 में सेंट स्टीफन्स एकेडमी से फुटबॉल के खेल की बारीकियां सीखी थी। इसके बाद इन्होंने AIFF एलिट एकेडमी में भी ट्रेनिंग ली थी। साल 2016 में ये चेन्नई AFC से जुड़े। एक शुरुआती खिलाड़ी से लेकर टीम के कैप्टन बनने तक का उनका सफर बहुत ही शानदार रहा। इन्होंने 2017-18 में टीम को ISL का अवार्ड दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही आपको ये भी बता दें दोस्तों कि थापा ने 2017 में थोड़े समय के लिए लोन पर मिनरवा पंजाब के लिए भी खेल खेला था। जून 2023 में वर्तमान तक थापा ने पॉपुलर क्लब मोहन बागान के साथ एक लंबी डील भी साइन की है। इंटरनेशनल करियर की अगर बात करें तो थापा ने अंडर 17, अंडर 19 और अंडर 23 लेवल्स पे भारत को रिप्रेजेंट किया है। फिर 2017 में सीनियर नेशनल टीम में डेब्यू किया था। अगर इनकी अवार्ड्स की बात करें तो 2019 में AFC एशियन कप इन्होंने जीता है। लगातार दो बार यानी 2017-18 व 2019-20 में प्रतिष्ठित AIFF इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी अपने नाम किया। तो ये थी चर्चा एक बेहद खास और बहुत ही रोमांचक खिलाड़ी अनिरुद्ध थापा के बारे में। अब आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे और शान की आवाज़ में फिल्म 3 ईडर से ये बेहतर

बालवाड़ी ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिर चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 6 बज रहे हैं, थोड़ी देर में होंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली के अंदर से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्ण देवरायालु, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मुइनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुइनी से भेंट की। जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मुइनी उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा तथा राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गोवा ने आज पोंडा में 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। करीब 188 विद्यार्थियों को BTech, MTech और PhD की उपाधि प्रदान की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक भी प्रदान किए गए। गोवा के तलेगांव से विधायक और पूर्व राजस्व मंत्री जेनिफर मॉन्सेरेट का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थी। जेनिफर मॉन्सेरेट 3 बार गोवा विधानसभा की सदस्य रहीं। उन्होंने 2012 से तलेगांव निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 33 ओवर में 206 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:05 में आए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई। कुमार सानू की आवाज में ये गीत सुन रहे हैं, संगीत अनु मलिक का है। कातिल सफाई की शब्द रचना।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो।

एसपी बालासुब्रमण्यम के गए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब भी यही संपन्न होता है। एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। श्रोताओं, शाम के 6:20 में हैं, आज सुनते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: चंपा मैथ्यू के गाय इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम माटी के स्वर अब यहीं संपन्न होता है। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:28 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
2: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
4: सुगंध, क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
4: चल अपना कार्ड दे।
5: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियात और उनके कारनामों से आपको रोशनास कराना, हल्का इल्म अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोरा इकराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अक्वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबाहसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग और तशहीर, जिसका मकसद है वो है आपका अपना DD उर्दू चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र कल से। सरकार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग मांगा गया। नीति आयोग की ओर से जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में स्थान मिला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और अस्पतालों को जरूरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए। और प्रदेश में मॉनसून के एक बार फिर से गति पकड़ने की संभावना, आज 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। संसद के कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आज सरकार ने संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया कि वे मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायक कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से

0: सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: संसद के मॉनसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा किए जाने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। आज की सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही सुचारू चलाने के लिए सहयोग करेंगे। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त करने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने और विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे निवेश प्रोत्साहन के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। नीति आयोग की ओर से जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में स्थान मिला है। और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
2: राजस्थान निवेश अनुकूलता सूचकांक में समग्र रैंकिंग में देश भर में 10वें तथा बड़े राज्यों में 8वें स्थान पर रहा है। वहीं बड़े राज्यों की श्रेणी में नियमों के सरलीकरण में प्रदेश ने दूसरा स्थान और निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरा तथा संसाधनों के क्षेत्र में 5वां स्थान हासिल किया है। यह राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और कारोबार को आसान बनाने की दिशा में किए गए सुधारों का नतीजा है। इन्हीं सुधारों के तहत सरकार ने निवेश को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज निवेश पोर्टल को लगातार मजबूत किया है। वर्तमान में इस पोर्टल पर 18 विभागों की 190 सेवाएं उपलब्ध है। प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन की औसत स्वीकृति अवधि पिछले वित्तीय वर्ष के 20 दिनों से घटकर 10 दिन हो गई है। इसी प्रकार पर्यटन परियोजनाओं की स्वीकृति अवधि 22 दिनों से घटकर 16 दिन हो गई है। पिछले ढाई वर्षों में 30 से अधिक नई नीतियां लागू की गई है। इनमें MSME, निर्यात प्रोत्साहन, टेक्सटाइल और अपेरल, लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस तथा डिफेंस जैसे सेक्टर्स आधारित नीतियां शामिल है। राज्य की इन्हीं नीतियों के कारण राजस्थान में निवेशकों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। समाचार कक्ष से जितेंद्र प्रधान।
1: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने स्वास्थ्य अधिकारियों को उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार करने और इनकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आवश्यकता होने पर इन्हें रेफरल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव आज जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षकों और स्त्री रोग विभाग अध्यक्ष से पिछले 24 घंटों में हुए सामान्य और सिजेरियन प्रसव और उनकी वर्तमान हालत के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रसव के बाद अगले 24 घंटे धात्री महिला की गहन निगरानी रखने और उसके पोषण का समुचित ध्यान रखने को कहा। मुख्य सचिव ने सभी अस्पतालों को आवश्यक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए। बैठक में चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक महेंद्र कुमार उज्जैनिया के नेतृत्व में केंद्रीय दल ने आज विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर देशल दान सहित केंद्र और राज्य स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों और प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी संचालन, पारदर्शी क्रियान्वयन और अधिकाधिक लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बालोतरा में निर्माण श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए श्रम विभाग की ओर से कल से 3 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें श्रमिकों के निरस्त पंजीयन और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। ये शिविर विभाग के स्थानीय कार्यालय में आयोजित होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट न्यूज

0: newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार के फिर गति पकड़ने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने आज प्रदेश के 15 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार पहले पूर्वी राजस्थान और उसके बाद राज्य के पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। कल से कोटा, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बीच प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 32 मिलीमीटर बारिश दौसा जिले के बसवा में दर्ज की गई। इसके अलावा अलवर, धौलपुर, बूंदी और कोटा के कुछ इलाकों में भी हल्की बरसात हुई। आज दोपहर बाद कोटपुतली बहरोड में कुछ स्थान पर बारिश हुई। इससे आमजन को तेज गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद से बादल छाए हुए हैं। विभाग के अनुसार प्रदेश में इस मानसून सीजन के दौरान अब तक सामान्य से करीब 25% कम वर्षा हुई है। करौली जिला आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर जिले भर में साइकिल रैली, स्वच्छता अभियान, पौधरोपण और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करौली स्थापना दिवस पर जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि ये जिला आस्था, इतिहास और प्राकृतिक वैभव की अनुपम धरोहर है। उन्होंने कहा कि करौली निरंतर विकास, समृद्धि और खुशहाली के नए आयाम स्थापित करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे का शौर्य और सर्वोच्च बलिदान आज भी हर भारतीय को गौरवान्वित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे की देशभक्ति और वीरता की गाथा देश की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए सोशल मीडिया संदेश में कहा कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए उनका समर्पण और राष्ट्र प्रेम हम सभी को हमेशा देश सेवा और राष्ट्रहित के लिए प्रेरित करता रहेगा। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल मियामी स्टेडियम में तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से मात देकर कांस्य पदक जीता। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली ओएमआर शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से। सरकार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग मांगा गया। नीति आयोग की ओर से जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में स्थान मिला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और अस्पतालों को जरूरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए। और प्रदेश में मॉनसून के एक बार फिर से गति पकड़ने की संभावना, आज 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सतीश वर्मा ने तैयार किया है। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। करीब 34 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से वर्चुअल माध्यम से किया। गंगापुर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हुए कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दक, टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा, गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा, रेलवे के अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि और आमजन शामिल हुए। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों की निबंध प्रतियोगिता सेल्फी विथ रेलवे स्टेशन के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। पिछले दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान श्री बिरला ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित अभियोजन भवन का लोकार्पण किया और राजस्थान अभियोजन अधिकारी एसोसिएशन की नवनिर्वाचित प्रदेश कार्यकारिणी को शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर श्री बिरला ने अभियोजन प्रकरण प्रबंधन प्रणाली का भी शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद रहे। जिले में बीते दिनों ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संबंधी नामांतरण, भूमि रूपांतरण और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिला। वहीं नगर परिषद परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर में लोग भूमि रूपांतरण, आवासीय और व्यावसायिक पट्टे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का फायदा लेते नजर आए। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पिछले दिनों विकसित भारत ग्राम योजना के शुभारंभ के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम ग्राम खिजूरी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में चारागाह भूमि पर पीपल पूजन और पौधरोपण किया गया। इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम का आंध्र प्रदेश के तिरुपति से और ब्यावर के मसूदा से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। पिछले दिनों सवाईमाधोपुर करौली जिला दुग्ध उत्पादक संघ और HPCL के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत HPCL के पेट्रोल पंप पर सरस डेयरी के उत्पाद उपलब्ध करवाए जाएंगे। डेयरी के MD सुरेश कुमार सेन ने बताया कि सवाई माधोपुर और करौली जिले में HPCL के 75 पेट्रोल पंप हैं, जहां 25 पेट्रोल पंप पर सरस डेयरी के विभिन्न उत्पाद के आउटलेट, कियोस्क और बूथ लगाए जाएंगे। करौली जिले के पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर पिछले महीने राज्य सरकार से दिशा निर्देशों के बाद परीक्षण कर कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ा गया। जिले के कुसाय और खंडीप तक नहरों में भरपूर पानी आने के बाद क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर देखी गई। हर साल की तरह इस बार भी मॉनसून के चलते रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन का काम 1 जुलाई से आगामी 3 महीने के लिए बंद हो गया है। इसके पहले जून महीने के अंतिम सप्ताह में भारी संख्या में पर्यटकों ने राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण किया। मॉनसून के दौरान रणथंभौर बाघ परियोजना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोकने और वन्य जीव संरक्षण को लेकर वन विभाग की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वन क्षेत्र में वन्य जीवों की निगरानी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। बाघ परियोजना क्षेत्र में इन दिनों फोटो ट्रैप कैमरा पद्धति से बाघ और अन्य वन्य जीवों की गणना का काम किया जा रहा है। वन्य जीवों की गणना और सुरक्षा के मद्देनजर परियोजना क्षेत्र में 300 पॉइंट निर्धारित कर 600 ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं। जिले में मॉनसून की बेरुखी के चलते तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी और उमस का वातावरण बना हुआ है। बरसात नहीं होने से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। दिन में तेज गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं खरीफ की फसलों को लेकर किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। इसी के साथ सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेरों पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: पहली आज री खास खास खबरां। संसद रो मानसून सत्र कालसू सरकार कानियो आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक माए सगड़ा दलाओं सदन ने सुचारू रूप चलाबारी अरज करी गई। नीति आयोग री कानियो जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक माए राजस्थान ने अग्रणी राज्य री श्रेणी माए थौड़ मिली। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलावां री लगातार मॉनिटरिंग करबा और सफाखाना ने जरूरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल री पालना करबा ने कया। और प्रदेश में मानसून एक बार फेरू रफ्तार पकड़ सके है, आज 15 जिला में आंधी और बारिश रो अलर्ट। समाचार रे सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विगतवार। संसद रा कालसू सरुवेरिया मानसून सत्रों पहली आज सरकार संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक री अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करी। बैठक रे पछे मीडियाओं बातचीत रे दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू विपक्षों अरज करी के वे मानसून सत्र री कार्यवाही ने सुचारू रूप चलावा माए इमदाद करे। श्री रिजिजू कया के संसद सगड़ारी है और इन दौरान सरकार न्यारा न्यारा विधेयक करेला और विधेयक पेश करेला। वना आज जताई के विपक्ष और सत्ता पक्ष सदस्य रचनात्मक रूपों इन माए भाग लेवे। श्री रिजिजू कया के संसद जित्ती चोखी तरीकाओं काम करेला देश का तर उत्तो ही चोखो रहवेला।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
0: संसद रा मानसून सत्र माए कई महताऊ विधायी मामला माथे चर्चा करिया जाबा और वाने पारित करिया जाबारू अंदाजो है। आज री सर्वदलीय बैठक रे मार्फत सरकार ने आस है के सगला राजनीतिक दल संसद री कार्यवाही सुचारू रूपों चलाबा माए इमदाद करेला। ओ सत्र 13 अगस्त ताई चालेला। राज्य सरकारी कानियों करिया जा रिया निवेश प्रोत्साहन री कोशिशा ने राष्ट्रीय स्तर माथे सराहना मिली है। नीति आयोग री कानियों जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक माए राजस्थान ने अग्रणी राज्य री श्रेणी माए थौड़ मिली है। बत्ती जानकारी समाचार कक्ष सू।
2: राजस्थान निवेश अनुकूलता सूचकांक में समग्र रैंकिंग में देश भर में 10वें तथा बड़े राज्यों में 8वें स्थान पर रहा है। वहीं बड़े राज्यों की श्रेणी में नियमों के सरलीकरण में प्रदेश ने दूसरा स्थान और निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरा तथा संसाधनों के क्षेत्र में पांचवा स्थान हासिल किया है। यह राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और कारोबार को आसान बनाने की दिशा में किए गए सुधारों का नतीजा है। इन्हीं सुधारों के तहत सरकार ने निवेश को पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज निवेश पोर्टल को लगातार मजबूत किया है। वर्तमान में इस पोर्टल पर 18 विभागों की 190 सेवाएं उपलब्ध है। प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन की औसत स्वीकृति अवधि पिछले वित्तीय वर्ष के 20 दिनों से घटकर 10 दिन हो गई है। इसी प्रकार पर्यटन परियोजनाओं की स्वीकृति अवधि 22 दिनों से घटकर 16 दिन हो गई है। पिछले ढाई वर्षों में 30 से अधिक नई नीतियां लागू की गई है। इनमें MSME, निर्यात प्रोत्साहन, टेक्सटाइल और अपेरल, लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस तथा डिफेंस जैसे सेक्टर्स आधारित नीतियां शामिल है। राज्य की इन्हीं नीतियों के कारण राजस्थान में निवेशकों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। समाचार कक्ष से जितेंद्र प्रधान।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे ने वारी जयंती माथे श्रद्धांजलि दीनी। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पोस्ट माए कया के मंगल पांडे रो शौर्य और सर्वोच्च बलिदान आज भी हर भारतीय खातर गर्व री बात है। वे कया के मंगल पांडे री देशभक्ति और वीरता री गाथा देश री पीढ़िया ने प्रेरित करती रहवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रा नायक मंगल पांडे ने सिरदाऊ याद करता थका सोशल मीडिया पोस्ट माए कया के मातृभूमि री स्वतंत्रता खातर मारो समर्पण और राष्ट्र प्रेम सगला माए हमेशा

0: देश सेवा और राष्ट्रहित खातर जाग जगावेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास स्वास्थ्य अहलकारा ने हर एक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलावारी सूची तैयार करबा और आरी रोजाना मॉनिटरिंग करबारा निर्देश दिया है। वणा जरूरत पड़बा माथे रेफरल सुविधावा मुहैया कराबा ने कया। मुख्य सचिव आज जयपुर सु वीडियो कॉन्फ्रेंस रे मार्फत प्रदेश री मात्र और शिशु स्वास्थ्य राज्य रा सगला मेडिकल कॉलेज रा अधीक्षका और स्त्री रोग विभाग अध्यक्ष सु लारला 24 घंटा मायविया सामान्य अर्सिजेरियन जापा और वारी हाल रा स्वास्थ्य रा बारा माय जानकारी लेर जरूरी दिशा निर्देश दिया। वणा प्रसव रे पछे आवता 24 घंटा धात्री महिला ने गहन निगरानी माय राखबा और वारा पोषण रो पूरो ध्यान राखबा ने कया। मुख्य सचिव सगला सफाखाना ने जरूरी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल री पालना करबा ने कया है। बैठक माय चिकित्सा महकमारी प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और दूजा ठावा अधिकारी मौजूद रिया। डूंगरपुर माय ग्रामीण विकास मंत्रालय रा अतिरिक्त महानिदेशक महेंद्र कुमार उज्जैनिया री अगुवाई माय केंद्रीय दल आज विकसित भारत जी राम जी अधिनियम रा प्रभावी क्रियान्वयन खातर समीक्षा बैठक करी। बैठक में जिला कलेक्टर देशल दान समेत केंद्र और राज्य स्तरीय अहलकार भाग लेना। इन दौरान जिला माय चाल री न्यारी न्यारी गतिविधियां और प्रगति माथे बत्ती चर्चा करी गई। एहलकारा ने योजनावारा प्रभावी संचालन पारदर्शी क्रियान्वयन और बत्तों बत्ता लोगा ताई फायदो पुगा वाखातर जरूरी निर्देश दिया गया। बालोतरा माय निर्माण मजूरारी समस्या वारो तुरंत हल कार्ड बाखातर शह महकमारी कानियों कालसू 3 दिन रो विशेष शिविर राख्यो जावेला। इन माय मजूरारा निरस्त पंजीयन और कल्याणकारी योजना वासू जुड़िया लंबित आवेदनारो निस्तारण करियो जावेला। ओ शिविर महकमारा स्थानीय कार्यालय माय राख्या जावेला। ये समाचार आप आकाशवाणी राज जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। प्रदेश माय मानसून रे फेरू रफ्तार पकड़ बारा संकेत मिल रिया है। मौसम केंद्र जयपुर आज प्रदेश माय 15 जिला माय आंधी और बारिश रो येलो अलर्ट जारी करियो है। अंदाजा रे मुजब पहली पूर्वी राजस्थान और उनरे पछे राज्य रा पश्चिमी हल्का माय बारिश आवक वह सके है। कालों कोटा भरतपुर जयपुर और अजमेर संभाग रा कुछ एक हल्का माय बारिश वह सके है। इन बीच प्रदेश माय कटे कटे मेह बरसियो। लाड़ला 24 घंटा रे दौरान सबूबत्तो 32 मिलीमीटर में दौसा जिला रा बसवा माय दर्ज करियो गयो। इनरे इतर अलवर धौलपुर बूंदी और कोटारा कुछे खलका माय छितरायो में बरसियो। आज दोपहर पछे कोटपुतली बहरोड माय कुछे थोड़ा माते में बरसियो। इनसो आम जन ने तेज गर्मी सो थोड़ी राहत मिली। राजधानी जयपुर माय दोपहर पछे बादल छायोड़ा है। विभाग रे मुजब प्रदेश माय इन मानसून सीजन रे दौरान हाल तई सामान्यो करीब 25% कम बिरखा भी है। करौली जिलो आज आपरोत्थापना दिवस मना रियो है। इन मौके जिला भर माय साइकिल रैली स्वच्छता अभियान पौधारोपण और न्यारी न्यारी होना राखी गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करौली रात थापना दिवस माथे जिला वासियां ने शुभकामनावां दी। सोशल मीडिया संदेश माय वे कया क ओ जिलो आस्था इतिहास और प्राकृतिक वैभव री अनुपम धरोहर है। वणा कया के करौली लगातार विकास समृद्धि और खुशहाली रा नया आयाम स्थापित करिया है। फीफा विश्व कप 2026 रो फाइनल मुकाबलो आज अर्जेंटीना और स्पेन रे बीच खेलियो जावेला। भारतीय टीम रे मुजब ओ मैच न्यूयॉर्क रा न्यूजर्सी स्टेडियम माय रात के 12:30 बजे सु शुरू वेला। इनसु पहली काल मियामी स्टेडियम माय तीजी ठौर खातर खेलिया गया मुकाबला माय इंग्लैंड फ्रांस ने 6-4 सु मात देर कांसारो तमगो जीत लियो। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट रो खिताब जीत बा माथे पीवी संधू ने बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट माय डॉक्टर मांडविया कया के जापान ओपन रो खिताब जीत पावाली पहली भारतीय बनर सिंधु इतिहास रच दीनो। वे कया के वारी इन उपलब्धि माथे पूरा देश ने गर्व है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए पढ़निया और मारा माता पिता ने ऑप्टिकल अंक प्रमाण पत्र ओएमआर शीटरी जांच खातर केवल असली ओएमआर ही जमा करा बारी राय दी है। फर्जी या एआई सु बनाई गई ओएमआर शीट दे बामा थे कानूनी कार्यवाही वै सके है। इन खातर पढ़निया और मारा अभिभावका सु अर्ज करी गई है कि वे जांच खातर केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित करया जावण वाला ई कार्यक्रम री 136वीं कड़ी वेला। इसारू आप ही सुझाव 24 जुलाई ताई मुफ्त नंबर 1800-11-7800 माते भेज सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए विचार भेजा जा सके है। और अबे आखिर माए खास खबरां एकर फेरू। संसद रो मानसून सत्र काल सु सरकार कानियो आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक माए सगला दलाओं सदन ने सुचारू रूप में चलाबारी अरज करी गई। नीति आयोग री कानियो जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक माए राजस्थान ने अग्रणी राज्य की श्रेणी माए थोड़ मिली। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास हाई रिस्क वाली गर्भवती महिला वारी लगातार मॉनिटरिंग करवा और सफाखाना ने जरूर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल री पालना करवा ने कया। और प्रदेश माए मानसून एक बार फेरू रफ्तार पकड़ सके है। आज 15 जिला माए आंधी और बारिश रो अलर्ट। इस आगे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो वियो। मां को आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। आज सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाला सगला भयाने और भयाने नारायण भाई की तरफ घना घना राम राम। देखो किसान भैया, आप जो को नागौर रे चिरमी चैनल आप जुड़ा और बातचीत बरसात री वे एर रोज आई उड़ीक रह कि भाई अब बरसात उड़ी री बात करा जना लीला लहरू जब है। पर देखो प्रकृति है एर प्रकृति रे अनुसार आपने चालनू पड़ी एर आप आशा आई कर सकें कि भाई बरसात जल्दी वे और जो मौसम विभाग है जो भी आई बता रही है कि भाई जल्दी हूँ जल्दी जो बरसात हुए। और किसान भाई अब के है जो किया करे कि भाई आपने मारवाड़ी में कहावत है कि भाई मोबी पूत और जेठ रे जकी बाजरी रा बूंटा है मारी ओडको वे नीर। बात भी सही है कि भाई जेठ री बाजरी वे बा है जो अच्छी तरह मेरी वृद्धि हुए बढ़िया तरीके बा पाके और टेम भाई उड़ा के भाई मोती निपजिया करे। तो जाना आई यहाँ के भाई जका आप मोती बाया हाँ अनाज रे रूप में बे है जो आपने जरूर है जो मिली आई आशा कर सका। और बातचीत आप करा के आज रो जो समय है वो तकनीकी रो समय है। वैज्ञानिक हर क्षेत्र में नया नया प्रयोग कर रही है। नया प्रयोग करने में भारत विश्व रा अग्रणी देशा मऊ एक है। जका जकन कह सका कि जका टोपरा चार पांच देश है बम भारत भी शामिल है। भारत जका वैज्ञानिक है वह सब श्रेष्ठ मान्या जावे। कृषि में बार बार अपने तकनीकी रो प्रयोग हुए और वैज्ञानिक ई प्रयोग में ई में विश्लेषण में लागूड़ा रहे कि भाई आपा भारतीय जकी जनसंख्या है वह ज़्यादा है और ज़्यादा जनसंख्या के कारण खेती भी अपने धीरे धीरे कम हो रही है। और खेती कम होने की वजह आपने अनाज और चारों तो बीतो ही चाहिए। तो वैज्ञानिक और आप भी आ चाहवा कि जितनी भी आपने जमीन है भी में पैदावार इतनी अच्छी हो सके कि आप पूरे देश रो है जो भरण पोषण कर सका और आप सक्षम हो सका ताकि आप कोई भी दूसरे देश रे ऊपर आप निर्भर नहीं रहवा। इसलिए वैज्ञानिक बार बार तकनीकों प्रयोग करता रहे और वो भी तकनीक

प्रयोग करें कि भाई आपां कोई भी तरह रो छिड़काव करा या कोई भी तरह रो आपां निगरानी रखा, तो मेरे लिए भी आपां एक ऐडी तकनीक वैज्ञानिक लाया है जके ना आपां कह सका ड्रोन। और ड्रोन आपां छोटे रूप में जाना, जना आपां कटे ब्याह शादी में जावा, जना एक छोटो सो कैमरो उड़तो रहे ऊपर, बिने रिमोट कम ज़्यादा आपां करता रहवा, और वो माथे रे नज़दीक आवे जना वासी लागे, बिन पूछा जना अपन कहे भाई वो ड्रोन है। बी आई एक बड़ो ड्रोन बना, और बी में एडी तकनीक पैदा करी है कि बी आपारी खेती में भी फायदो हो सके, जके ना आप कह सका कि खेती में ड्रोन रो उपयोग। देखो ड्रोन हर क्षेत्र में उगियो, आपारे कैमरे रूप में भी ड्रोन है जको निगरानी राख सके, जको जासूस को काम भी करे, और हर क्षेत्र में वो फोटो लेते रहे वीडियो लेते रहे। और ड्रोन है जका अपने रक्षा क्षेत्र में भी आ गया है कि भाई ड्रोन रो उपयोग हुए, आपा अपारी रक्षा करा, सीमा वाली रक्षा करा ड्रोन रो माध्यम आपा भी उपयोग ले सका। खेती में भी ड्रोन रो उपयोग होने लाग गयो है, और मुख्य रूप इरो उपयोग कीटनाशक और उर्वरा रो सटीक छिड़काव और फसल री निगरानी और मिट्टी रे विश्लेषण वास्ते ई ड्रोन रो उपयोग करियो जावे। इमें समय पानी दवाइयां री भारी बचत हुए। और देखो के एक एकड़ खेत हुए नी, बीर मायने अपा 5 से 10 मिनट तक इतने कम समय में आपा छिड़काव कर सका। नहीं तो आपा खेत में घूमा, खेत में घूमने के बाद में आपा रह जको रे बीर मायने पगाऊ खेती खराब हुए, ट्रैक्टर भी है जको नहीं तो चिंती जे थोड़ी बहुत खेती खराब भी हुए। दूसरी बात आ है कि आपा कीटनाशक तो छिड़काव करा दन कितनी तरह की सावधानी बरतनी पड़े, और फिर भी हवा यदि तेज हुए तो नुकसान करे कठिन कटे। देखो भाई भाई लोग किसान भाइया कठिन कटे शरीर उगाड़ो रे वही है, आपा चश्मों भी लगावा तो थोड़ी थोड़ी साइड में हवा तो लागनी पड़े, तो बीते हूँ भी आपने शरीर में एलर्जी रूप नुकसान हुए। तो ड्रोन में आपा बात चीज भर देवा तो ड्रोन अपने आप है जो को भी छिड़काव कर दे, आदमी ने एकदम कने रहे उठी जरूरत को नहीं, आदमी भी विपरीत दिशा में खड़ो रह सके, भी वहाँ पर स्वास्थ्य में भी लाभ है। और ड्रोन वो बीती छिड़काव हुए जितनी अपन जरूरत है, ज़्यादा छिड़काव हुए भी कौन नहीं, तो वो भी एक फायदा है कि ज़्यादा जहर वहाँ पर बच सका। और देखो इरी यूँ वह कहीं है कि इनमें 30% तक दवाई रही है जो कि बचत हुए, एर पौधे रे हर हिस्से तक आ दवाई पहुंच जावे, क्योंकि इरो जो को छिड़काव है इरा जका फुमारा है वे पूरा पत्ता तक पहुंच जावे, जड़ तक पहुंच जावे, ज्यों जो भी कीटाणु है वो आराम उमर सके। और इमें पानी री लागतों भी बचा हुआ है, क्योंकि इर मायने 150 से 200 लीटर पानी री आवश्यकता हुए है, और ड्रोन आपने 20 लीटर में वो काम करते हैं, क्योंकि आपा ट्रैक्टरों छिड़का ढोलकियों छिड़का आपने बहुत ज़्यादा पानी रो उपयोग करना पड़े। और पानी रो उपयोग ज़्यादा करा जन आपने उर्वरक भी रमायन है जो दवाई भी ज़्यादा डालनी पड़ी, तो दवाई भी कम डालनी पड़े और पानी भी कम लागे। ड्रोन में जको आपा ट्रैक्टर या खुदू करा बी में 200 लीटर पानी लागे, तो ड्रोन 20 लीटर पानी लागे, और 20 लीटर पानी में एक एकड़ छिड़काव कर सका, यानी 6 और 7 बीघा में आपा आराम भी छिड़काव कर सका। देखो फसल री निगरानी करने में भी और स्वास्थ्य री जांच करने में भी इरो बहुत बड़ो उपयोग है। थर्मल और मल्टी स्पेक्ट्रल कैमराओं लेस जका फसल री बीमारियां हैं बिने ओ कैच कर ले कि भाई फसल में भी में कैमरा लागूड़ा है, और वो इंटरनेट जुड़ और वो आपा ना बता ले कि आ लट लागूड़ी है, इनमें आ दवाई छिड़कनी चाहिए, ई तरह री आ तकलीफ है। तो यूं भी अपन अच्छा नमी री कमी या कीटाणु जो को शुरुआती हमलो है बिने भी आपन बता दे, पैदावार रो अनुमान लगा ले कि भाई इतनी पैदावार इरमाई ने हुई, कितो बड़ो फायदो है। देखो ड्रोन आज वैज्ञानिक है जगह बहुत तरक्की करी है कृषि रे माध्यम, और कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा बड़ा प्रयोग हो रहा है, और एड़ा बीज भी आ रहा है जकाऊ आपन बहुत फायदो हो रही है। ड्रोन एक तरह री आप कह सका कि इंटरनेट जरूरी एक एड़ी मशीन है जकी आपा जिया मोबाइल में देखा नहीं कि भाई कैमरो आपा चालू कर परार आपा कोई भी कागज माते लिखी लाइन है बीरे ऊपर आपा इंटरनेट जोड़ रहा आपा लिखा दिन बीरो अर्थ आपा सीधो बतावे, बिया ही आपा ने जकी फसल है बीरो फोटो ले और बिन बता दे कि भाई आ फलानी फसल है धानरी और इनमें आ तकलीफ हो रही है, आ लटर आ चीज इनमें लागूड़ी है, बीरो नाम तक आजीर भी दवाई रो भी नाम आजी भाई इतना लीटर रूप में आप छिड़काव करा तो आपने फायदा हो सके। सरकारी अनुदान भी इरमाई ने बोले कि
देखो सरकार

0: ने बढ़ावा देने खातर 50% तक सब्सिडी दे रही है और ग्रामीण क्षेत्र में युवा ड्रोन पायलट हर महीने 25,000-80,000 रुपए तक की अतिरिक्त आय भी कमा रिया है, क्योंकि वे लोग है जो सरकारी योजना जुड़ और ड्रोन जुड़ है वह जो अनुदान ले और छिड़काव करे। तो आ बात तो ही अपन ड्रोन रही। अब देखो के अपने जो को मानसून आ रही है बीमा अपने ज्यादा ज्यादा वर्षा जल रो संरक्षण करनो ही है। आ बात अबार करा लेकिन पहली सुना कामरी बात।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन,
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
0: हाँ किसान भाई, देखो आप हम बातचीत करी ड्रोन री और अब देखो किसान भाई तो पढ़े लिखा है, रेडियो भी सुनता रहे, टीवी रे माध्यमों, फोन रे, इंटरनेट माध्यमों आप जानकारी लेता रहो। अब बात करा आपा के बिया तो आपा जका पश्चिमी राजस्थान में रहवा आपा बढ़िया तो वर्षा जल संरक्षण कौन जान सके। आपा एक विश्व में अड़ी मिसाल हाँ कि आपा तो हजारों सालों पानी संरक्षण करता है। आपा तो बरसात रे पानी लिए अपन मोटा मोटा टांका हुए बिना मोटा अगोर हुए बीमा आप पानी रखा बिरी आप साफ सफाई करा। वैज्ञानिक भी कह रहा कि बरसात रो जो पानी है वो सबसे शुद्ध पानी है। यूं शुद्ध पानी है जो आप जो मिनरल वाटर जके ने कहवा साफ हुईड़ो पानी बोतल बंद पानी है वो भी आवे को नहीं। लेकिन देश में वैज्ञानिक है, सरकार भी इस चीज चिंतित है कि अब जो पानी है वो बहुत नीचे गई ऊपर, इस लिए अपने बरसात रो जल संरक्षण करनो अति आवश्यक है। नहीं तो आने वाले समय में पीने री पानी री बहुत बड़ी दिक्कत हो सके। इसलिए आपने बरसात रो पानी यदि आप पीने रे लिए और आप जो ढोड़ने रे लिए जो नहाण धोण में भी आप जो काम लेवा वो यदि बरसात रो जल आप संरक्षण कर ला तो जमीन रो पानी कम उपयोग लेनो पड़े। और इस वास्ते भारत सरकार है जो जल संरक्षण अभियान चलायो है, केस दे रेन अभियान, वर्षा जल रहे जकेरो संरक्षण करनो है और भू जल है जकेरो पुनर्भरण रो बढ़ावा देनो है। यानी जमीन रो जो पानी है नीचो गियो प्रो बिना आपा ऊपर लाने री कोशिश करा और वो जदी ऊपर आए जद आपा जमीन रो पानी कम से कम उपयोग करा और बरसात रो पानी ज्यादा उपयोग करा। क्योंकि बरसात रो पानी उपयोग करा आपानी पूर्ति उजी, आपानी पूर्ति उजी जन आपा है जो जमीन भी तो ही पानी निकालना जितना अपन या तो खेती में जरूरत है भी तो ही निकालना, पीने रे लिए या आदमी जो को आप रे लिए काम में ले रही हो पानी वो है जो को अपन निकालना नहीं पड़े। और वो एक राष्ट्रव्यापी जल आंदोलन है, आपने भी योगदान देनो चाहिए और आपने आगे भी हर आदमी तक आ बात पहुंचानी चाहिए कि भाई वर्षा जल रो पानी है बीरो संरक्षण करो और पानी है जकेन आप बर्बाद नहीं करा। और जद भी पानी बारिश के रूप में आवे आपा परी छाता साफ करा, बिल नीचे आपा कुंड बनावा मोटा जके ना आपा टांका केवा, वो पानी टांके में आवे, टांको जद भर जावे तो ही पानी वो बारे जावे। और इतो बड़ो आपा होद बनावा कुंड बनावा जके ना आपा टांको बोला कि आपा रो है जो को घर रो काम है जो को चाल सके 6-7 महीना तक, जब तक आपा रे 1-2 बरसात और भी उजे करे जके पानी और आ जावे। आपा रे पश्चिमी राजस्थान में तो मोटा मोटा अगोर बनाई उड़ा है आपा अच्छी तरह संरक्षण करा। जल शक्ति रे जगह केंद्र है बीरोध कई तकनीकी माध्यमों भी आपने कई तरह का मार्गदर्शन मिलता रहे, इस वास्ते आपने वर्षा जल रो ज्यादा ज्यादा संरक्षण करना जरूरी है। और देखो भाई बातचीत तो आप

0: एक आदमी हड़ग्रहा रही कर सी लेवड़ार हुत्ता है देखा राम राम सा।
1: राम सा साइड
0: तो कोई ताऊ जी आराम करो।
1: होता सा
0: ओ जने काई दान दानो नहीं मन बरसात लागी को नहीं वरनो खारी का नहीं आयो हूँ
1: मैं पानी
0: मन।
1: खट रहा हूँ। मैं यार महीनो ये वो शांत हो यार। अरे
0: हाँ बरसात पूरे राजस्थान में को नहीं होनी कटे कटे। तो ए खेती में दान मूंग बायुड़ा है बाजरी दिशे और खेत अगलो थारो ही है
1: मारे था
0: घर करो ही बैठो है।
1: करूँ।
0: हाँ जने खेल लिए ढकला ही ऐसा कर। अब तावड़ो घणो है वास्ते थे आराम करो।
1: हाँ गर्मी घनी आंधी बाजार रखी मन नहीं कौन लागे मैं तो है को नहीं। हाँ
0: हाँ बात तो हाथी हाथ तो मन करे को नहीं निदान रहो।
1: दान खराब हो गया।
0: देखो मौसम विभाग केवे के 21-22 तारीख रो पाच मौसम बदला हुई। देखो देखो जावे जना तो बहुत ही बढ़िया बात है।
1: परसेंट है मानसून?
0: मानसून तो है कोई थोड़ा अल नीनो कोई धारावा हुआ करे हवा हुआ करे तो अभी तो थोड़ा प्रभाव रे कारण थोड़ा मानसून कमजोर बतायो आपने। देखो हुई आपन तो काम चलो जावे मोला राम जी दिन घणो ही है।
1: तो बस दो 3 दिन में
0: बात तो सही है। देखो अब हाँ ऐसा करा के 21 तारीख को पच्ची मानसून बतावे
1: दाने मुका भी बाल जी ठीक
0: हाँ कुल मिलार कहीं है कि बरसात भी नकी नहीं हुए। हाँ
1: कौन वैसा जमाई नहीं
0: मैं तो कहूँ देखो किसान रे देखो तो प्रकृति रा मौसम है किसान रे कहीं है का आप मेहनत रो फल मिल जावे नहीं तो किसान राजी है।
1: पतलो। हाँ
0: हाँ
1: मैं तो
0: देखो
1: राजा बोल।
0: बरसात आनी चाहिए मोला राम जी तो थे निदान कश्यो ही करो
1: करा
0: कई कटी कटी मैं देख के आ गई स्प्रे कर उड़ार बहु कई कचरो बोलूडो और भी वो कहीं फायदा हुआ नुकसान हुआ।
1: मैं तो नहीं है और तुम कहीं
0: ये तो कोरे नीर पस जे बाबा कतरे न बाल दिया जन बस आपन धन बीतरे पस जे कचरो कटवाई एर पर कतरे ने बाल दिया पाची खाद को वे नहीं कतरा ने जगी खाद दिया करे जगी।
1: जमी खराब खराब होनी है
0: हाँ तो इर जको माँ जेरी मात्रा है बाप जावे कौन नहीं धान में। हाँ
1: दानवी और
0: क्योंकि आप छिड़काव करा देना जड़ा ताई तो मारे भी पोचे ही है।
1: नुकसान
0: अरे कई जगह मूंग भावे बामू कई स्प्रे करे थे करोगे तो बिना स्प्रे उज्जैव फलियां ठीक लागे। हाँ
1: लागे हो वो तो डंडो है वो भेड़ साल साल में बड़े लोगन
0: क्योंकि तेरे कोई मान लो कई छिड़काव करे थे छिड़काव करो कौन तो कोई पैदावार में फर्क पड़ेगा कहीं कोई मान लो उत्पादन में आमदनी में वो
1: अलग
0: बरोबरी हुआ है।
1: अलग बाबूदी है बात है अलग अलग दिमाग।
0: हाँ और घणो कर देसी अपन खाद री रे बी री होट को नहीं है। हाँ
1: देसी जुगाड़ थी यानी बहुत सही है तो
0: बिल्कुल सही बात है। और
1: जना
0: थे जो मान लो ज्यादातर अब के काई पाई हुए हैं।
1: ज्यादातर तो मूंग ही बोड़ा है। मूंग ही है बाजरी है गवारी है तिल है
0: हाँ किस्म ठीक लगी हो
1: बरसात
0: बरसात भी ना उकड़ा है तो हाँ
1: क्या मैं बिना धाव क्या मी है कौन है तो ठीक ही पड़िया धान अगला ही ठीक
0: सही बात। अब तो बरसात यही था पड़े है। सही बात। मोर नाम जो बीज थे बाजार में लाओ घर घरू राखो कहीं करो।
1: मैं घर को रखा अभी तो मजा आ कहीं लावा गया 80 किलो है
0: हाँ तो बीज राखो कहीं बीज राखो
1: रागला दान हकर वो जो मोटवाड़ ना मोड़ सांडा
0: पतरा को कंकर के अभी मखुड़े नहीं माँ घुण नहीं पड़े इली नहीं पड़े।
1: नहीं वो तो करता हमने कहीं ना मेरे पर लड़ाई तो माँ दवाबड़ी पानी
0: अच्छा बानी रड़ो गए हैं। अच्छा
1: है पाउडर है
0: बिन रड़ा दाड़ दो।
1: तार था बेल रहे थे।
0: हम्म
1: क्यों वो फड़ी।

0: से 2-3-4 महीना।
1: अच्छा सही बात है, बाजार क्यों लानो, बस बच्चों को बीज है जो थे टाल लो।
0: तो नाम अलग अलग आओ, फलान जी रो कंपनी रह रहो, फलानी कंपनी रहो, समझ
1: हाँ खैर सही बात है। धन बीत की
0: रहे
1: तो ग्राहक को अच्छा
0: तो गई है वो गिया है
1: खात है जो की खेत पे खिंडा ही तो
0: कहा तो उसे खिंडाई था कुंडा हूँ
1: अब
0: तो कोई कहा
1: चौमा से मैं ढीला देवड़ा पड़िया है थारे पोटा रीर आरी कहीं है गोबर की खाद है देख भेड़ कर लो।
0: भेड़ी
1: हाँ पचे
0: ढकदा मैं नहीं हूँ माँ पांडे कर तेरे
1: हाँ
0: माँ वो कचरो हो जो उगी है बा हम खात खा रही जी रेर नेजी पूजी
1: अच्छा खाद है जगह थे पाती बिन पानी नाक पर और बिन हाथी खे खाद बना परीर पर खेत बैठा हो।
0: ना
1: बहुत बढ़िया वृद्धि है। यूरिया खाद रखे डीएपी रानी कौन जरूरत पड़े।
0: नहीं यार, 1 साल दाग नहीं, हर साल दागना पड़े, आज मल नस आ गई है, डेली गोली लेनी पड़ी।
1: हाँ धरती नहीं बस हवा हवा पर गाल हम यही हो बस
0: हाँ
1: कहीं आएगा धान भी और शक्ति खत्म हो जाए बस भी खाद बिना धान ही को नहीं। बिल्कुल सही है देसी खान पान बहुत ही बढ़िया है। तो मोला राम जी है कई ऐसा करे डेयरी फार्म लगावे कई डेयरी में दूध देवे थे डेयरी में दे दो सारे का घर बढ़ता हुई जावे।
0: नहीं मार तो घर पर तो हुआ है, डेढ़ डेढ़ मैं तो कौन दूँ। हाँ
1: आज घर में चौको है जो घी दे सिखा लो और थारे तो घर भगड़ो काम चाल जिया। गाय है जो खेड़ी नस्ल दिया को
0: अपनी है वो देसी मानो ने।
1: देसी गाय है ना, तो
0: हाँ
1: देसी गाय रो टेम रो दूध कितो हो गया।
0: दूध रुझे 5-6 किलो दूध रहे तो 5-4 रुपए है, दूध वही 12 किलो है 15 किलो
1: हाँ वो पतलो दूध है बस बा किस्म दूध दी है गाय यारी।
0: हाँ मैं कई देसी यार कई अलग अलग नाम है नाम की यार। हाँ
1: हाँ पर देसी नस्ल नागौर नस्ल है
0: देसी नस्ल नागौर नस्ल है नहीं
1: तो ईरो दूध है जो भी हूँ जड़ो वे कहीं फर्क पड़े है बस।
0: वो ज्यादा ही हुई है माँ, ताकत भी हुई है मैम देशी यार, लाखों नाम है सही आल है अच्छे ऐसे दिल्ली शहर सनान है। हाँ
1: हाँ वो बात ताकत को रहे बस भी में। हाँ
0: हाँ
1: ईरो है जो दूध कम भला ही वो ईरो बस घी तकड़ो आवे।
0: घी तकड़ो है वे दही तकड़ी हुए साई तकड़ी हुए
1: बिल्कुल सही बात है मोड़ा राम जी। इतने तो बरसात री उड़ी गया पीऊं तो पानी आप और कौन दी क्यों अटकट टीम में डूबे लग रहा ही कौन है। हाँ
0: पीयूष पानी को नहीं बरसा जीरा नहीं है कहते
1: अभी जन बरसात यही कोई आप और खेती बार पड़े।
0: हाँ बरसा तो यही बात जमे
1: सही बात है देखो मोड़ा राम जी बस जो मान लो थे खेती कर लिया बेर बीर बाद में थे कहीं मजदूरी करो।
0: जैसलमेर
1: अच्छा जैसलमेर मुरबा पा लो बस बट क्यों जमी है।
0: जमड़ी
1: अच्छा बहुत बढ़िया बात है टा फिर घर की खेती कर लो 4 महीना बाद में थारा मुरबा पा लो और खेती माते ते पूरा ध्यान दे वो दिन थारो काम चाल जाओ।
0: खेती माती जरूर ये डाल लो चलो। हाँ
1: बहुत बढ़िया मोला राम जी तई कर बड़ो मन खुश हुई हो गए थे देवी खेती कर दिया हो कहने मतलब देसी खेती थे कर दिया हो और कोई तरह की दवाई दे ना करनी था जरूरत है कौन नहीं भगवान की दया हूँ बढ़िया तारे फसल हो रही है।
0: जो ऊपर तो करे जी वह
1: बिल्कुल सही बात है सा बहुत ही धन्यवाद जी और यो बात कर राम राम सा।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। दिनांक 6 अक्टूबर 2025 से हमारे कार्यक्रमों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सोशल मीडिया पर प्राप्त फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल से आरंभ किया गया है। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 9649004762 पर अपने पसंदीदा फिल्मी गीत की फरमाइश भेज सकते हैं। आप अपनी पसंद के गीत के बोल, फिल्म का नाम, गायक कलाकारों के नाम और अपना नाम पता लिखकर इस मोबाइल नंबर 9649004762 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रत्येक सोमवार शाम 5 बजे तक प्राप्त फरमाइशी गीतों को उसी रात्रि 8 बजे सुनवाया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।
1: देखो बातचीत सुनी अपार, देखो शाम रो टेम है और आप आई उड़ी करा के मैं बेगू आवे तो अपना चौको सो सुना एक गीत।

खेती बाड़ी, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चल से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 में हैं। आज सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म का नाम यादों की कसम, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत आनंद बख्शी का, शब्दकार आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

चिरमी चरण के संग आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, ये सुनते हैं दोस्ताना फिल्म का गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, शब्द रचना आनंद बख्शी की।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम रोटी कपड़ा और मकान। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और वर्मा मलिक की शब्द रचना।

लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। FM 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजे हैं, आज सुनते हैं लोकगीतों का फरमाइसी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंध।

0: लीज में दे मन बदे डर लाग गया फेरनिया को।
1: अरे वाशो वाशो की बात जी डरता रहो रे अब जो कहीं होने वा थाने
0: वो काका लीलन सदगी जी आलो गानो सुनो मान तो
1: ए लुंगे
2: भाई को काका
1: ए भाई कहते शेरनी से डरता हूं लेकिन वो गाना तो लीलन सदगी सुनूंगा
2: काका बजाई तो लई थोड़ा नाच ले जूं
1: ओई जा मारी बेजा।

0: और खेतीबाड़ी वाले काम करा।
1: आयो खेतीबाड़ियां कैसी गयो?
0: खेतीबाड़ी तो ठीक है, बरसात बनी काका जी।
1: ए राम जी करी हम देखो बाजो मानसून बनी है तो के उमस बनी हो।
0: देखो कर दे जना बढ़िया है।
1: ए करी राम जी मान ने जो राखो। ए भाई ए गांव में भीवार में हगले क्या नहीं हो?
0: सब रेडी रेट है।
1: ए प्रोग्राम कैसी हो गया की था नहीं हो?
0: प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा।
1: आज जो काको एक सवाल करता उसका जवाब बिनाना पड़ेगा।
0: हाँ काका जी बोलो।
1: ऐसा क्या जो आपके पास जितना ज्यादा होता है आपको उतना कम दिखाई देता देगा? क्या होता है बताओ?
0: अब काका जी समझ में नहीं।
1: ए लूनी भाई यो।
2: काई को काका?
1: ए हमने भाई को हीरा दिया है, हम जीत गया है।
2: तकल भाई जी साइड लो जन मैं ले लूं।
1: आज तुम भी साइड ले जाओगे। ए जो भाई को बोलो हेलो।
2: हेलो
0: हेलो राम राम लूनी भाई।
2: राम राम सर। राम राम साहेब भाजी हो।
0: निना निना तो कर लियो बरसात बनी लूनी भाई।
2: अरे चेरू का नहीं बरसात री मांग हुई है जो को वेली है।
0: देखो महादेव बाबू करेला।
2: ए काके थाने आड़ी पूछिन बीर तो अर्थ आयो को नहीं हो?
0: कोई नहीं आयो।
2: के था कर जीतो ज्यादा हुई भी तो कम दिखाई दे।
0: हाँ
2: वो तो होता है अंधेरा।
0: हाँ सही है।
2: हल अंदर हुई जन बद कम इंदी की तो।
0: हाँ हाँ
2: कई काका सही है कही हो?
1: ए बिल्कुल सही कह दी मारी बेटी। आप भाई को पूछ जो फोका में क्या पूछे
2: भाई जी आज कई सुनो ला।
0: आज चौमासू सुना है दुखा करना।
1: आईलियो।
3: हेलो नमस्कार काको जी पगा लागू।
1: ए जी उदारो राम जी थोड़ी लंबी उम्र घरे आप रो न्याओ भीजो गांव भीजो।
3: मेरा नाम कोजराम है गांव सोनिया से तहसील डूंगरगढ़ जिला बीकानेर बोल रहे हूं।
1: आओ हो कोजराम जी कहीं काम दिन जो हुए हो?
3: बार काम खेतीबाड़ी का करा निनान करा।
1: अरे वाह कहीं कहीं बीजो काके नहीं बीजो?
3: मोट बाजरी तिल गुआर चौड़ा मूंग सब बीजो बाजरी।
1: ऐसा का के सी के हो?
3: धान तबा तो बरसात को नहीं बैठा था।
1: ए राम जी करी राम जी मान ने जोरा को मंडियो जी को करी हो?
3: करी सी भगवान तो।
1: आ राम जी मान ने जोरा को धान भोगाम के योग लगे?
3: एकदम बढ़िया लगे काका। मन 40 साल हो गया सुनते नब के मैं फोन करियो कौन था घर मुको।
1: ए क्यों भाई काका तो निराज हो गया गई?
3: निराज को नहीं हुआ।
1: ए तो कई बात जी इधर जो फोन करियो और बताओ गांव में परिवार में सब राजी खुशी?
3: एकदम राजी खुशी है काकी का ही करे।
1: ए काकी धर काके ने हाका करे ले जाओ खेत में हाके खेल दी नीचे बैठ आदे पी जाओ खाई।
3: ए आगे लूण की काई करे?
1: ए लूणी भाई यो
2: काई का काका?
1: ए कोजी राम जी के भाई से बात करूंगा बोलो हेलो।
2: हेलो
3: हेलो लूण भाई नमस्कार।
2: राम राम साहेब पगे लागो
3: खुशी राखो लिसनी जो बोली सारी।
2: हाँ तबियत पानी की खराब रहो?
3: एकदम बढ़िया है मां तो।
2: टाबर टोली सब राजी?
3: अब टाबर टोली सब राजी खुशी है। स्कूल टेमो टेम बीतवार की छुट्टी है।
2: हाँ एक गाड़ी बताओ जना एडो कौन है जो को सूरज तेज नाटे?
3: दोनों भाई आवे कौन मन तो
2: काका थाने ठाया कही हो?
1: ए हम क्यों बीते तुमने पूछे तुमने बीते हम तो हार गए।
2: थाने कौन है और काके नहीं कौन है ते दोनों हार गया?
3: हार गया।
2: ए वो तो थारो और आपारो सब रो मन हुए जो को सूरज तेज नाटे।
3: अमन कणी के भाटो नाग लिया कणी के निनान कट गया। तो सर नाव लेना चाहतो
2: ले लो सर।
3: एक पप्पू राम नाईक एक बागू राम चौधरी एक थेनाराम एक प्रकाश
2: सभा ने रामा समा कही जो आज कहीं सुनो ला।
3: आज है मोरियो सुना जो चौमासो
2: काका आयो
1: आ भी जाओ
2: कोजराम जी के सोने सर ताई चौमासो जान दो।
1: ओई जा मारी बेटी।

0: हाँ काका।
1: ए राम राम श्या।
0: राम राम सा, राम राम सा।
1: ए आप रो जाओ भिजो खो के नीर गाँव भिजे हो।
0: सुखदेव श्या मोर नावड़ा।
1: हुकदेव जी बोर नावड़ा में खाई करो
0: पढ़ाई करा।
1: ए गीती मारे भी जाओ
0: बारे में।
1: ओ छोका अपडो छोका अली को माई जाकर फिरवार का नाम ऊंचा करो मारे बेचारी। ए भाई रे।
0: हाँ।
1: अब के थारे के भी नहीं बोर्ड का पेपर पड़ी रे। ए माई जानो केनो मानो बेचारे, माई जानो केनो नहीं माने वो दुख पाऊंता है।
0: हाँ।
1: तो एक सवाल करे उसका जवाब करेगा काई।
0: हाँ।
1: ए दो अक्षर का मेरा नाम करती कभी नहीं आराम, मुझे देख सब मेहनत करते, झट से बोलो मेरा नाम क्या होता है।
0: ये रहो कौन
1: एलुंगे
2: कैको काका।
1: हम जीत गया भैया हार गया, तुम कहीं के उठा हो
2: काका। ये तो छोटे भाई ना रहो मत ना मन जान दो भाई का नहीं।
1: ए जो भाई की तरफ जाऊं चाहे।
2: हाँ।
1: ए जो भाई को बोलो हेलो
2: हेलो।
0: हाँ
2: सुखदेव भाई जी राम राम।
0: राम राम राम राम।
2: अरे ते की पटावड़ी हौल करो को नहीं काके मारे की करो काका लो प्रोग्राम होनो टेमो टेम।
0: हाँ टेमो टेम होना।
2: जन काका ले आड़ी आई कौन था ने हूँ बताऊं जो बताई दो के दो अक्षर का मेरा नाम आप स्कूल जावा।
0: हाँ।
2: जन टेम देखा कोनी।
0: हाँ।
2: तो क्या मैं देखा टेम है
0: घड़ी में
2: तो दो अक्षर की हुए ना घड़ी।
0: हाँ।
2: दो अक्षर का मेरा नाम स्कूल जावे जकाने देखनी पड़े पांच साढ़े जकाने सब ने घड़ी को तो टेम देखनी पड़े ना।
0: हाँ।
2: आज कहीं होना ला
0: गाजू गाजू जेट एसड। काका धोक दो।
1: ए जीवदारो राम जी थोड़ी लंबी उम्र घरे अन धन का भंडार भरे आप रो न्याओ भिजो को के नीर गाँव भिजो।
0: काका पूनम सन बोलो बोशेरी जिला नागौर।
1: औ हो पूनम भाई बोशेरी में गाय करो।
0: काका निनाण।
1: आज निनाण करो मैं पानी गई छो के बीरा गाँव का नहीं हो।
0: काका मैं तो कौन बा।
1: ए राम जी करी हमने को पाचो मंजूर करी हो टेन चिंता मत करो। हाँ। राम जी मार नहीं जुरा को।
0: हाँ राम जी मारे काका काकी कहीं करे।
1: ए काकी धर काकी ने हेला करे बीरा पूछ घेट ले जा खेल नीचे बैठ जो घंटा चूक लाऊ चा बनी और कहीं करूँ काको।
0: हाँ सही है सही काका सब बनो तो
1: काम में बिजवार में गया नहीं हो
0: बस काका थारी दिया है।
1: ए राम जी की ये वो पूजन मोहन सम्मान दिए और लुनके
2: कैको काका।
1: ए भाई पूनम जी बात करना चाहूँ क्या बोलो हेलो
2: हेलो
0: हेलो भाई जी राम राम।
2: राम राम साहब। राम राम साहब भाई जी यो।
0: हाँ जी
2: पढ़ाई अडाई पूरी कर ली कहीं हो।
0: हाँ
2: आजकल कहीं करो
0: निनान करा।
2: आवाज आवाज निनान करा जना तावड़ के में करो कि
0: सुबह शाम करा भाई।
2: सही सही एक गाड़ी बताया
0: आपो तो
2: एक कमरे में 400 आदमी आ भी मो 200 गया तो लार कितना बचिया
0: 200
2: 200 की कर बचिया हो कमरे में 400 आदमी आ बामो 200 गया तो बे 200 उड़ा जगह बटी सुता है तो आज कहीं होना ला
0: रामे सब्जी दुकान ना बोने सोनी मां सब ने सुनो तेजे जी मरा दो सब गाजी गाजी जे जे खाजो सामान भादो
2: काका आयो
1: आंडिया
2: पूनम चंद जी का जान दो बसरी ताई।
1: ए ओई जी हमारी बेटी

0: ठाकुर साहब राम राम जी।
1: ए राम राम शाही आपरो न्याव भिजो खोके नेर गांव भिजो।
0: गांव तो आपरे पड़ोसी हुकुम बदवासी बाबूलाल परियार ही को हुकुम खेत में आ।
1: आज ये खेत में अबार कहीं करो निदान करोगी?
0: निदान तो कहीं करा साहब साहब, आज तो आंधी बड़ी तेज है, फसल तीस कर रही है।
1: ए राम जी घरी राम जी मान ना जी राखो, देखो अभी बाचो मानसून मिंजो आई हो।
0: हाँ
1: हाँ हाँ हाँ। और बेचो गांव परिवार में सब क्या नहीं हो?
0: सब ठीक है, आप आशीर्वाद है, लोग मेरा आशीर्वाद है।
1: ए सब राम जी को आशीष है, पूजन मोहन सम्मान दियो। और बेचो थाने भोगाम के शोक लग गए हो?
0: ठाकुर साहब मैं तो थान नियमित सोता हूँ हुकम।
1: अरे वाशी वाह। ए लूनी भाई हो? अरे राम राम। अरे भाई रो फोन है, तुमसे बात करना चाहूँ, क्या बोलो? हेलो
2: हेलो।
0: हाँ लूनी भाई साहब।
2: राम राम साहब, पके लगो?
0: खुश हो?
2: कई काम धंधा हुए?
0: कई काम धंधा हुए, खेत में ना खेल दिए, बड़ी तेज है, हवा तेज है, फसल होती है।
2: अरे दिनों तो आप रखो कहीं की
0: दिनों तो रखा यहाँ, दिनों बिना खेती मान काम ही कोनी हुआ हुकुम, दिनों तो गाया रखा खेत तो ही
2: सही है सर, गाया री सेवा हो जाए लगाउन हो जाए।
0: हाँ हाँ, खाद भी हुए, खेत भी करा, खेती करा ना बढ़िया।
2: हाँ धन रखने तो घणो फायदो है। एक आड़ी बताओ,
0: आदेश करो।
2: हरा हरा होता है पर पत्ता नहीं है।
0: हरा होता है पत्ता नहीं होता है।
2: हाँ नकलची होता है पर बांदरो नहीं होता।
0: नकल जी होता है बंदर नहीं होता है। लुंड भाई साहब है तो मन मैं रिटायरमेंट आई ब्रह्मान चक्कर में नहीं दियो नहीं।
2: पटेरा ने पूछ ला तो
0: काकू साथ बताऊ ने बताइए, आप सेवा करी?
2: हाँ काका आयो।
1: आम जाओ।
2: ए भाई जिन तो कौन है?
1: आज नहीं है तो वो सुआ होता है, सुआ।
2: हाँ सुआ होता है तोता।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ।
2: आज कहीं होने ला भाई जी?
0: आज तो जोग मायर भजन होना दो, नवरात्रा चले गुप्त नवरात्रा।
2: काका आयो।
1: आम जाओ।
2: भाई जी कैसे कोई जान दो?
1: आई जा मारी बेटी।

0: है मारे भैया हो तो भयांगी सबकी पिसिन को पोगाम।
1: हेलो गोरबा।
0: ए पोगाम में कोई भाई की ते बजने होना चाहता है तू कहीं केउता हो
1: काका। बीतवार के दिन 12 बजे ले प्रार 1 बजे तक नागौर आकाशवाणी फोन करना है। नंबर है काका मिंडी 158 दुओ
0: आजिया
1: दुओ चौको मिंडी 168
0: आजिया। ए भाई ए के भैया का फोन है सुमे की गुमी में लेनी सीखा तो हाका करेंगे तुम्हारे काका को फिर तुम कहीं गे उतो पाना बांजो।
1: काका देखो गोपाल राम जी जोरडा है भंवरलाल जी गेडा पु है धर्मेंद्र भाई राय सर है राजू राम जी सीताराम जी ए है रेड़ा साजन सर
0: का फोन गिड़गिड़ी जो।
2: इस कार्यक्रम में काका की भूमिका में थी सुभाष कंडारी और लोनी की भूमिका में थी भीखी देवी चौधरी।
0: ओ भाईयो
1: कैको काका
0: अब बोलो आज के प्रोग्राम में टकनी के हयो किसका है।
1: जितेंद्र कुमार।
0: आज के प्रोग्राम के प्रस्तुत गीता
1: अशोक कुमार गोयल।
0: आए जब हंदेश लगो मारी बेटा
1: स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो। हेलो गोरमन
0: होती तब आप
1: लून की नीरो करते हैं
3: रोम रोम शाई।

अभी आप कार्यक्रम हेलो गोरबंद सुन रहे थे। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिचल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेन्द्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि

0: कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
1: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया, क्योंकि एनसीपीआई मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया। इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: एनसीपीआई के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि एनडीए में एनसीपीआई अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
2: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन हो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन टू बी गिविंग चांस एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फील to run the house is their responsibility. But in our house, it has become a regular practice to disturb the house and not allow the house to run.
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
3: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
4: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्डोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्डोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
3: We should help us strengthen the parliamentary relationship.
0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160

0: किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए असर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता है। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
2: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयर्ज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई है। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश

0: घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर की चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9 बजे हैं, आज सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम सुनते हैं तलत अजीज की आवाज में कुछ चुनिंदा गजल्स।

तलत अजीज़ की गाय इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM में 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 में हैं। आए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म रांझना से। आवाज़ें श्रेया घोषाल, मीनल जैन और अन्वेषा दत्त की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत AR रहमान का।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक

मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। आवाज़ें शंकर महादेवन, सूरज जगन और जॉय बरुआ की थी। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: श्रोताओ नमस्कार। आप यहां आए इसलिए। हम तो आए हैं यहाँ एक ऐसे फनकार की बातें लेकर जिनसे कई बार हम खुद ही ये कहना चाहते हैं,
1: मेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन।
0: न सिर्फ हमारे मन पर चढ़ा है उनका रंग, बल्कि हमारे जीवन में है उनकी गहरी पैठ। तभी तो जागते सोते उन्हीं के ख्यालों से बंधे रहते हैं हम।

0: धागा।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे आज के फनकार हैं अपने गीतों के जरिए हमारे जीवन में रस घोलने वाले कलम के जादूगर गोपाल दास नीरज।
0: ओ नीरज नैना, आजरा आजरा।
1: और उनके गीतों का जादू ही कुछ ऐसा है कि जितना सुनो मन यही कहता है।

जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने गीतों के जरिए एक नई पहचान कायम की, जिन्होंने पहले तो इस फिल्मी दुनिया में आने से इनकार किया, लेकिन जब कदम रखा तो उनके हर गीत ने लोगों के मन को छुआ। भले फिल्म ना चले, लेकिन नीरज के गीत लोगों की जुबान पर चढ़कर उनके नाम का डंका बजाने लगे। 1966 में आई उनकी पहली फिल्म थी आर चंद्रा द्वारा निर्देशित नई उम्र की नई फसल, जिसमें सभी गीत नीरज की कलम से निकले थे।

0: नई उम्र की नई फसल फिल्म में काम मिलने का किस्सा भी निराला है। बात 1960 की है। मुंबई में नीरज के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था और इसके लिए उनका 2-2.5 घंटों का एकल काव्य पाठ रखा गया था। यहाँ कई नामी गिरामी व्यक्ति भी दर्शक बनकर आए थे और उनमें ही शामिल थे आर चंद्रा, जिन्होंने नीरज से उनकी फिल्म में गीत लिखने की पेशकश की। नीरज ने कहा कि वो मुंबई में नहीं रुक सकते। उनकी लिखी सैकड़ों कविताएं हैं, जो भी पसंद आए वो ले सकते हैं। इस तरह आर चंद्रा ने अपनी फिल्म के लिए करीब 5 से 6 कविताएं चुनी और उनके साथ फिल्म बनाई। फिल्म में शामिल सभी गीत सुपरहिट रहे, खास तौर से ये गीत।
1: स्वप्न झरे फूल से

में दुनिया के चकाचौंध किसे आकर्षित नहीं करती, लेकिन मौका मिलने के बाद भी ऐसा कहने के पीछे नीरज का वो व्यक्तित्व था जो संघर्ष की अग्नि में तपकर कुंदन हुआ था। नीरज और उनके गीतों को समझने के लिए सबसे पहले उनके उस जीवन को जानना आवश्यक है जब वो एक कवि, लेखक, शिक्षक हुआ करते थे, गीतकार नहीं, बल्कि उसके भी पहले से उनकी जीवन यात्रा देखते हैं। 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे गोपाल दास सक्सेना, जिन्हें हम गोपाल दास नीरज या नीरज के नाम से पहचानते हैं, मात्र 6 बरस के थे कि पिता चल बसे। पढ़ाई के लिए बुआ के घर भेजा गया। बुआ के घर पढ़ाई करते हुए काफी अच्छे अंकों से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और जल्द ही अपनी और भाई की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए छोटे छोटे काम भी करने लगे। नन्हे कंधों पर ही जीवन जिम्मेदारियां टांग चुका था।

नीरज का रुझान लेखन की ओर तो था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए वो कई छोटे छोटे काम किया करते थे, जैसे टाइपिंग करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, दीवारों पर इश्तहार छापना और भी न जाने क्या क्या। वो इन कामों के साथ भी अपना लेखन जारी रखते और कवि सम्मेलनों में जाना भी। इसी तरह के एक कवि सम्मेलन में उन्हें सुनकर एक वृद्ध व्यक्ति ने उनसे बात की और पूछा कि वो कितना कमाते हैं। नीरज उस समय बतौर टाइपिस्ट 62 रुपए महीना कमा रहे थे और उस व्यक्ति ने उन्हें कहा कि वो उन्हें हिंदी विभाग में 120 रुपए महीने की नौकरी दिलवा सकते हैं। वो व्यक्ति थे अपने जमाने के मशहूर शायर हफीज जालंधरी। नीरज उनकी बात मान गए।

दिल्ली पहुंचे नीरज का काम था सरकारी नीतियों को कविता के रूप में ढालकर लोगों तक पहुंचाना। ये बात है 1940 की। हालांकि काम कुछ बुरा नहीं था, लेकिन नीरज का जमीर उन्हें कचोट रहा था कि वो देशवासियों के लिए कुछ करने की बजाय ये क्या कर रहे हैं। आखिर जब वो तब के कलकत्ता पहुंचे और अकाल से जूझते लोगों की स्थिति देखी, तो सरकारी नीतियों के प्रचार वाला गीत छोड़कर मंच पर एक क्रांति गीत सुनाया, मैं विद्रोही हूं, और उसके बाद नौकरी पर दिल्ली लौटकर कभी नहीं गए। इस कविता और नीरज के विचार ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। नीरज के मन में देश प्रेम की भावना गहरे बैठी हुई थी। 1942 में वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए और जेल भी गए।

नीरज के लिखे जितने भी फिल्मी गीत हम देखते हैं उनमें कुछ अलग ही रंगत नजर आती है। कई ऐसे शब्द दिखते हैं जो फिल्मी गीतों में उसके पहले आम नहीं रहे। इससे जुड़ा एक किस्सा नीरज खुद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं। जब फिल्म तेरे मेरे सपने के गीत के लिए सचिन देव बर्मन ने नीरज से कहा कि उन्हें गर्भवती महिला की खुशी जाहिर करने वाला एक गीत चाहिए, नीरज ने बताया कि उनका गीत देखकर सचिन देव बर्मन की आंखों में चमक आ गई थी। गीत ही कुछ ऐसा

0: मेरे सपने। इस फिल्म में देव आनंद और मुमताज पर फिल्माया ये गीत नीरज की कलम से निकले अमर गीतों में से एक है। देव आनंद ही थे जिन्होंने नीरज को सचिन देव बर्मन तक पहुंचाया। देव आनंद ने भी नीरज को उनके कवि सम्मेलन में सुना था। उनकी भाषा से प्रभावित होकर भविष्य में अपनी फिल्म में गीतकार बनने की बात उन्होंने कही थी। और जब नीरज को पता चला कि देव आनंद फिल्म बना रहे हैं तो उन्होंने वादे की याद दिलाते हुए एक खत देव आनंद को भेज दिया।
1: फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती।
0: नीरज की भाव भरी पाती देव आनंद तक पहुंची और उन्होंने तुरंत जवाब दिया और नीरज को मुंबई बुला लिए। नीरज से मुंबई में मिलते ही देव आनंद ने उनके हाथों में 1000 रुपए रख दिए और कहा कि अगले ही दिन फिल्म के संगीतकार सचिन देव बर्मन से मुलाकात करवाएंगे। शायद नीरज की परीक्षा लेने के लिए सचिन देव बर्मन ने एक धुन के साथ नीरज को एक शब्द दिया और कहा कि गीत इसी शब्द से शुरू होना चाहिए और गीत में ऐसे शब्द ना आए जो आम तौर पर इस तरह के गीतों में होते हैं। देवानंद ने नीरज को सलाह दी कि वो पहले गीत लिखकर उन्हें दिखा दें, फिर ही आगे भेजें। नीरज की कलम से रातों रात ही गीत लिखकर तैयार हो गया। पढ़ते ही न सिर्फ देवानंद झूम उठे बल्कि सचिन देव बर्मन ने भी नीरज को गले से लगा लिया। फिल्म थी प्रेम पुजारी और गीत का पहला शब्द
2: रंगे।

इसके बाद अगले 5 दिनों में ही प्रेम पुजारी के बाकी गीत लिखकर नीरज वापस अलीगढ़ आ गए। सारे गीत हिट रहे और आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। नीरज ने कविता लिखना और पढ़ना तभी से शुरू कर दिया था जब वो मात्र 14 साल के थे। बचपन के संघर्ष भरे अनुभवों ने उनकी कलम को समृद्ध किया। नीरज मानते हैं कि वो हरिवंश राय बच्चन की कविताओं से काफी प्रभावित रहे और उनको पढ़ने से उन्हें एक नई दिशा मिली। अपनी पहली पुस्तक भी नीरज ने हरिवंश राय बच्चन को समर्पित की। नीरज ने छोटी उम्र से ही कवि सम्मेलनों में जाकर अपनी रचनाएं सुनाना शुरू कर दिया था।

नीरज ने फिल्मी गीतों से ज्यादा कविताओं, दोहे आदि रचनाओं से साहित्य को समृद्ध किया है। वो जीवन के अंतिम दिनों तक कवि सम्मेलनों में सक्रिय रहे। उन्हें कभी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों ने नहीं घेरा और इस बारे में पूछने पर उनका कहना था कि वो उचित मात्रा में भोजन करते हैं और अपनी कलम के माध्यम से अपने मन के उद्गार बाहर निकालते रहते हैं, जिससे मन भी हल्का रहता है। नीरज को जानने वाले बताते हैं कि उनकी याददाश्त भी तेज रही। उन्हें अपनी सारी कविताएं तो कंठस्थ थी ही, इसके अलावा तकरीबन 200 फोन नंबर भी याद थे। एक लंबे समय तक वो अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी अध्यापक के पद पर बने रहे। इसी के साथ वो फिल्मों में गीत लिखने भी आते। वो लोगों की सहायता करने में आगे रहते और मानवता की बातें अपने गीतों के जरिए भी पहुँचाते।

नीरज ने अपने फिल्मी करियर में सचिन देव बर्मन के अलावा शंकर जयकिशन के साथ भी काम किया। नीरज अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि एक बार शंकर जयकिशन जोड़ी ने शंकर ने उन्हें बताया कि उनका लिखा गीत फिल्म में नहीं लिया जा सकेगा। इस बात पर फिल्म के निर्माता राजेंद्र भाटिया ने नीरज को प्रेरित किया कि वो कोई ऐसा गीत लिखें जिसे नकारना असंभव हो। नीरज रातों रात एक ऐसा गीत लिखकर लाए जिसे देखकर शंकर जयकिशन झूम उठे। इस गीत को फिल्म में शामिल किया गया। निर्माता राजेंद्र भाटिया ने खुश होकर नीरज को अपनी कार ही गिफ्ट कर दी। ये फिल्म थी कन्यादान और वो गीत था ये।

नीरज ने तकरीबन 130 फिल्मी गीत लिखे, लेकिन उनके लिखे गीतों की बात अधूरी रह जाएगी अगर हम मेरा नाम जोकर फिल्म का जिक्र ना करें। इस फिल्म के लिए लिखे नीरज के गीत इस फिल्म की तरह ही अमर हैं। नीरज इन गीतों को वो शब्द देते हैं जो किरदार के भाव को दर्शकों तक पहुंचाता है। यही नीरज की खासियत रही है कि वो हर उस बात को अपनी कलम से कहते हैं जिसकी हूक उस वक्त दर्शकों के मन में उठ रही होती है।

0: ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।
1: मेरा नाम जोकर के दोनों गीतों में नीरज गहरा जीवन दर्शन इतनी सादगी से परोसते हैं कि बोझिल हुए बिना जिंदगी का मर्म समझ आता है।

नीरज ने श्रृंगार के गीत भी लिखे तो देशभक्ति के भी, उन्होंने दर्शन भी लिखा तो भक्ति के गीत भी। मजाहिया गीतों में भी नीरज ने कोई कमी नहीं रखी।

0: भाव कोई भी हो, लेकिन नीरज के गीतों की खासियत थी उनकी सरल भाषा। वो जटिल से जटिल बात भी आम जन को समझाने वाली भाषा अपने पास रखते थे।
1: पूरी

नीरज एक अनोखे इंसान रहे, जहां एक बार फिल्म इंडस्ट्री में प्रसिद्धि मिलने के बाद कोई भी वापस नहीं जाना चाहता, वहीं अपनी प्रसिद्धि के चरम पर ही नीरज वापस लौट गए। कारण था लोगों का बदलता व्यवहार। उन्हें ये एहसास हुआ कि अब इंडस्ट्री में वो लोग नहीं हैं जिन्हें शब्दों का वास्तविक सम्मान है। उन्हें लगातार कला में पूंजीवाद का समावेश पसंद नहीं आ रहा था।

ताकि वो अपने चाहने वालों से जुड़े रहे और कवि सम्मेलनों में लगातार शिरकत करते रहे। देवानंद से भी उनका खासा प्रेम बना रहा और उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट में भी नीरज ने ही गीत लिखे।

नीरज का इस तरह से फिल्मी दुनिया से लौटना भी शायद उनके ही इस विचार का आईना है, जहां वो लिखते हैं, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा।

नीरज को उनके साहित्यिक कार्यों के लिए 1991 में पद्मश्री से नवाजा गया और साल 2007 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई। 19 जुलाई 2018 को 93 वर्ष की उम्र में नीरज ने इस संसार को विदा कहा और अपने पीछे अपनी एक समृद्ध साहित्यिक विरासत छोड़ गए। उनके गीतों, कविताओं और रचनाओं के माध्यम से वो आज भी चाहने वालों के बीच अमर हैं।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था कलम के जादूगर, लेखक, कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण सुन रहे थे। एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिन्हवी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारे प्रसारण की यह सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में आपसे 8:51 पर पुनः भेंट होगी। तब तक दीजिए अनुमति। शुभरात्रि। जय हिंद।